मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:56:35 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं, समाचार अब दिल्ली से होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

प्रदीप चटर्जी से अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। वंदना में अगला भक्ति गीत चित्रा सिंह की आवाज़ में है।

इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं तुलिका शर्मा के विचार। एक शहर में एक मशहूर होटल मालिक ने अपने होटल में एक स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल के चारों ओर बेहतरीन इटालियन टाइल्स लगवाए, लेकिन मिस्त्री की गलती से एक स्थान पर टाइल लगना छूट गया, यानी एक टाइल मिस हो गई। बहरहाल जो भी आता पहले उसका ध्यान टाइल्स की खूबसूरती पर जाता। इतने बेहतरीन टाइल्स देखकर हर आने वाला मुग्ध हो जाता। वो बड़ी ही बारीकी से उन टाइल्स को देखता और प्रशंसा करता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस मिसिंग टाइल पर जाती तो वो वहीं अटक जाती। उसके बाद वो किसी भी अन्य टाइल की खूबसूरती देख नहीं पाता। स्विमिंग पूल से लौटने वाले हर व्यक्ति को यही शिकायत रहती कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों खूबसूरत टाइल्स के बीच में वो मिसिंग टाइल उसके दिमाग पर हावी रहती। लोगों को उन टाइल्स को देखकर बहुत दुख होता कि इतना परफेक्ट बनाने पर भी एक टाइल रह ही गई आखिर। कई लोगों को ये उलझन होती कि कैसे भी करके वो टाइल ठीक कर दिया जाए। बहरहाल वहाँ से कोई भी खुश नहीं निकला और एक खूबसूरत स्विमिंग पूल लोगों को खुशी या आनंद नहीं दे पाया। दरअसल उस स्विमिंग पूल में वो मिसिंग टाइल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। प्रयोग ने इस बात को सिद्ध किया कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ ही जाता है। टाइल तक तो ठीक है, पर यही बात हमारी जिंदगी में भी है। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे हम में से अधिकांश लोग गुजर रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक समस्या को मिसिंग टाइल सिंड्रोम का नाम दिया गया, यानी उन चीज़ों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है। आगे चलकर यही हमारी खुशियों को चुराने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। भगवान ने हमें 32 दांत दिए, लेकिन हमारी जीभ उस टूटे हुए दांत पर ही क्यों जाती है? कभी सोचा है? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अपनी किसी एक कमी के पीछे सारा जीवन दुखी रहते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इस पर खुश होने के स्थान पर उन्हें क्या नहीं मिला इस पर दुखी रहते हैं। बहुत से लोग ग्रुप फोटोग्राफ्स से इसलिए हट जाते हैं कि इतने खूबसूरत लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति सुंदर नहीं लगती, या फिर कुछ कहने में झिझकते हैं कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी कमियाँ लेकर हम हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, और यह हीन भावना हमें विकसित होने से हमेशा रोकती रहती है। एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ना, अपने व्यक्तित्व में लगातार सुधार करते रहना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो यकीन मानिए, संतोष भी आपको ज़्यादा होगा और आपसे प्रभावित होने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे। मित्र भी आपके बहुत से बनेंगे और आप एक बहुत बड़ी जनरेशन को प्रभावित करने में भी सफल हो सकेंगे। शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हम ऊंचाई तक पहुँचते जाते हैं। एक दिन में नहीं हटेगा ये सिंड्रोम। धीरे धीरे कोशिश करते करते आप सफल हो सकेंगे, और आप यदि उस मिसिंग टाइल पर, अपनी एक छोटी सी कमी पर नज़र केंद्रित रखेंगे तो यकीन जानिए पूरी दुनिया उसी की तरफ देखेगी। वही कमी आपके अंदर पूरी दुनिया को दिखाई देगी। यदि आप उसे स्वीकार कर उसे अपने अंदर से निकाल देंगे या भूल जाएंगे तो दुनिया भी आपकी उस कमी को भूल जाएगी। आप खुद को किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं? बेहतरीन तरीके से ना? तो सामने आइए और अपने आप को एक खूबसूरत अंदाज से दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। ये मान लीजिए कि आप ईश्वर का प्रेजेंटेशन है इस पूरी दुनिया के सामने। तो ईश्वर का प्रेजेंटेशन तो उसके लेवल का होना चाहिए ना। दरअसल मिसिंग टाइल हमारा फोकस चुराकर हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चुरा

लेती है, और इसी वजह से ये शारीरिक और मानसिक कई बीमारियों की वजह भी बनती है। अब हमारे हाथ में है कि हम अपना फोकस मिसिंग टाइल पर रखते हैं और दुखी रहते हैं, या अपना फोकस उन अच्छाइयों पर रखते हैं जो हमारे साथ हैं और हमारे अंदर ही निहित हैं। तो खुश रहिए, ऐसे ही अपना बेस्ट प्रेजेंट करते रहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में तूलिका शर्मा के विचार। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती की कुछ तकनीकी बातें। जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, जैसे जैसे सिंचाई साधनों में बढ़ोतरी हुई है तो वर्ष भर किसान भाई तरह तरह की सब्जियां और दूसरी अन्य फसलें उगा करके अच्छी पैदावार लेने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के लगातार अनुसंधान का ही परिणाम है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी फसलों को उगा करके अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। सब्जियों की खेती भी किसान भाई कुछ न कुछ तो करते ही हैं, लेकिन यही वो उपयुक्त समय है जब हम पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जायद के मौसम में तोरई, करेला, लौकी, खीरा, इसी तरह से ककड़ी, तरबूज, खरबूज इन फसलों को ले सकते हैं। और ये फसलें इन्हीं दिनों बोई जाती हैं। अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण इन फसलों की देखभाल की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्नत शस्य प्रबंधन और पौध संरक्षण तकनीक अपना करके इन फसलों से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी की बात कर लें। खेतों को ट्रैक्टर या देशी हल से 2-3 बार जोतकर पाटा लगा करके समतल कर लें। इसके बाद बोनी कर दें। गर्मी के मौसम में सिंचाई अधिक करने से खरपतवारों की भी समस्या रहती है, तो समय समय पर निदाई गुड़ाई करना ठीक रहता है। इससे खेत की पपड़ी टूट जाती है और पौधों की जड़ों को हवा मिल जाती है और पौधों का विकास भी तेजी से होता है। गुड़ाई के बाद मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पौधों की जड़ों पर चढ़ाना चाहिए। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो गर्मी के मौसम में ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कम पानी में कम समय में अधिक अच्छा उत्पादन दे सके। गर्मी के मौसम में जमीन पर फैलने वाली फसलों की बोनी करें ताकि पानी का वाष्पीकरण भी कम हो। सामान्य तौर पर 7 दिन के अंतराल पर गर्मी में सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं कौन कौन सी बोई जा सकती हैं, उनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इनके बारे में भी जान लें। तो इसमें करेला की हम बात करें तो पूसा 2 मौसमी, अर्का हरित, प्रिया और KBJ6। खीरा की उन्नतशील किस्मों में पूसा शीतल और जापानी लॉन्ग ग्रीन। इसी तरह से लौकी की पूसा नवीन, पूसा समर प्रालिफिक लॉन्ग, पूसा संदेश, अर्का बहार और पंजाब कोमल। चिकनी तोरई की पूसा नस्तार, अर्का सुमित, अर्का सुजात, सतपुतिया। कद्दू की पूसा विश्वास और अर्का चंदन। तो ये उपयुक्त किस्में हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की। कद्दू वर्गीय सब्जियों की पोषक मांग अधिक होती है। अधिक उपज के लिए प्रति हेक्टेयर 240 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा कतार में ही प्रयोग कर दें। बची हुई मात्रा की आधी मात्रा बुवाई के 20-25 दिन बाद देकर मिट्टी चढ़ा देते हैं। शेष मात्रा बुवाई के 40 दिनों बाद सिंचाई करने के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। यदि गड्ढे में बीज बोया जाता है तो प्रत्येक बने गड्ढे में 30 से 40 ग्राम यूरिया, 80 से 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 से 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देकर बोनी करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अच्छा तरीका तो ये है कि संतुलित मात्रा में ही हमें खाद देना है, तो मिट्टी की जो जांच है उसको करा लें तो सही जानकारी हो जाएगी कि खाद कौन सी और कितनी मात्रा में देना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर किसान भाई जायद की फसलें बो करके अच्छा लाभ ले सकते हैं।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती की कुछ तकनीकी बातें। जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अप्रस्त

प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: दर्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजे
4: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। मेक इन इंडिया अभियानस्य 12 वर्षे सम्पूर्णे सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अस्याः योजनायाः अभूतपूर्वाः उपलब्धयः सम्प्रख्यापिताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले एकं सन्देशं यच्छन् प्रधानमन्त्रिणा एतत् प्रोक्तं यत् अभियानेनानेन भारते स्वदेशी निर्माणं, वैदेशिकनिवेशः, निर्यातः च भूरिशः सम्प्रवर्धितः। तेन प्रोदीरितं यत् एषः परिवर्तनप्रवाहः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षीक्रियते। आधारभूत संरचना नवोन्मेषयोः बलेन भारतस्य निरंतर समृद्धिः एव मेक इन इंडिया इत्यभियानस्य मुख्यमुद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिक प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

0: श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचारविनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तरशततमप्रसङ्गस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्रदेशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्वप्रबन्धः समनुष्ठितः। हिन्दीवाचनानुपदमेव समस्तप्रादेशिकभाषाष्वपि अस्य रूपान्तरणम् आकाशवाणीकेन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तरप्रदेशप्रशासनम् आयुष्मानयोजनानियमानाम् उल्लङ्घनं कुर्वताम् चिकित्सालयानाम् उद्दिश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्यस्वास्थ्य एजेन्सी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षणदलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पञ्जीकृतचिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सम्प्राह यत् संयुक्तराष्ट्रसंस्थायाः परिष्काराय पाठाधारितवार्ता अतीवावश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्तराष्ट्रमहासभायां भाषमाणः विदेशमन्त्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समययापनमेव अस्ति। परिष्कारविरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्तिमन्त्रिणा सी.आर. पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवमभारत अन्ताराष्ट्रियजलसप्ताहस्य समापनसत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितं यत् जलसंरक्षणाय जनसहभागिता अतीवावश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विकसहयोगेन एव जलसम्बद्धसमस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जलसंरक्षणं न हि केवलम् एकस्य कर्तव्यं प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वम् इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तरप्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं सञ्जातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषणवृष्टिं विलोक्य प्रशासनपक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवातप्रभावेन राजधान्यां लखनौनगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्व्योत्तरप्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीतसुरुचियुग्मेन स्वर्णं गुलवीरसिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेत्री क्रीडकेभ्यः वर्धापनसन्देशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रेप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बरबुंडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई।

गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर सुनिए डॉक्टर चारुचित्रा से उनकी वार्ता, मोहन राकेश के नाटकों के मुखर पात्र।

7:30 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकता है। आज हम इसमें आपको हेमंत कुमार के गाए कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। और 8:30 बजे आप सुनेंगे पॉडकास्ट हिंदी भाषा विचार और भविष्य। इस विषय पर डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत से बात करेंगी डॉक्टर विभूति सिंह। डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु हैं।

सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनिए सुबह 9 बजे। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मिताली कातरणेकर का गाया राग जौनपुरी हम आपको सुनवाएंगे। जिले की चिट्ठी 10 बजे भोपाल से होती है। 10:05 पर प्रत्येक शनिवार आप सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात करानों के साथ। इस कार्यक्रम में हरिमोहन पुरोहित से आभा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा क्यों होती है दांतों की समस्याएं। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

सायंकालीन सभा शाम 5 बजे से हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित करेंगे, जिसमें 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम सुना जा सकेगा, जो आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति होगा। 7:20 पर हमारे केंद्र से आप कुछ लोकगीत सुनेंगे। 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा और इसके बाद सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होंगे सभा की समाप्ति तक। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भजन क्लबिंग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू। 7 शहरों में 351 बसों को दिखाई गई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। और प्रदेश में अगले 48 घंटे तेज बारिश का दौर। 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। भजन क्लबिंग में युवा कॉन्सर्ट जैसे माहौल में भजन गाते, तालियां बजाते और नाचते हैं, जिसमें पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत के साथ पेश किया जाता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भजन सुनते, तालियां बजाते और मंजीरा बजाते नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अंत्योदय के विचार को जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। श्री गडकरी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए 5 एजेंडा तय किए गए हैं, जिनमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। श्री गडकरी ने कहा,
1: जो गरीब लोग हैं, गांव, गरीब मजदूर, किसान प्राइवेट टैक्सी में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो पहल की है, ये वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुरक्षित, किफायती और जवाबदेह सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था का निर्माण और उसका शुभारंभ के इस ऐतिहासिक दिन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क के साथ एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सड़कों की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन से जुड़ने वाली सड़कों का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की नागपुर, जबलपुर और रायपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने और बालाघाट में बेहतर सड़क नेटवर्क की कार्ययोजना बनाने को भी कहा गया। वहीं जबलपुर के शहपुरा आरओबी के क्षतिग्रस्त होने के कारण शहपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी की यात्रा कर रहे यात्रियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सागर जिले के बंडा पहुंचे यात्रियों से भी बातचीत की और यात्रा के अनुभव जाने। यात्रियों ने आयुष्मान भारत, स्वच्छता, सड़क और पीएमश्री स्कूल जैसी योजनाओं से हुए बदलावों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से युवाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने की भी अपील की। बंडा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी यात्राओं से देश की संस्कृति, विचारों को समझने के साथ राष्ट्रीय एकजुटता भी मजबूत होती है। पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पत्रकारों की मांग को देखते हुए अब आवेदन की तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पत्रकार अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने के लिए शामिल हो सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज से आंगन मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये कार्यक्रम प्रदेश की सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी और पोषण, स्वच्छता तथा टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जाएगा। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच SBI ने किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकालने या दूसरे ATM से लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने की घोषणा की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए SBI की सभी शाखाएं 27 सितंबर रविवार को भी खुली रहेंगी। UPI, IMPS, RTGS और NEFT जैसी डिजिटल सेवाएं भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने की वजह से पितृपक्ष 15 दिनों का रहेगा। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रदेश में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षकों को नई NCERT पाठ्य पुस्तकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 28 सितंबर से शुरू होगा। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने विशेष अभियान शुरू किया है। जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के 284 स्टेशनों पर पिछले एक महीने से पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इस दौरान करीब 10,000 नलों और वाटर बूथों की साफ सफाई की गई है। एशियन गेम्स में प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल के साथ मिलकर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बधाई दी है। वहीं आज इसी स्पर्धा में प्रदेश की आशी चौकसे पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक और पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूके के डोवर में डोवर से फ्रांस तक करीब 36 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को तीसरी बार सफलतापूर्वक पार किया है। इसके साथ ही वे इंग्लिश चैनल को 3 बार पार करने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 48 घंटे तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, रीवा समेत 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में ऑरेंज अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर सामूहिक गायन किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने कल जिले के ग्राम जमुनिया स्थित 120 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का निरीक्षण किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नर्मदापुरम में निशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर और आसपास के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही भारी बारिश से बरकी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मंडला में सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। दमोह में सेवा संकल्प अभियान के तहत मगरोन में यात्रा दल का प्रदेश के आनंद विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने आत्मीय स्वागत किया। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुना में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कल आरून विकासखंड की ग्राम पंचायत रामपुर में जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया। विदिशा में महिला और बाल विकास विभाग की सचिव ने कल जिले का भ्रमण किया। धार में अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। वहीं भोपाल में भी अनंत चतुर्दशी के मौके पर कल 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता मोहन राकेश के नाटकों के मुखर पात्र। वार्ताकार हैं डॉक्टर चारुचित्रा।
2: 70 का दशक भारतीय नाटक का वो समय था जब बांग्ला में बादल सरकार, मराठी में विजय तेंदुलकर, कन्नड़ में गिरीश कर्नाड और हिंदी में मोहन राकेश ने अपने नाटकों से धूम मचा रखी थी और इन सबको मिलाकर ही उस दौर का रंग परिवेश संपूर्ण होता था। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, विजय तेंदुलकर का विवादास्पद नाटक गिद्ध, बादल सरकार का एबो इंद्रजीत और गिरीश कर्नाड का ययाति जैसे नाटकों ने अपने नए प्रयोगों के कारण उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित किए। इन सभी नाटककारों ने अपनी भाषाओं के रंगमंच को प्रेक्षागृह की परिधि से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुंचाया और देश की अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह नाटक मंचित हुए। हिंदी नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई नाम सशक्त सितारे की तरह एक अलग ही ध्रुवांतर पर चमकता है तो वो है मोहन राकेश का कभी न भुला दे सकने वाला नाम। 50 के दशक में नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार के रूप में चर्चित होने के बाद अपने उपन्यासों, यात्रा संस्मरण, निबंध और संस्कृत नाटकों के अनुवाद के पड़ाव को पार करते हुए उन्होंने जब नाटक के क्षेत्र में अपना कदम रखा तो हिंदी नाटक जगत और रंग जगत की सारी जड़ता और रूढ़ियों को तोड़ नाटक को एक अलग ही कलेवर दिया। वो स्वयं आकाशवाणी के एक साक्षात्कार में कहानी से ड्रामा की ओर मुड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, स्टेज के साथ मेरा ताल्लुक अंदर ही अंदर काफ़ी पहले से बना रहा है। मेरे दिमाग में जब कोई आइडिया आता है तो वो किसी अफसाना या ड्रामा की तरह के सीन होते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अपने आप में ही ये मांग करती है, ये डिमांड है कि वो एक अफसाने या ड्रामे की शक्ल इख्तियार करे। मोहन राकेश ऐतिहासिक, पौराणिक, आधुनिक, सामाजिक नाटक लिखने वाले समर्थ कलाकार हैं। उनके दो नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस जहां एक और पौराणिक कलेवर लिए हुए हैं, वहीं आधे अधूरे और शायद जैसे नाटक समाज और विशेषकर मध्यम वर्ग की विसंगतियों और मनोवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। पैरों तले जमीन उनका अधूरा नाटक है जिसे उनकी मृत्यु के उपरांत कमलेश्वर ने पूरा किया। आखिरकार ऐसा क्या था मोहन राकेश के नाटकों में जो उन्हें इस कदर प्रसिद्ध बना गया? उनकी प्रयोगशीलता, इतिहास को नए संदर्भ और आधुनिक ढंग से देखने की उनकी नई नज़र, नए भाव, नई विशेषताओं को स्थापित करना, कंटेम्परेरी समस्याओं को बुलंदी के साथ उठाना, थिएटर को रोज़मर्रा की नई भाषा प्रदान करना, रिश्तों के सामाजिक अकेलेपन और द्वंद को बड़ी ही बारीकी के साथ प्रस्तुत करना और जीवन के कड़वे सत्यों को उद्घाटित करना, ऐसी बहुत सी विशेषताएँ हैं जो उन्हें अपने समकालीन नाटककारों से अलग करती हैं और उनके इन विचारों को पाठकों तक और दर्शकों तक पहुंचाने का काम तत्परता से जिस उपकरण ने किया है वह है उनके छोटे बड़े सभी किरदारों की मुखरता जो ऐसा जीवंत संप्रेषण करते हैं कि आप उस नाटक के मुहपाश में बंध जाते हैं। मोहन राकेश की प्रयोगशीलता का उनके द्वारा रचित पात्रों पर गहन प्रभाव देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन का संबंध कवि कालिदास के जीवन से है। इस नाटक का शीर्षक भी उन्होंने मेघदूत के ही द्वितीय श्लोक से लिया है। वहीं दूसरी ओर लहरों के राजहंस अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद का नाटकीय पुनराख्यान है। नाटक भले ही पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हों लेकिन ये प्रस्तुतियां जिंदगी में सामने आए विभिन्न आकर्षणों, जरूरतों और उनके चुनावों और रिश्तों के भंवर में फंसे आधुनिक व्यक्ति की कहानी है। मोहन राकेश एक और आषाढ़ का एक दिन के बारे में स्वयं एक इंटरव्यू में बताते हैं, कालिदास की जद्दोजहद आज के आधुनिक मनुष्य की जद्दोजहद है, लेखक की जद्दोजहद है। कालिदास को एक सिंबल की तरह सामने रखा गया है। कालिदास की कहानी आज के रिलेशनशिप की कहानी है। दूसरी ओर लहरों के राजहंस की प्रस्तावना में भी वह स्पष्ट करते हैं, इसमें आधुनिक जीवन का पर्याप्त भावी बोध है। मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड दोनों ही नाटककार ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास को नए संदर्भों में रखकर उसे आधुनिक रूप से प्रस्तुत कर नए प्रयोग किए हैं। दूसरी ओर आधे अधूरे में एक ही व्यक्ति का सूत्रधार सहित पांच पुरुषों की पृथक भूमिकाएं निभाने की रोचक रंगा युक्ति द्वारा ये प्रस्तुत करना कि किसी भी पुरुष के स्थान पर दूसरे को रख देने से भी कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियों की समानता में व्यक्ति एक ही प्रकार से बर्ताव करता है। नाटक में इससे उपजी स्त्री की वितृष्णा इस संवाद में नजर आती है। सब के सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा, चेहरा सबका एक ही। शायद नाटक में भी मोहन राकेश ने अपने पात्रों को कोई नाम न देकर उन्हें स्त्री और पुरुष कहकर फिर एक अलग ढंग का प्रयोग किया। मोहन राकेश के सभी पात्र किसी न किसी मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को जीते हैं, जीवन की विडंबनाओं को झेलते हुए संघर्ष करते हैं और संपूर्णता की तलाश में भटकते हैं। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास, जो एक रचनाकार है जिसके सामने प्रेम या सफलता चुनने का द्वंद्व है और वह सफलता की खातिर प्रेम को त्याग कर चला जाता है, वह अपनी प्रेयसी मल्लिका के सामने स्वीकारता है, ना तो मैं बदल सका ना सुखी हो सका, अधिकार मिला, सम्मान मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। लहरों के राजहंस में नंद गौतम बुद्ध से प्रभावित हो भिक्षु बनना चाहता है, दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अनुरक्त है। जब नंद अपनी पत्नी के

0: आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। वही सुंदरी अपने पति का मुंडित मस्तक देखती है तो उसके नारित्व और स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचती है। आधे अधूरे के पात्र स्त्री पुरुषों के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं और आक्रोश को उजागर करते हैं। जहां बाहरी संसार की बड़ी घटनाएं तनाव पैदा नहीं कर रही बल्कि आंतरिक उद्वेग, मन स्थितियां किसी बम की तरह समय समय पर विस्फोट कर युद्ध जैसी स्थितियों को निर्मित कर रही हैं। हर व्यक्ति उस घर में अतृप्त है, उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, वह अपनी अपनी नियति को झेलता हुआ जिंदगी को ढो रहा है। बड़ी लड़की बिन्नी, जिसका कुछ समय पहले ही विवाह हुआ है, उसका दर्द देखते बनता है जब वो हताशा भरे टूटते स्वर में अपनी माँ से पूछती है, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा, क्या है वो चीज़? कहाँ पर है वो इस घर में? मोहन राकेश के किसी भी नाटक में स्त्री और पुरुष के आपसी संबंध सामान्य नज़र नहीं आते। जबरदस्त संघर्ष और रस्साकशी है संबंधों में। संवादों के माध्यम से लेखक ने बखूबी उस अंतर विरोध को दिखाया है। आषाढ़ का एक दिन का विलोम यूं तो मल्लिका का पति है, पर मल्लिका के भावकोष में सदैव कालिदास विद्यमान रहता है। दोनों अपनी इस विडंबनापूर्ण त्रासदी को झेलते हुए अपना वैवाहिक जीवन बिताते हैं। अपनी ही पत्नी के चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाता हुआ वह कालिदास से पूछता है, क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? नंद और सुंदरी के बीच कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दोनों दो अलग स्तरों पर चलने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। नंद कहता है, मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास ओढ़कर नहीं जीना चाहता। दोनों एक दूसरे का संघर्ष, व्यक्तित्व का, स्थितियों का सामना नहीं करते, बल्कि नंद बहुत ही कायरता के साथ पलायन कर जाता है। शायद कि मध्यम वर्गीय स्त्री और पुरुष विवाह के कुछ ही वर्षों में जीवन की नीरसता, अकेलेपन, अर्थहीनता, घुटन और ऊब से बुरी तरह ग्रस्त हैं। दोनों एक मशीनी जीवन बिता रहे हैं जिससे ना उससे दूर जा पाते हैं, ना ही उसमें कोई रस भर पाते हैं। बातचीत होने के बावजूद भी उन्हें यही लगता है कोई चीज़ होल्ड नहीं करती। फाइलें पलट लो, चाय पी लो, बहस कर लो, किसी के ब्याह शादी है, मातम में चले जाओ, कोई पार्टी अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, खालीपन झोंका क्यों बना रहता है? पुरुष और स्त्री के संवाद प्रभावी हैं और उनकी मन स्थिति को बयान करते हैं। पैर तले की जमीन में जब जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं, तब भी अपने वैवाहिक जीवन की निरर्थकता को दो असहाय लड़कियों रीता और नीरा के द्वारा अयूब अपने वैवाहिक जीवन की कुंठा को उनके उपभोग से मिटाना चाहता है। पुरुष की इस प्रवृत्ति से मोहन राकेश दर्शकों के सामने प्रश्न उछालते हैं, औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? आधे अधूरे के पति पत्नी में जरा भी सामंजस्य नहीं है। घर की दीवारों के भीतर वो दो दुश्मनों की तरह रहते हैं। समाज में व्याप्त व्यवस्थाओं के चलते इस पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष महेंद्रनाथ भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री का नाटक के अंत में एकालाप इब्सन की नोरा हेल्मर और तेंदुलकर की लीला बेनारे की तरह उसे भी एक यादगार पात्र बना गया है। सांकेतिकता भी राकेश के नाटकों के प्रयोग का अभिन्न अंग है। उस गहन चुप्पी या कुछ शब्दों में भी पात्रों की मुखरता प्रभावित करती है। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, ई उफ उफ उफ जैसे भावों से मंच पर भाषा में शब्दों का ध्वनि संयोजन होता है। मोहन राकेश ने जब नाटक की दुनिया में कदम रखा तो दिल्ली में नाटक की कोई खास परंपरा नहीं थी। जब कोई परंपरा नहीं थी तो सिफर से शुरुआत की, और अच्छी बात यह थी कि कहीं कोई बंधन भी नहीं था। अनुराधा कपूर, जो NSG की चीफ भी रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि ऐसे में मोहन राकेश ने नाटक और थिएटर को एक अलग ही एनर्जी दी। मोहन राकेश का जिंदगी के बारे में फलसफा यही था कि जिंदगी को हमेशा समाज के कानून के अनुसार नहीं जिया जा सकता। समाज और उसकी व्यवस्था आपको बहुत सी आज़ादी नहीं दे सकते, लेकिन आप समाज को नकार भी नहीं सकते, और उनके पात्रों का स्ट्रगल, अपनी जिंदगी जीने की चाह और उसकी ललक को उनके पात्रों की मुखरता में देख सकते हैं।
1: मोहन राकेश के नाटकों के मुखर पात्र। अभी आप डॉक्टर चारू चित्रा से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तूलिका। श्रोता साथियों, आज है हेमंत कुमार की याद का दिन। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए इस कार्यक्रम में हम आपको हेमंत कुमार के ही गाए कुछ गीत सुनवाते हैं।
2: करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट

हेमंत कुमार यानी हेमंत कुमार मुखोपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आप संगीत निर्देशक थे, संगीतकार थे, गायक थे, या फिल्म निर्माण करते थे और हर काम बखूबी किया। हेमंत दा के नाम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें जानती है। हिंदी गानों में तो आप उन्हें जानते ही हैं, लेकिन बांग्ला फिल्मों में हिंदी से ज़्यादा मकबूल हुए वो। अन्य कई भारतीय भाषाओं में भी आपने गाने गाए। एक वक्त था जब बांग्ला संगीत उद्योग पर हेमंत कुमार का राज हुआ करता था। आवाज़ बेमिसाल थी। इसी आवाज़ में हम आपको आज के इस कार्यक्रम में गीत सुनवाएंगे। ১৯২০ में आपका जन्म वाराणसी में हुआ। नाम था हेमंत मुखोपाध्याय। उस समय आमतौर पर जैसा माहौल बंगाली परिवारों में देखा जाता था, वैसा ही हेमंत कुमार के घर में भी था। पिताजी क्लर्क थे और चाहते थे कि हेमंत कुमार भी उसी रास्ते पर चलें। हालांकि हेमंत कुमार की दिलचस्पी संगीत में थी। शुरुआती समय में हेमंत कुमार की दोस्ती हुई सुभाष मुखोपाध्याय और संतोष कुमार घोष से, और इन्होंने ही कला के क्षेत्र में हेमंत कुमार को आगे बढ़ाया। 1933 में हेमंत कुमार ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना ऑल इंडिया रेडियो पर गाया। कुछ और बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको हेमंत कुमार का गाया एक और गीत सुनवा रहे हैं।

0: चूंकि हेमंत कुमार के पिता क्लर्क थे और चाहते थे कि बेटा भी प्रशासनिक क्षेत्र में ही जाए, लेकिन बेटे का मन लगता था संगीत में। उन्होंने बांग्ला संगीतकार शैलेश दत्त गुप्ता से रविंद्र संगीत सीखा, उस्ताद फैयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू तो की, लेकिन पिता की मर्जी के खिलाफ जाते हुए उन्होंने ये पढ़ाई बीच में ही छोड़ी। जाधवपुर के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकले और संगीत साधना करने लगे, और इसी दौरान देश नाम की एक बांग्ला पत्रिका के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखने लगे। साल 1937 में उन्होंने अपना पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड लॉन्च किया। ये नॉन फिल्मी रिकॉर्ड था, और इसके बाद 1944 में उन्होंने एक और ग्रामोफोन रिकॉर्ड लॉन्च किया जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के गाने उन्होंने गाए। प्लेबैक सिंगर के तौर पर हेमंत कुमार ने अपना पहला गाना बांग्ला फिल्म के लिए ही गाया। फिल्म थी निमाई संन्यास 1941 में। उस समय सुपरस्टार थे उत्तम कुमार। उनके ऊपर फिल्माए गए गानों की वजह से हेमंत कुमार को एक नई पहचान मिली, और हिंदी प्लेबैक सिंगर के तौर पर सबसे पहले आपने 1944 में इरादा फिल्म के लिए गाना गाया।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: दी, ये देख कैसे?
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
6: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
7: Saving करने की भी यही उम्र है।
8: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: I know na।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।

हेमंत कुमार की जो बेमिसाल आवाज़ है वही उनकी खासियत है, वही उन्हें सबसे अलग करती है। मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी हेमंत कुमार की आवाज़ को भगवान की आवाज़ कहते थे। लता मंगेशकर के लिए वो कहते थे कि वो संत की आवाज़ है और हेमंत कुमार की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है।

जिस समय हेमंत कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे वो एक ऐसा दौर था जब गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसी तरह के आधुनिक उपकरण इस्तेमाल नहीं होते थे। ऐसे में गायकों को ही ध्यान रखना पड़ता था कि उनकी आवाज़ माइक पर सही लगे, यानी कब कैसा इफ़ेक्ट देना है वो माइक से दूरी के आधार पर अपने अनुभव के माध्यम से वो तय करते थे। और कहा जाता है कि हेमंत कुमार से ज़्यादा इस बात की समझ किसी को नहीं थी कि माइक पर अपनी आवाज़ को कैसे कंट्रोल करना है, माइक से दूरी बनाकर किस तरह अपनी आवाज़ में इफ़ेक्ट्स देने हैं। ये हेमंत कुमार के गीतों में बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

नागिन फिल्म को हेमंत कुमार के बेहतरीन संगीत के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के लिए हेमंत कुमार सपेरों के वाद्य यंत्र बीन की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। बीन का इफेक्ट देना तो था ही, इसलिए बीन की आवाज़ निकालने के लिए उन्होंने क्ले वायलिन और हारमोनियम का इस्तेमाल किया। अब आप नागिन फिल्म का गीत सुन के देखिएगा और बीन की आवाज़ को उस आवाज़ से कंपेयर करके देखिएगा। मंडोले मेरा तंडोले इस फिल्म में बीन नहीं बल्कि क्ले वायलिन और हारमोनियम है और इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आनंद मठ और जागृति के गीतों ने अपने समय में खूब धूम मचाई थी। आज भी ये गीत गाए और बजाए जाते हैं। आइए हेमंत कुमार का एक और गीत आपको सुनवाते हैं।

हेमंत कुमार ने 1950 के आसपास हेमंत बेला नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। बाद में इसी का नाम पड़ा गीतांजलि प्रोडक्शन। बांग्ला फिल्म नील आकाशेर नीचे हेमंत कुमार के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को भारत के राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक भी मिला था। 20 साल बाद कोहरा, खामोशी, ये सब इनके प्रोडक्शन हाउस की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। हेमंत कुमार ने अपने संगीत की आखिरी परफॉर्मेंस साल 1989 में बांग्लादेश के ढाका शहर में दी थी और इसी साल हेमंत कुमार ने दुनिया को अलविदा भी कह दिया। आज हम सब लोग हेमंत कुमार को एक ऐसे गायक के रूप में याद करते हैं जिनकी आवाज़ में हर एक गीत मकबूल हुआ और हम सब के दिल के बेहद करीब हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जल भराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
8: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो। ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई है। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
9: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय

0: टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life.

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट।
1: मुझे बुला लिया
0: इस पॉडकास्ट में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी भाषा विचार और भविष्य। इस विषय पर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर से ये पॉडकास्ट। श्रोताओं, हिंदी पखवाड़े के मद्देनजर आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत जी को। तो चलिए अब देर नहीं करते और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजपूत, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद
2: सर। सबसे पहला प्रश्न यही है कि आकाशवाणी से जुड़ी हुई पहली स्मृति आपके जहन में क्या है?
3: आकाशवाणी दरअसल में भारतीय जीवन की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से बचपन से ही जुड़ जाती है। बचपन में रेडियोज पर, ट्रांजिस्टर्स पर आकाशवाणी के बहुत से कार्यक्रमों को सुनना प्रारंभ किया था और उस समय यही एक ऐसा माध्यम था जो ज्ञान की, जागरूकता की और विशेष रूप से सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी हम लोगों को दिया करते थे। तो मैं मानता हूँ कि बचपन से ही आकाशवाणी के साथ में हमारा संपर्क रहा है और हमने बहुत कुछ जाना है, सीखा है और समझा है।
2: कोई विशेष कार्यक्रम जो आपको बहुत पसंद हो या कुछ ऐसी कोई स्मृति बताइए?
3: बहुत कठिन है आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाना क्योंकि आपके यहाँ सारे कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि उसमें एक को चूज करना तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी, लेकिन हाँ फिर भी विशेष रूप से जो युवाणी करते हैं युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा है।
2: अब हमें अपने प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और करियर की जो यात्रा है उसके विषय में बताइए, किन अनुभवों ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया?
3: यदि हम शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा हमारे उस जिले में हुई है जिस जिले को गौरव प्राप्त है हिंदी भाषी प्रदेश के पहले पूर्ण साक्षर जिला होने का, और वो जिला हमारे मध्य प्रदेश का ही है। नरसिंहपुर वह जिला है जहाँ पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है और वहाँ से निकलने के बाद फिर मध्य प्रदेश के ही सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जिसको कि पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, वहाँ मेरी उच्च शिक्षा हुई। वहाँ से सबसे पहले मैंने अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय में प्रावीण्यता

0: के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपराध शास्त्र से नेट GRF क्वालिफाई किया। इसी बीच में समाज शास्त्र से भी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी उपाधि प्राप्त की। 1988 में सागर विश्वविद्यालय में ही व्याख्याता के रूप में अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग में ज्वाइन किया। उस समय मुझे अवसर मिला गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक संस्थान है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, वहाँ पर एक साल तक कार्य करने का अवसर मिला। इसी बीच में चूँकि मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नेट GRF को क्वालिफाई कर चुका था, मेरे पास अवसर था शोध उपाधि के लिए आगे बढ़ने का। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में मैंने जेल सुधार के ऊपर से PhD का कार्य प्रारंभ किया और मध्य प्रदेश के विभिन्न जेलों में जो कारागार अंतर्वासी होते हैं उनके सुधार के लिए क्या हो सकता है, इस सब पर काम करने की कोशिश की। इसी बीच में चूँकि अपराध शास्त्र मेरा विषय है और अपराध शास्त्र एवं न्यायिक प्रशासन ये मेरे रुचि के विषयों में से हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स को जो मध्य प्रदेश में चयनित होते हैं उनको पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया और निरंतर अभी भी जब वक्त मिलता है तो विशेष रूप से DSP रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कभी कभी मैं भौंरी की पुलिस अकादमी में या इसके पहले सागर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें संलग्न रहता था। विशेष रूप से मेरे रुचि के जो विषय हैं वो अपराध शास्त्र एवं न्याय विज्ञान के साथ जनजातीय आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास, युवा संवाद और व्यक्तित्व विकास, इन चीज़ों को लेकर काम करते हुए सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियाँ और तकनीक इन पर काम करने की कोशिश करता हूँ। आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्नातक स्तर की जब मैं पढ़ाई कर रहा था और उसमें जब मैंने परीक्षा दी हुई थी तो हिंदी में मुझे विशेषज्ञता यानी डिस्टिंक्शन भी प्राप्त हुआ था, तो हिंदी मेरे लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुख और आनंद देने वाला विषय है और इस पूरी की पूरी चीज़ की जो प्रेरणा मुझे मिली है वो मेरे पूज्य पिताजी श्री करा सिंह राजपूत जी से मिली है, जिन्होंने स्कूल में प्रवेश होने के पहले ही मुझे हिंदी और संस्कृत के श्लोक, चौपाइयाँ इत्यादि से अवगत कराया और जब भी वह पूजन पाठ करने बैठते थे तो मुझे अपनी गोद में बैठा के पाठ किया करते थे। उस समय से सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती हो या अन्य श्लोक हों वो मुझे पढ़ने की रुचि लगती थी, तो वो उस तरह से हिंदी और संस्कृत प्रति रुझान बढ़ गया है।
1: दो बातें बड़ी रोचक हैं, एक तो ये कि अपराध विज्ञान, ये आपने बताया कि आप पहले रिसर्चर थे, पहले स्कॉलर थे जिसने क्वालिफाई किया, तो इस विषय के लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, क्यों इतना पसंद आया ये विषय?
0: बचपन से मुझे एक जुनून था, जुनून शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, बस मुझे पढ़ना है। और जिस समय मैं अपने गाँव में प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी था तो मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में लगभग 8,000 पुस्तकें हुआ करती थी। उन पुस्तकों में चाहे वो अखबार के रूप में हों, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के रूप में हों, या वो धार्मिक ग्रंथों के रूप में हों, या उपन्यास साहित्य के रूप में हों, या विषय की शैक्षणिक पुस्तकें हों, इस सब में देखते देखते लगातार मुझे लग रहा था कि समाज के लिए कुछ विशेष रूप से करना है। तो तीन चीज़ें हमारे अध्ययन के साथ मेरे दिमाग में आती थी, या तो मुझे सेना में जाना है, या मुझे चिकित्सक बनना है, या मुझे शिक्षा विभाग में आके कुछ नवीन विषय पर कुछ काम करना है।
1: जी,
0: चिकित्सा में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को देखता था, उन्होंने बायोलॉजी विषय लिया हुआ था, कुछ डिसेक्शन करने पड़ते थे तो जो कहीं ना कहीं चीरफाड़ करना है या डिसेक्शन करके देखना है तो मुझे लगता था कि ये बहुत ठीक नहीं है, शायद मेरे बस का नहीं, मेरी क्षमताओं से अलग है,
1: आपके स्वभाव में नहीं।
0: हाँ, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। फौज में जाने का बड़ा मन था, आज भी सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे वही सेवा लगती है, पर संयोग की बात यह थी कि विद्यालय में मुझे बताया गया कि शिक्षक का दायित्व देश के और विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक छवि आने लगी कि वही मुझे बनना है। अब शिक्षा में आने के लिए देखा कि सबसे अच्छा विषय क्या हो सकता है, तो स्वयं से मैं सारा कुछ पढ़ता रहता था। मुझे लगा कि समाज में सुधार की आवश्यकता है तो हम उन चीज़ों को देखें जो समाज को तोड़ते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये अंदर से ही प्रेरणा मुझे मिली कि अपराध विज्ञान एक ऐसा विषय है जो समाज में शांति व्यवस्था लाने के लिए, समाज में सुरक्षा पैदा करने के लिए, समाज में प्रशासनिक अधिकारियों को बेहतरी देने के लिए यह सहायक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए मैंने अपराध शास्त्र विषय का चयन किया। वैसे मेरा सबसे पसंदीदा विषय जो है वो गणित है और हायर सेकेंडरी तक मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ही लिया हुआ है और अभी भी जब वक्त मिलता है तो मैं लोगों से गणित की कुछ चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।
1: दूसरी एक रोचक बात आपने ये भी बताई कि आपके फादर आपको गोद में लेके पूजा करते थे जिस समय आपने ये सारी चीज़ें सीखी, तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी जो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं इस तरह के अभ्यास को ला सकते हैं अपने व्यवहार में। अगला प्रश्न आपके अनुभवों से जुड़ा हुआ ही है, हमें ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन में हिंदी से जुड़ा कोई शिक्षक या कोई साहित्यिक अनुभव ऐसा है जिसने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया?
0: जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हुआ हूँ वह जिले का ही नहीं प्रदेश का सबसे अच्छे विद्यालय तब भी माना जाता था, वो आज भी माना जाता है। वहाँ प्रत्येक शिक्षक हिंदी पर बहुत गहराई से काम करते थे, बात करते थे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि पहले शिक्षक के रूप में मैं देखता हूँ, औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी रूप में मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, क्योंकि वो जब आयुर्वेद रत्न की पुस्तकें पढ़ा करते थे तो वो हिंदी में हुआ करते थे, उनको मैंने पढ़ा है, इससे मेरी रुचि आई। अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे उसमें रुचि आई। और हमारे विद्यालय में हमारे जो हेड मास्टर यानी उस समय हम लोग उनको गुरुजी बोला करते थे, वो जो थे वो हिंदी में बड़े बेहतरीन तरीके से व्याख्यान दिया करते थे। और हमारे विद्यालय का एक बड़ा विशेष कार्यक्रम संचालित होता था जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, प्रत्येक शनिवार को सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुआ करती थी, जिसमें संभाषण, वाद विवाद, कविता अभिव्यक्ति, भाषण लेखन या अन्य तरह की गतिविधियाँ होती थी, वो ये सब हिंदी में हुआ करती थी। तो पूरा विद्यालय परिवार को मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिंदी के प्रति मेरा रुझान बढ़ाने की एक प्रेरणा भी दी, मुझे सपोर्ट भी किया, और उन सबको मैं आधार के रूप में मानता हूँ। इसके साथ एक और चीज़ मुझे लगती है कि घर में जो समाचार पत्र आया करते थे, पत्र पत्रिकाएँ आती थीं, उनका भी हिंदी के संवर्धन में बड़ा योगदान है। अभी भी मैं ये मानता हूँ कि यदि हम साहित्य के क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो लेखन अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कक्षा एक का मैं विद्यार्थी हुआ करता था, तब से मुझे हमारे विद्यालय के लगभग सभी शिक्षकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खड़ा कर दिया था। और तब से लेकर के आज तक यदि कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, संभाषण होती है, तो ये निश्चित ही कि दिवाकर सिंह राजपूत यहाँ खड़े हैं तो पहला पुरस्कार उन्हीं को मिलने वाला है।
1: तो आत्मविश्वास अच्छा लग रहा है आपका, और प्रेरणा लेंगे हमारे श्रोता इस बात से। डॉक्टर राजपूत, हमें ये बताइए कि उच्च शिक्षा में आपके अनुसार हिंदी को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होने चाहिए?
0: बहुत सटीक और बड़ा सामयिक प्रश्न आपने पूछा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में दो बातें विशेष रूप से आती हैं, एक शिक्षण और दूसरा अनुसंधान। हम जब शोध की बात करते हैं, मौलिक सोच तब पैदा होती है जब हम अपनी मौलिक भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भी यह प्रयास किया गया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और उसके बाद हम शोध अनुसंधान के लिए जाते हैं। हिंदी में उच्च शिक्षा की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो केवल और केवल हिंदी भाषी से आता है। यहाँ तक कि समाजशास्त्र के शिक्षक होने के नाते, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, हम विभिन्न परियोजनाओं में या शोध के कार्यक्रमों में जब संलग्न होते हैं तो हम क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि हमको तथ्यों का संकलन करना है, हमको शोध पर लोगों से प्रश्न करने हैं। विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पीएचडी की थीसिस लिखना चाहते हैं लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी ही आती है। उनकी जीवन शैली के बारे में बात करनी है, उनकी समस्याओं के बारे में बात करनी है, उनसे कुछ सुझाव पूछना है, यहाँ तक कि उनकी केस स्टडीज करनी है, तो ये सब हमें उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। हम इंग्लिश भाषा के प्रश्नोत्तरी को बना करके या साक्षात्कार अनुसूची को बना करके फिर उसका कन्वर्सेशन उनके साथ करते हैं, एक माध्यम के रूप में किसी तीसरे व्यक्ति को रखते हैं, तो वो चीज़ें हमको प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसलिए यदि हमको उच्च शिक्षा में अनुसंधान की बात करनी है तो खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में बात करते हैं जहाँ पर हिंदी की आवश्यकता है, तो हम शोध और शिक्षा दोनों ही में हिंदी में ही रखें, एक बात। दूसरी बात ये आती है कि हिंदी के जो शब्दावली है, हिंदी के जो शाब्दिक अर्थ की गूढ़ता है, वो इतनी सटीक होती है कि उसमें किसी भी अर्थ के भटकने का कहीं कोई आशंका नहीं होती है, इसलिए भी हिंदी का आना बहुत आवश्यक है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है, हिंदी वो भाषा है जो हमको एक दूसरे के साथ बांध के रखती है, हिंदी वो भाषा है जो आत्मिक प्रेम को दर्शाती है, हिंदी वो भाषा है जो अपनेपन की बात करती है, जिसको हम कहते हैं पारिवारिक लगाव। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है हिंदी में लिखना, हिंदी में पढ़ना, ये दूर की बात है, हिंदी में खाना, हिंदी में पीना, हिंदी में सोना, हिंदी में जागना और हिंदी में जीना, ये बड़ी बात आती है। जब हम हिंदी को जी पाते हैं तो शायद हम बहुत बेहतरीन तरीके कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी को हमने बचपन से पाया हुआ है, बचपन से जाना हुआ है और अन्य भाषाओं का पर्याप्त सम्मान करती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यदि हमें प्रतिस्पर्धाओं में आगे आना है तो उन भाषाओं का तो हमें ज्ञान भी लेना चाहिए, उन भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन मूल आधार में हिंदी को ही रखना चाहिए।
1: एक और पक्ष है शोध का ही कि हमारे जो स्रोत हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, हिंदी भाषा में बहुत कम उपलब्ध हैं, उनके लिए विदेशी भाषा पे ही आश्रित हैं जो रिसर्चर हैं आज भी। तो आप बताइए कि हिंदी में उच्च शिक्षा और शोध को दूसरी विदेशी भाषा या हम कहें कि अंग्रेजी में उसके समान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है अभी जो स्थिति है?
0: अब देखिए, अब परिदृश्य बदल रहा है। अब इस चीज को हम ये नहीं कह सकते

0: कि हिंदी में पाठ्य पुस्तक का अभाव है, हम ये नहीं कह सकते कि संदर्भ ग्रंथों का अभाव है। बहुत लोगों ने लिखना चालू कर दिया है। भारत सरकार की नीतियां भी इस तरह से कि वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशन के लिए अलग से इस तरह की योजनाएं संचालित कर रही हैं। और तो और आपको एक बात शेयर करते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता है और मैं सभी श्रोताओं को ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के CEC ने इस बात की कोशिश की है कि जितने भी हमारे यहाँ MOOCs प्रोग्राम में लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, MOOCs प्रोग्राम पढ़े हुए हैं, उन सबका स्थानीय भाषाओं में भी रूपांतरण होना चाहिए और विशेष रूप से हिंदी में MOOC को बनाने की पहल की जा रही है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ आने के कुछ दिन पहले ही एक MOOC समाजशास्त्र में पर्यावरणीय चेतना, ये मुझे CEC के माध्यम से मिला हुआ था। उसमें पूरे प्रोग्राम्स को हमने रिकॉर्ड कराया, विभिन्न विषय के विशेषज्ञों के व्याख्यान उसमें लिए, लोगों ने उसका बहुत लाभ लिया। ये क्रेडिट सिस्टम के आधार पर ऑनलाइन, क्योंकि अभी जो हमारे पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं और ये ऑनलाइन माध्यम से सभी स्तर के व्यक्तियों के लिए ये पाठ्यक्रम है जिसमें वो 2 क्रेडिट्स ले सकते हैं। तो हिंदी में उसको बनाया गया है और बहुत पॉपुलर हुआ, काफ़ी लोगों ने उसके अंदर में एनरोल कराया। डेट निकलने के बाद भी लगातार बहुत से लोग हमसे इस संबंध में चर्चा करते रहे कि हमको और रजिस्टर्ड होना है, पंजीकृत होना है, इस पाठ्यक्रम को पढ़ना है। ये तो केवल एक चीज़ मैंने आपको बताई, लेकिन अभी इस समय पर उच्च शिक्षा और भारत सरकार और जितनी भी नीतियाँ हैं वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के हिंदी में प्रकाशन लेके आ रहे हैं। MOOC में बहुत से प्रोग्राम हिंदी के पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जब हम ई पाठशाला की बात करते हैं, स्वयं और स्वयं पोर्टल की बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से यानी विविध चैनल के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे बहुत सी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इसमें भी हिंदी भाषा में ऑथेंटिक स्तर पर यानी प्रामाणिक स्तर की जानकारियाँ उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आपका कहना जरूर है कि कमी तो है, धीरे धीरे वो कमी ठीक होगी, शुरुआत हो चुकी है, तो हम भविष्य बहुत उज्ज्वल देख रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इस तरह के पाठ्यक्रम में संदर्भ ग्रंथ और पर्याप्त जानकारी मिलती रहेगी।
1: और जो संदर्भ ग्रंथ, जो मानक जो बुक्स होती हैं, स्तरीय किताबें जिनको कहा जाता है, उनका अगर जो है भी उपलब्धता, तो अनुदित पुस्तकें हैं, तो जो ट्रांसलेशन है उसका भी स्तर, कई बारी तो ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि आप देखते पढ़ते होंगे, तो ट्रांसलेशन के स्तर पर भी कुछ अगर किया जा रहा है विदेशी भाषाओं से?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये शासकीय स्तर पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार इसके मामले में बहुत गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में इस तरह के बहुत से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जहाँ पर कि हिंदी में इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक राजभाषा प्रकोष्ठ है, जो राजभाषा प्रकोष्ठ हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए बहुत से कार्यक्रम संचालित करती है। और जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैं आया हुआ हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से, वहाँ रहते हुए भी मैंने बहुत कुछ अनुभव लिए हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यदि हमको अपने लेटर पैड तैयार करने हैं, हमको अपनी सील तैयार करनी है, कोई भी कार्यक्रम तैयार करनी है, तो उसमें ऊपर सबसे पहले हिंदी में लिखा जाएगा, बाद में अंग्रेजी अन्य भाषा में आएगा। प्रयास हम लोग की ये होती है कि जब हम कभी किसी के साथ में पत्राचार करते हैं तो कुछ क्षेत्र विशेष निर्धारित किए गए हैं कि उनके बीच में यानी हिंदी भाषी से हिंदी भाषी में यदि हमको पत्राचार करना है तो वो केवल और केवल हिंदी में ही होना चाहिए, ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और कोशिश ये भी होती है कि हम लोग जहाँ तक संभव होता है विद्यार्थियों और शिक्षकों को और शोध के साथ में हिंदी में ही प्रथमतः बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ बहुत आवश्यक होता है वहाँ अंग्रेजी को लेते हैं
1: टर्मिनोलॉजी के लिए,
0: या कुछ इस तरह की मजबूरियाँ कभी आ जाती हैं कि वहाँ हिंदी नहीं, लेकिन फिर भी जब दूसरा व्यक्ति अंग्रेजी में बात करके अपनी भाषा को लेकर वहाँ प्रस्तुत कर रहा है तो क्यों नहीं हम हिंदी में बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कल का एक वाक्या मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ।
1: प्लीज।
0: जीवाजी विश्वविद्यालय में ही एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बहुत लोगों ने कुछ व्याख्यान दिए, वो अंग्रेजी माध्यम से थे, लेकिन मैंने मंच से कुलगुरु होने के नाते ये कहा भी और स्वयं भी उस चीज़ का अनुपालन किया कि चूंकि हम सितंबर माह को हिंदी के लिए समर्पित करते हैं तो मैं अपने व्याख्यान को हिंदी में ही रखूँगा, और उस पूरे व्याख्यान में अध्यक्षीय उद्बोधन मैंने हिंदी में ही दिया हुआ था। तो जब हम खुद भी कुछ करेंगे तो बाकी लोगों को भी महसूस होगा, और पूरे श्रोताओं को मैं इस बात को विनम्रता के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ आकाशवाणी के माध्यम से कि हम कभी ये ना सोचें कि यदि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदी हम बोल रहे हैं तो हम अपने भाषा के सम्मान के साथ अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, और विशेष रूप से उस समय हम हिंदी जरूर बोलें जब हमारे बीच विद्यार्थी हों, हमारे बीच अभिभावक हों, हमारे बीच जन सामान्य हो, ताकि उनको ये लगे कि हम जिस पद पर हैं उस पद पर भी हम रहते हुए हिंदी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम स्वयं उसका अनुपालन करेंगे तो हमारा समाज उसका अनुपालन करेगा।
1: जी, हम भी आपके उस प्रयास का अभिनंदन करते हैं। अब हमें ये बताइए कि भाषा से जुड़ा हुआ ही एक पक्ष है संस्कृति का, तो जो स्थानीय संस्कृति है विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी सिस्टम हिंदी और हमारी स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे लग रहा है कि आप आकाशवाणी में तो ठीक है, लेकिन आप शैक्षणिक संस्थान में ज्यादा हैं, इस तरह के जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं एक शोध का विषय हो सकता है। दरअसल में जो भाषा है वो संस्कृति का हिस्सा होता है। भोजन, वेशभूषा, बोली या भाषा, ये सब चीज़ें संस्कृति का हिस्सा होती हैं, और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। फर्क ये होता है कि उस भाषा में कुछ बोलियाँ जुड़ जाती हैं, स्थान विशेष पर थोड़े से उसके जो उच्चारण की शैली है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक समृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए और विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ में मूल्यों को बढ़ाने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हिंदी भाषा उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने माता पिता के साथ बात करेंगे तो संस्कृति का एक और हिस्सा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। उन्होंने जो मूल्य दिए हुए वो कैसे आएंगे? वो अपनी भाषा में ही बोल पाएंगे। ये बहुत आवश्यक नहीं कि हमारे परिवार के दो पीढ़ी तीन पीढ़ी के लोगों ने अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में पढ़ाई की होगी, वो अपनी अपनी भाषा को बोलते थे। उन्होंने जो कुछ श्रुत परंपरा से हमको बताया हुआ वो हम सीख के आते हैं, तो उस भाषा में। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी भूमिका हम कभी नहीं भुला सकते हैं, हमारे जो स्थानीय स्तर के लोक गायन होते हैं
1: जी,
0: लोक नृत्य होते हैं, लोक वादन होते हैं, लोक काव्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे मध्य भारत की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के प्रत्येक सुख और दुख के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं विशेष किस्म के लोकगीतों का संचलन होता है,
1: हर संस्कार से,
0: हर संस्कार के साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो वहाँ की स्थानीय भाषा में होता है। हिंदी में जब उस चीज़ को बोलते हैं तो प्रत्येक भाषा में कितना रस होता है, कितनी सरसता होती है, कितना ओज होता है, कितना तेज होता है, कि उसको सुनने के बाद में उस परिवेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल उसी में खो जाता है। तो वो जो भाषा का रस है वो हम हिंदी में पाते हैं, वो भाषा की ऊर्जा है वो हम हिंदी में पाते हैं, वो भाषा का लगाव है वो हम हिंदी में पाते हैं। और इसलिए जीवन जीने की शैली के लिए, यहाँ तक कि यदि कहीं कोई व्यक्ति किसी तरह से थोड़ा सा दुखी होता है तो उसको जब हम सांत्वना देते हैं, उसकी बात को सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम यदि हिंदी में उसके साथ बोलते हैं वो ज़्यादा अपनापन महसूस करता है, और वहाँ पर आधी दवाइयों का बोझ उसका ख़त्म हो जाता है। यदि हम उसके साथ में अन्य भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं जो उसकी भाषा से परे है, तो शायद वो बहुत बेहतरीन तरीके से उपचार नहीं पाता है। और यही उपचार की पद्धति में भी होता है, यदि डॉक्टर उसके साथ में हिंदी में बात कर रहा है तो शायद वो मरीज को अच्छे समझ पाएगा, मरीज को ज़्यादा अच्छे समझा पाएगा, और जब वो मरीज होता है वो चिकित्सक के पास जाता है तो उसके पास से लौट करके वो बहुत सुकून पैदा करता है कि इन्होंने हमको सुना है, इन्होंने हमको समझाया है। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल जीवन जीने के लिए वरन जीवन को आनंदित करने के लिए भी बहुत आवश्यक होती है,
1: सलीके से जीने के लिए।
0: और इसमें लोकगीत लोक नृत्यों का बड़ा योगदान है। तो संस्कृति के रूप में जो आपने कहा, हम उनको संरक्षित करते हैं। एक एक लोकगीत का एक एक मुखड़ा, एक एक लाइन इस बात को बताती है कि भाषा कितनी समृद्ध है, एक शब्द का कितने अर्थ हो सकते हैं, वो उसकी लय और ताल के साथ आता है।
1: विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उनको संरक्षित करते
0: हैं, इस पर हम लोग शोध कराते हैं। मैंने खुद समाजशास्त्र शिक्षक होने के नाते कुछ शोध इस पर भी कराए हुए हैं, जो केवल लोकगीत और लोक नृत्य पर भी हैं।
1: डॉक्टर राजपूत, अब हमारे श्रोताओं को हिंदी पखवाड़े के अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुल गुरु के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में सबसे पहले मैं आकाशवाणी का बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आपने हिंदी पखवाड़े के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, मैं आपसे कुछ बात कर सकूँ, श्रोताओं के साथ जुड़ सकूँ। और जितने श्रोता हैं उनके साथ मैं एक संदेश को साझा करना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। हिंदी में बोलना हमारे लिए गरिमा की बात होनी चाहिए, हिंदी में जीना हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, और हिंदी में बात करना हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। हम अपने विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के अभिभावकों को और साथियों को ये बताना चाहते हैं कि स्थानीय स्तर के जो संसाधनों की उपलब्धता है और वैश्विक स्तर की जो प्रतिस्पर्धाएँ हैं, उसमें कभी आप ये मत समझिए कि हिंदी कोई अवरोध है। आप ये समझिए कि हिंदी उसमें सहायक है। आप अभिव्यक्ति करना सीखिए, वो अभिव्यक्ति आप किसी भी भाषा से, किसी माध्यम से करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी माँ की बोली है
1: जी।
0: और जब माँ की बोली से हम बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। हमारी जो प्रस्तुति होती है उसमें हमारी भावनाएं होती हैं, हमारा आत्मविश्वास होता है, हमारे ज्ञान का वह सारा स्वरूप होता है जो हमने शुरू से आज तक पाया हुआ है। तो वहाँ पर आपका कैरियर बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर और समीचीन यदि हो सकता है तो आपकी हिंदी भाषा हो सकती है। इसीलिए हिंदी भाषा में पढ़ने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें, और ख़ासकर जब आप संवाद करते हैं तो हिंदी भाषा को महत्व रखें। और साक्षात्कार के अवसर पर विशेष रूप से कई विद्यार्थी अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं जिस पर उनकी कमांड नहीं होती है, और वहाँ पर वो हेजिटेट भी होते हैं, तो किसी भी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपनी भाषा में बोलते हुए फ़ख्र महसूस करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं, वैसे ही अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करना सीखें और उससे ऊर्जा पाएं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
1: डॉक्टर राजपूत, हम अंत करते हैं पॉडकास्ट का, वो एक म्यूजिकल नोट पर करते हैं, एक संगीतमय प्रस्तुति के साथ करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी पसंद का वो फिल्मी गीत कौन सा है जो मैं आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनूं?
0: बहुत मुश्किल है यही एक क्षेत्र है जिसमें मैं लगातार पीछे रहा हूं और मुझे लगता नहीं कभी मैंने गाने के कोई बोल भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे।
1: कोई गीत तो हो
0: नहीं, यदि आपको मेरे विद्यार्थी जीवन को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि शायद हाँ मैं मंच का व्यक्ति रहा हूँ, मैं मंच पर बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर लेता हूँ, बहुत अच्छा वक्ता लोग मुझे कहते हैं और जहाँ जहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं हमेशा फर्स्ट प्राइज मुझे को मिली हुई है, लेकिन गीत संगीत के मामले में हमेशा जीरो रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि काव्य यदि गद्यात्मक रूप में है तो वही पर्याप्त है। राष्ट्रगीत के अलावा, राष्ट्रगान के अलावा, सरस्वती वंदना के अलावा कोई अगला गाना मुझे कभी आता है आज तक मुझे याद नहीं है। आप अपनी सुविधा से पसंद से मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप हिंदी का कौन सा गाना मुझे और हमारे साथ श्रोताओं को देना चाहते हैं।
1: देखिए, मेरे लिए तो ये अविश्वास की बात है कि पूरे जीवन में किसी को कोई फिल्मी गीत नहीं पसंद भारत में।
0: है, ये वास्तविकता है। पढ़ना मेरा जुनून रहा है और पढ़ने में इस तरह से जुनून रहा है कि जब मैं प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी था तो पढ़ते पढ़ते डांट पड़ती थी तो मैं रजाई में अपना सर ओढ़ के सो जाया करता था, टार्च होती थी उसको जला के अंदर पुस्तक लेके पढ़ता था ताकि लोगों को बाहर मम्मी को या दीदी को या पिताजी को रोशनी ना मिले। तो पढ़ाई तो इस तरह से की है, जुनून के साथ की है, लेकिन गाना कभी नहीं।
1: कोई कविता?
0: हाँ,
1: तो आप अपनी एक कविता सुना दीजिए जिसके साथ हम इस पॉडकास्ट को विराम देंगे।
0: जी जरूर। कोई साधक पुष्प का कोई खुशबू में खोया है, चुभन कांटे से पाई तो तड़पा और रोया है, पर प्यार कांटों से मुझे, मैं आशिक उसी का हूँ, सभी का दोस्त हूँ ना दुश्मन किसी का हूँ, फूल भी लगते हैं प्यारे कांटे भी मुझको भाते हैं, पर उपेक्षा न कांटों की राज मुझको आती है, यही कांटे जब फूल के लिए टूट जाते हैं तब शब्द मेरे गीत बनकर महक उठते हैं, गीत बनकर वही सबके दिल में बसते हैं, इन्हीं को प्यार करना फर्ज मेरा, धर्म मेरा काम है, भारत का मैं रहने वाला, भारतीय मेरा नाम है। एक्चुअली भारतीय उपनाम से मैं रचनाएं लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, अलग अलग तरह की कविताएं। जब कभी सांस्कृतिक कविता लिखता हूँ तो दिव्य के नाम से लिखता हूँ, राष्ट्रीय लिखता हूँ तो भारतीय के नाम से लिखता हूँ।
1: दो तखल्लुस
0: मेरे पास है
1: जी। सर, इस सार्थक बातचीत के लिए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ये पॉडकास्ट हिंदी भाषा विचार और भविष्य। इस विषय पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत से बातचीत कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: याद रखो हमारी बात,
4: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
3: जंगल है धरती का गहना,
4: सदा इसकी रक्षा करना,
3: होगी जो धरती पर हरियाली,
4: चहुं ओर फैलेगी
3: खुशहाली।
5: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओ, भोपाल से इस घंटे की खास खबरें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम आपको नहीं सुनवा पाए। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अब प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जो ये लौटता हुआ मॉनसून है और आपके शहर में बरस रहा है, आपको थोड़ी राहत ज़रूर दे रहा होगा। और यही मॉनसून है जो माहौल में थोड़ी सी ठंडक ले आया है। जी हाँ, नल से जब पानी निकलता है उसके नीचे हाथ लगाइए तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है। और साथ ही साथ आपके जो एसी और कूलर चला रहे थे आप, उन्हें भी थोड़ी सी राहत तो मिली ही होगी। बंद हो गए ना? और अगर नहीं भी बंद हुए हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इन्हें आराम देना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल हुआ पड़ा है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें आपसे करते हैं। ये सारी बातें आज के अखबार में हैं, लेकिन आपके घर में सिर्फ एक अखबार आता है। हम बहुत सारे अखबारों से कुछ कुछ चीज़ें ढूंढकर आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज की जो सबसे पहली बात है वो हम एक अध्ययन है उसके आधार पर कर रहे हैं। दरअसल ये जो अध्ययन है ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसी समाज पर किया गया अध्ययन है। इस अध्ययन के आधार पर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे

हैं जो रोज़ बरोज़ युवा बने रहना चाहते हैं और युवा हुए जाना चाहते हैं। रोज़ हम इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज हम कल से ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और युवा दिखें। बढ़ती हुई उम्र को हम या तो रोक लेना चाहते हैं या रिवर्स गियर की तरफ डाल देना चाहते हैं, और यही वजह है कि बाज़ार आज एक एंटी एजिंग इंडस्ट्री खड़ा कर चुका है। जैसे ही हम अपने मोबाइल पर सर्च करते हैं किसी एंटी एजिंग प्रोडक्ट के बारे में, हमें तमाम तरह के एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स वो दिखाने लगता है और हम इस जाल में फंस जाते हैं। अपनी उम्र को हम रोक नहीं सकते, इतना तो तय है, लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं। इस ढलती उम्र को मात देने के लिए, या कह लीजिए उम्र को जमा बनाए रखने के लिए, पूरी दुनिया में लोग जिन थेरेपीज़ की तरफ जा रहे हैं वो उनके नाम हम आपको बताते हैं। ये हैं स्टेम सेल थेरेपी, टोटल प्लाज्मा रिप्लेसमेंट, यहाँ तक कि अपने सेल्स की क्लोनिंग तक करवा रहे हैं और इस तरह के बायो हैकिंग प्रयोगों में करोड़ों रुपए बहा रहे हैं। चूँकि बाज़ार इसे हवा दे रहा है और कमाई कर रहा है, हाँ, और हम अपनी गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। दरअसल शोध जो हैं वो ये बताते हैं कि उम्र का बढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ये तो हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जो उम्रदराज लोग होते हैं वो युवाओं की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, थोड़े से ज़्यादा अनुभवी होते हैं, लेकिन ये समझदारी और ये अनुभव भी हम हासिल नहीं करना चाहते। युवाओं की तरह हरकतें और युवाओं की तरह की वेशभूषा धारण किए रहना चाहते हैं। आप अपने आसपास समाज को देखिए तो ऐसे ही लोग आपको ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ इंसान का दिमाग जो है ना, वो नकारात्मक बातों और जो कड़वे अनुभव उसे हुए रहते हैं वो भूलता जाता है। यही है सही तरीके की एजिंग, एडल्टिंग कहते हैं इसे आजकल के लोग। ये हम भूलते हैं और जितनी भी सकारात्मक जानकारियाँ हमारे आसपास मौजूद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं लोग। लेकिन युवा बने रहने की होड़ में हम ये जो अनुभवजन्य ज्ञान है इसे भी अनदेखा करते जाते हैं। ये जो पॉजिटिविटी इफ़ेक्ट हमारे भीतर आना चाहिए ये नहीं आ पाता। दरअसल हमारी ज़रूरतों में बदलाव की वजह से ये इफ़ेक्ट हमारे भीतर आता है, लेकिन हमने अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को वहीं रोक रखा है। बदलने नहीं देना चाहते हम अपने आप को, उम्र को रोक लेना चाहते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव फैक्टर हमारे व्यक्तित्व में नहीं आ पाता और हम उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं जिसमें एक युवा फंसा रहता है। उम्र को एक खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट कर लेना एक तरह की कला है और ये कला सीखने वाली चीज़ है, और हम इस सीख को हासिल करने में अक्सर देर कर देते हैं। सकारात्मक जानकारियां तो बुज़ुर्गों के पास होती ही हैं, बुज़ुर्ग ना कहें, उम्रदराज लोग कहें तो ज़्यादा बेहतर है। निर्णय वो हमेशा अपनी दूरदर्शी सोच के आधार पर लेते हैं। चिंता, गुस्सा, उदासी, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव भाव हैं, ये युवाओं की अपेक्षा उम्रदराज लोगों में कम होते हैं। यानी यदि हम युवा बने रहने को की चाह को छोड़ दें और एडल्टिंग की तरफ बढ़ें तो हम ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी के मालिक होंगे। चीज़ों को सीखने की क्षमता में भले थोड़ा सा धीमे हो जाएं हम, लेकिन जीवन भर जो अपने तजुर्बे से हासिल किया है ज्ञान, वो हम हासिल कर पाएंगे, अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। सोचने समझने का ढंग बेहतर हो पाएगा,
किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने की क्षमता हमारी विकसित हो सकेगी और कई दशकों के अनुभव के कारण अपनी ताकतों और अपनी कमियों को हम अच्छी तरह पहचानने लगते हैं। इसी वजह से कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो, हम सही स्ट्रैटेजी चुनते हैं और समस्याओं को जल्दी सुलझा लेते हैं। बस आपको देखना है कि आप बाहर से युवा बने रहना चाहते हैं या बाहर से युवा बने रहने के साथ साथ भीतर से समझदार भी होना चाहते हैं। कितना ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि बाहर से हम युवा दिखते रहें और अंदर से धीरे धीरे उम्र दराज होते जाएं।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: आई एम हियर
2: दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों एक और शोध के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और वो है आपकी एक विशेष आदत से संबंधित रात को सोने से ठीक पहले आप क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कमरे की लाइट बंद करते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं थोड़ी देर तक कुछ देखते हैं वो कोई वीडियो हो सकता है कुछ रील्स हो सकती हैं या अपना फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं कोई भी जिस भी सोशल मीडिया पर आप हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस देखते और दूसरे लोगों को मैसेजेस करते हैं ऐसा होता है ना अक्सर ऐसा होता है कि लाइट बंद करने के बाद मोबाइल की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही होती है और तब तक हम मोबाइल ऑन रखते हैं जब तक कि हम सो नहीं जाते बस इसी पर है शोध अगर रात में कमरे की लाइट टीवी या बाहर की स्ट्रीट लाइट भी कमरे में आती है तो इसे कम कर लेना चाहिए सोचिए ऐसे में यदि मोबाइल की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है तो ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है दरअसल सोते समय ज़्यादा रोशनी दिल की बनावट और कामकाज में नुकसानदायक होती है ज़्यादा नाइट टाइम लाइट एक्सपोजर वाले लोगों में हृदय रोगों का जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है तो रात के समय लाइट के एक्सपोजर से बचना चाहिए पहले कहा जाता था ना कि रात को जल्दी सो जाइए बस इसीलिए कि रात चूँकि सोने के लिए बनी है इसलिए कृत्रिम जो रोशनी है उससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा जाए रात में रोशनी में रहने वाले लोगों की दिल की बनावट और उसके काम करने के तरीके में बदलाव हो जाता है मांसपेशियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं और खून पंप करने की क्षमता भी थोड़ी सी कम हो जाती है हालांकि ये बदलाव शुरुआती तौर पर दिल की बीमारी नहीं होते लेकिन आगे चलकर बीमारी के समय खतरे में अपना योगदान भी दे देते हैं ऐसे लोग जो रात में सोने से पहले यानी कि नाइट टाइम लाइट एक्सपोजर जिनका ज़्यादा होता है उनमें उनकी हार्ट डिजीज़ के बीच में संबंध मिला है ऐसे लोगों में हार्ट फेल्योर का जोखिम 30% ज़्यादा होता है हार्ट अटैक का ख़तरा इन्हें 24% ज़्यादा होता है सामान्य लोगों की अपेक्षा स्ट्रोक का ख़तरा 33% ज़्यादा होता है और हार्ट डिजीज़ से मौत का जोखिम 25% से ज़्यादा होता है यानी यदि हम रात में सोएं तो कमरे की रोशनी जितनी कम हो उतना बेहतर यदि पूरा अंधेरा हो तो ज़्यादा मुफीद होता है इसलिए सोते समय हमेशा लाइट्स पूरी तरह ऑफ रखें टीवी या फ़ोन की तेज़ रोशनी से बचें जितनी भी स्क्रीन से आने वाली लाइट्स हैं वो भी इस एक्सपोज़र को बढ़ा देती हैं इसलिए इनसे दूर रहें यदि स्ट्रीट लाइट भी आपके कमरे में आती है जिसे आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी खिड़कियों को पर्दों से ढक दीजिए सोते समय तो ये थोड़े से उपाय करेंगे ना आप तो बहुत बेहतर महसूस करेंगे

एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, अभी कुछ दिन पहले जब पूरा इंटरनेट 80s के ट्रेंड से भरा हुआ था, तो उस समय हमने आपसे ये कहा था कि आप जितना ज़्यादा AI का उपयोग करेंगे उतना ही पर्यावरण का संकट गहराता जाएगा। इसी से संबंधित एक और, या कह लें कि उसके आगे की बात हम आपसे करना चाहते हैं, वो है हमारे जो डिजिटल संदेश हैं या फोटोग्राफ्स हमारी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के गैलरी में पड़ी रहती है या क्लाउड पर पड़ी रहती है, उसका क्या असर होता है हमारे पर्यावरण पर। दरअसल डिजिटल जितनी टेक्निक्स हैं और इंटरनेट डेटा सस्ता होने की वजह से, और साथ ही साथ स्मार्टफोन की सभी को सुलभता होने की वजह से हमारे दैनिक जीवन में तो आराम आया ही है, लेकिन एक पर्यावरणीय संकट खड़ा हो गया है जो दिखता नहीं है। ये इसीलिए इसे अदृश्य पर्यावरणीय संकट कहा जाता है, और जो डिजिटल कचरा हम अपने मोबाइल फ़ोन में सहेजे रहते हैं, यही हमारे लिए मुश्किल रोज़ बरोज़ खड़ी करता है। हर दिन हमारे फ़ोन और कंप्यूटर पर अनगिनत अनावश्यक ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस और फोटोग्राफ्स हमें मिलती हैं, और हम इन्हें डिलीट नहीं करते और अपने फ़ोन और कंप्यूटर्स में रखे रहते हैं, और यही क्लाउड सर्वर्स पर संग्रहित होते रहते हैं। ये जो बेकार का डेटा है, यही इस कचरे का निर्माण करता है। और इस कचरे की वजह से होता क्या है? दरअसल प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक कचरा आपको दिखाई देता है, लेकिन ये डिजिटल कचरा आँखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि ये जो अदृश्य कचरा है ना, ये हमारे देश के ऊर्जा संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा उपयोग कर लेता है। पर्यावरण पर कार्बन उत्सर्जन का एक गहरा बोझ डाल देता है। दरअसल मैसेजिंग और ईमेल का दायरा इतना व्यापक हो चुका है कि इससे बचना अब लगता है मुश्किल होता जा रहा है। यदि हम इस कुचक्र से बाहर नहीं आए, तो हम अपना अपना कचरा जो है वो इस पर्यावरण में फेंकते रहेंगे और इस पर्यावरण के बोझ को बढ़ाते रहेंगे। यदि अनुमान लगाया जाए तो भारत से ही प्रतिदिन लगभग 8 अरब से ज़्यादा ईमेल भेजे जाते हैं। जब कोई संदेश भेजा जाता है ना, तो वो सर्वर पर सहेजा भी जाता है या किसी भी नेटवर्क से होकर गुजरता है। जो भी डेटा सेंटर्स हैं, नेटवर्क राउटर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं या मोबाइल टावर्स हैं, इन सब को एकदम चालू रहना पड़ता है और इनकी आवाजाही को नियंत्रित रखना पड़ता है, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह जब हम कोई बड़ा वीडियो, ऑडियो या हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड करते हैं, या बरसों पुराने ईमेल और बैकअप को क्लाउड से डिलीट नहीं करते, तो हम डेटा सेंटर्स पर होने वाली बिजली की खपत और सर्वर्स को ठंडा रखने में लगने वाली ऊर्जा की मांग को सीधे तौर पर बढ़ा रहे होते हैं। और इसी डिजिटल कचरे के कारण होने वाली ऊर्जा की खपत बढ़ती जाती है। इस गंभीरता को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी हुई बातें हैं। एक सामान्य स्पैम ईमेल को भेजने, फिल्टर करने और प्रोसेस करने में सर्वर पर और इसे सर्वर पर स्टोर करने में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, वो हमारी धरती पर खतरा लगातार बढ़ाती जाती है। अब इसके लिए करना क्या होगा? हमें अपनी डिजिटल आदतों में अनुशासन अपनाना होगा। जितनी भी अवांछित ईमेल और व्यावसायिक विज्ञापन हैं, उन्हें तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि वो बार बार हमारे इनबॉक्स में नहीं आए।
अपने क्लाउड स्टोरेज और ईमेल इनबॉक्स को समय समय पर साफ करते रहना होगा, पुरानी और डुप्लीकेट फाइल्स को डिलीट करते रहना होगा, और जितने भी संदेश हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वही यदि हम भेजें तो ही हम एक ज़िम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सकेंगे। और डिजिटल क्रांति की सफलता तभी है जब हम इस तकनीक का दूरदर्शिता से और समझदारी से इस्तेमाल करें।

इस गीत के साथ ही सूचना और समाचारों पर केंद्रित ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग ग्वालियर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली कातरणेकर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनय विंदे। आइए सुनते हैं मिताली कातरणेकर का गाया राग जौनपुरी में ये ख्याल।

अभी आप सुन रहे थे मिताली का तरणीकर का गाया राग जौनपुरी में ये ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनय विंदे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मानव सेवा की। बढ़न के सामुदायिक भवन में लगे रक्तदान शिविर में कलेक्टर गौरव बैनल और पुलिस अधीक्षक सियाज के एम ने खुद रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। शिविर में 100 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्र हुआ। अधिकारियों ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में बड़ी मदद करता है। अब बात मछली पालन की। मुड़वानी के आदिवासी मछुआरा सहकारी समिति को 1,00,000 मिश्रित मत्स्य बीज मुफ्त दिए गए, जिन्हें मुड़वानी जलाशय में डाला गया। जिले में मत्स्य बीज हैचरी नहीं होने के कारण अभी बाहर से बीज मांगना पड़ता है। इसी को देखते हुए कलेक्टर की पहल पर एनसीएल के सीएसआर फंड से 67,57,00,000 रुपए की लागत से सरकारी मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण शुरू कराया गया है। वहीं चितरंगी के देवरा ग्राम पंचायत क्लस्टर में लगने वाले विशेष शिविर की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने और शिविर से पहले क्षेत्र का दौरा कर पात्र हितग्राहियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। पात्र लोगों के अधिकार, अभिलेखों की मुफ्त रजिस्ट्री और अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त होने वाले परिवारों को समय पर राहत राशि देने को भी कहा गया है। अब बात पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। जयंत की मस्जिद तिराहे पर कंचन ज्वेलर्स में हुई हथियारबंद डकैती के मामले में सिंगरौली पुलिस ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। अलग अलग राज्यों में 10 टीमें लगाई गई और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के कब्जे से 180 ग्राम से ज्यादा सोने के जेवर, 205 ग्राम से ज्यादा चांदी, 54,200 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। अपराध के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मकरोहर क्षेत्र में अवैध गांजा और शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 18,35,000 रुपए का गांजा और करीब 51,000 रुपए की शराब बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर की सफाई की बात करें तो बारिश के दौरान मच्छरों और दूसरे कीटों के प्रकोप से बचाने में नगर निगम ने कमर कस ली है। लगातार नालियों की सफाई और जल निकासी का काम किया जा रहा है। मुरवा जोन के बस स्टैंड और बागी रेडियो लाइन इलाके में कीटनाशक पाउडर का छिड़काव किया गया। निगम ने जरूरत वाले इलाकों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। धनारा क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन में लगे बिना नंबर के 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त वाहनों को माड़ा थाने में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। विभाग की ओर से जिले में अवैध खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब रुख करते हैं सिंगरौली की कोयला खदानों का। मानसून की रफ्तार धीमी होने के साथ एनसीएल की उत्पादन और कोयला भेजने की गति बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2026-27 में 8 सितम्बर तक एनसीएल का कोयला उत्पादन 51.43 मिलियन टन और प्रेषण 55 मिलियन तक पहुंच गया है। सिंगरौली की एक और उपलब्धि की बात करें तो एनटीपीसी विंध्याचल को एशिया पैसिफिक

0: HRM कांग्रेस अवार्ड में टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस पुरस्कार मिला है। यह सम्मान कर्मचारियों के लिए नए और प्रभावी प्रशिक्षण और सीखने की बेहतर व्यवस्था के लिए दिया गया है। बेंगलुरु में हुए समारोह में एनटीपीसी विंध्याचल की ओर से उप महाप्रबंधक रविकांत रामिनी ने पुरस्कार प्राप्त किया। और अब बात युवाओं के लिए रोजगार के मौके की। सिंगरौली और सोनभद्र के 120 बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को प्लास्टिक उद्योग से जुड़े काम का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 महीने के इस प्रशिक्षण में प्लास्टिक बनाने, ढलाई और पुनर्चक्रण मशीन चलाने के 3 पाठ्यक्रम होंगे। हर पाठ्यक्रम में 40 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आखिर में बैंकिंग से जुड़ी खबर। बैंक हड़ताल के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए 27 सितम्बर रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। वह 28 से 30 सितंबर तक किसी भी बैंक के एटीएम से किए गए लेन देन पर लगने वाला एटीएम शुल्क माफ रहेगा। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है, क्यों होती है दांतों की समस्याएं। इस विषय पर डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित से बात कर रही हैं आभा गुप्ता।
3: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं। मोती जैसे चमकदार और स्वस्थ दांत आपकी मुस्कान को ही 4 चांद नहीं लगाते हैं श्रोताओं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अधिकांश लोग दांतों से जुड़ी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं। तो श्रोताओं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है, क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू।
3: सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि दांतों की संरचना कैसी होती है, उसके बाद हम और सवाल आपसे करेंगे।
4: देखिए, दांत का 2 भाग होते हैं
3: जी।
4: एक क्राउन कहलाता है पोर्शन, जो वो पार्ट है जो हमें मुंह के अंदर दिखता है, और दूसरा पोर्शन कहलाता है रूट
3: जी।
4: रूट का जो पोर्शन होता है जिसको हम जड़ कह सकते हैं
3: जी,
4: ये हड्डी के अंदर रहती है। जड़ एक बहुत पतली झिल्ली के माध्यम से हड्डी के साथ में जुड़ी हुई रहती है, और इसके बीच में द्रव्य होता है जिससे सीधा सीधा जर्ग कभी हड्डी के ऊपर नहीं लगता है।
3: अच्छा, तो ये दांतों की संरचना के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया श्रोताओं कि इसकी जड़ होती है जो हमारे मसूड़ों के अंदर होती है। तो दांतों की सफाई के लिए पहले तो दातून इस्तेमाल किए जाते थे डॉक्टर साहब, आजकल ब्रश भी करते हैं और मंजन भी कुछ लोग करते हैं, तो सबसे बेहतर क्या है दांतों की सफाई के लिए?
4: देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले समय में लोग दातून का उपयोग करते थे, और आज भी अगर वैज्ञानिक विधि से देखा जाए तो दातुन करने का जो सिद्धांत था वो ज्यादा वैज्ञानिक था। समय के साथ साथ हमने ब्रश करना तो शुरू कर दिया है
3: जी,
4: पर ब्रश में लोग ब्रश का जो हैंडल होता है उसको पकड़ के आगे पीछे उसका मूवमेंट करते हैं
3: जी,
4: जबकि सही टेक्निक ये है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ब्रिसल्स का मूवमेंट होना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि अगर एक नीम की दातुन है तो उसमें ऊपर नीचे ही मूवमेंट होगा, साइड टू साइड उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं था,
3: यानी उससे गलत आप कर ही नहीं सकते।
4: गलत टेक्निक आप उसमें अपना ही नहीं सकते थे। तो ये माना जाए कि उस समय लोग ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से का उपयोग कर रहे थे। दूसरी बात ये थी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नीम में हुआ करती थी, उस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण जो मुंह के अंदर बीमारियां होती थी उन बीमारियों की रोकथाम हो जाती थी। अब आज देखिए, जो पेस्ट मार्केट में आ रहे हैं या जो पाउडर मार्केट में आ रहे हैं, उसमें कई चीजें ऐसी आ रही हैं कि जिनमें जैसे जाइलोटॉल एक होता है
3: जी।
4: जाइलोटॉल के बारे में अभी रिसेंट ये रिसर्च आई है कि इसमें कैंसरोजेनिक प्रॉपर्टी होती है
3: जी।
4: तो ये इनके जो साइड इफेक्ट हैं और इनके जो नुकसान हैं वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही हैं।
3: जी, तो दांतों में ब्रश किस तरह से करना चाहिए ये भी एक दंत रोग विशेषज्ञ ही बता सकता है।
4: जी, वो ऊपर से नीचे ही किया जाना चाहिए,
3: नहीं तो दांतों की जो परत है उसको नुकसान पहुंचता है।
4: दूसरा एक चीज और मैं आपको बताऊं, बहुत साधारण सा उदाहरण है, पहले कुओं के ऊपर बहुत बड़े पत्थर के पार्ट पड़े रहते थे, उस पर जब रस्सी घिसती थी तो धीरे धीरे उसमें एक गड्ढा बन जाता
3: था, निशान पड़ जाता था।
4: जब आप ब्रश की रॉन्ग टेक्निक यूज करते हैं तो दांत के ऊपर उस तरह का क्षरण होता है और बाद में लोगों को ठंडा गर्म लगने की समस्या शुरू हो जाती है।
3: बिल्कुल, ये सेंसिटिविटी की समस्या जो आजकल आम हो गई है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अक्सर लोगों के दांत मजबूत हुआ करते थे ऐसा कहा जाता है, कई बार दांत जो है 60 साल के बाद 80 साल तक भी बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दांत बहुत जल्दी ही टूटने लगते हैं या उनमें समस्या पैदा होने लगती है, तो इसकी वजह क्या होती है?
4: पहले लोग खाना खाते थे उसमें रेशे वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती थी और रेशे वाली चीज़ों को चबाने के लिए आपको बहुत अच्छी सरफेस की ज़रूरत होती थी। दूसरा, उनके चबाने से जड़ के ऊपर खून का फ्लो बढ़ता था, खून का बहाव बढ़ता था। दूसरा, रेशे वाली चीज़ को जब आप बहुत देर तक चबाते थे तो उसमें एसिड जो खाने चबाने के कारण से बनता है वो एसिड का एक्युमुलेशन दांत की सरफेस पर नहीं होता था।
3: जी।
4: इस वजह से दांत में कैविटीज भी कम होती थी, मसूड़ों की बीमारियां भी कम होती थी और दांत की तकलीफ कम होती थी।
3: बिल्कुल।
4: पर जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए हैं, हम लोग ये कहते हैं कि दांत की जो बीमारियां हैं दे आर द डिसीज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, और उसी का परिणाम ये हो रहा है, हमारे खान पान की हैबिट में परिवर्तन आया, ब्रश की टेक्निक गलत की है। आजकल अनेक ऐसे पदार्थ आ गए हैं मार्केट में, जैसे पाउच आ गए हैं, लोग दिन भर पाउच चमाते हैं, तवाकू चमाते हैं, उसके कारण से दांतों की बीमारियां बढ़ी हैं।
3: बिल्कुल, तो पाउच जो लोग खाते हैं या जो तंबाकू चबाते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसका दांतों पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, इस बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे आगे। लेकिन अब हम गीतों का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले कौन सा गीत आपकी पसंद का हम सुनवाएं?
4: देखिए, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और मैं भावुक भी हूँ। एक बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर का, ए मेरे वतन के लोगों। आज जब भी मैं वो सुनता हूँ तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि उस गीतकार ने जब ये गीत लिखा होगा तो उसने पूरा अपना दिल निकाल के रख दिया होगा।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: कैसे भी व्यक्ति हो जब वो गाना सुनता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते।
3: बिल्कुल सही बात है, और लता जी ने ये गीत गाया भी उसी जज्बे के साथ है। तो आइए श्रोताओं, इस गीत को सुनते हैं लता जी की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ हम भी शहीदों को शत-शत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ, और आज का हमारा विषय है क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। डॉक्टर साहब, जैसा कि इस गीत से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि तंबाकू के सेवन से या पाउच जो गुटखा जिसे कहते हैं उसके खाने से इनका दांतों पर क्या असर पड़ता है और इसको किस तरह से छोड़ा जा सकता है?
1: देखिए, तंबाकू दो तीन तरह से उपयोग की जाती है। एक के साथ में चूना मिला के खाते हैं, दूसरा उसको बीड़ी या सिगरेट के रूप में तंबाकू उपयोग की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि तंबाकू में 4000 तरह के केमिकल्स होते हैं और उसमें से लगभग 450 केमिकल्स ऐसे हैं जिनसे कैंसर की पूरी पूरी संभावना रहती है। तंबाकू से धीरे धीरे एक सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी होती है।
0: अच्छा।
1: जिसमें लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है,
0: बिल्कुल कम खुलता
1: है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरी क्लिनिक पर हर रोज 2 से 3 नए लड़के 18 से 20 साल की उम्र के बच्चे आते हैं। एक उंगली वो मुंह के अंदर नहीं डाल पाते हैं, खाना खाने में उनको परेशानी होती है। और ये जो हमारी पाउच संस्कृति आई है ना,
0: बिल्कुल,
1: चूंकि कॉस्ट कम होती है, उपलब्धता इजी है, इस वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर में 25 पाउच खाते हैं।

0: पाउच खाते हैं और उसकी वजह से उनको ये म्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी होती है। तम्बाकू के सेवन से कैंसर की बीमारी होती है। सिगरेट के सेवन से सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, आज जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है उनमें ये पाया गया है कि इसमें फॉजीन गैस होती है, तम्बाकू के जलने से पैदा होती है, निकोटीन होती है। निकोटीन वो पदार्थ है कि अगर कोई आधा मिलीग्राम निकोटीन किसी को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है।
1: तम्बाकू
0: में ये भरपूर होता है। दूसरा, अगर बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं है वहां जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब उसके फेफड़ों में जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सोसाइटी में लोगों को समझना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए।
1: जी, तंबाकू सेवन हो, धूम्रपान हो या गुटखा खाना हो, इससे हम अपने स्वास्थ्य से तो हाथ धोते ही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि दांतों पर इनका सीधा सीधा क्या असर होता है। कई लोग तंबाकू खाने के पीछे वजह बताते हैं कि हमें पायरिया था या हमारे मसूड़ों से खून जा रहा था इसलिए हमने तंबाकू खाना शुरू किया तो अब वो बंद हो गया। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: देखिए क्या होता है, तंबाकू जब आदमी खाता है तो एक तो इससे थोड़ी सी देर के लिए उसको एक फीलिंग ऑफ बेटर बीइंग की होती है नशे की आदत होने के कारण से। पर तम्बाकू जब आप हमेशा सेवन करते रहते हैं तो उससे एक तो गाल में नुकसान होता है, पैचेस बन जाते हैं, दूसरा इनकी वजह से दांतों के ऊपर एक लेयर जमा होना शुरू हो जाती है जिसके कारण से लॉन्ग टर्म में जाके पायरिया बनता है। शुरुआत की स्थिति में मरीज को जरूर ये लगता है कि हमें तम्बाकू से फायदा हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म में जाके जब वो कॉन्स्टेंट यूज करता रहता है तो उससे जाके उसको पायरिया की शिकायत होती है।
1: तो दांतों पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है और देखने में भी बहुत बदसूरत दिखते हैं वो दांत। डॉक्टर साहब, काले से हो जाते हैं और लाल से हो जाते हैं तो वो देखने में भी खराब लगते हैं, दांतों की सफाई भी उतनी प्रॉपर हो नहीं पाती है तंबाकू खाने वाले लोगों की।
0: नहीं, उससे आप ये देखिए ना कि आदमी का जो व्यक्तित्व के ऊपर असर पड़ता है। आज कई बच्चों में हमने देखा है कि वो पीले दांत हैं तो जब वो बातचीत करते हैं तो मुंह के सामने अपनी चार उंगलियां रख लेते हैं, सोसाइटी मतलब सोसाइटी में बात नहीं कर सकते हैं वो,
1: तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो शर्मिंदगी पैदा ना हो इस तरह की, इसके लिए बेहतर है कि यदि तंबाकू या गुटखा आपने शुरू भी किया है तो उसे बिल पावर के साथ आपको छोड़ना होगा, उसकी जगह सौंफ या लौंग का उपयोग किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब की बात हमारे श्रोताओं ने ध्यान से सुनी होगी और यदि वो सेवन कर रहे हैं इन चीज़ों का तो तुरंत ही छोड़ देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और नशा यदि करना है तो श्रोताओं, संगीत का नशा बुरा नहीं है। तो आइए, हमारा इशारा हमारे श्रोता भी समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब हम एक और गीत आपकी पसंद का उनको सुनवाने वाले हैं। कार्यक्रम में हम आगे बढ़े हैं डॉक्टर साहब, उससे पहले आपकी पसंद का एक और गीत हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए, शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोहनूर फिल्म का एक गाना मधुवन में राधिका नाचे रही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गीत और उस गीत को सुनने में एक आत्मीय आनंद मिलता है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं आइए हम ये आत्मीय आनंद उठाते हैं और सुनते हैं फिल्म कोहिनूर का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना, निश्चित रूप से आप गीत में खो गए होंगे। आ जाइए अब विषय पर। हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है कि क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं, और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ, और इसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। डॉक्टर साहब, पायरिया की बात हमने की, दरअसल ये पायरिया रोग होता क्या है? और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त रहते हैं, इससे दांत समूल नष्ट हो जाते हैं, यानी टूट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और कई बार शायद मुंह से दुर्गंध भी आती है। तो पायरिया रोग क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: देखिए, पायरिया में धीरे धीरे मसूड़ों में मवाद पड़ना शुरू होती है
0: जी।
1: जब वहाँ दांत और मसूड़े के बीच में
0: जी
1: तंबाकू सेवन से या दांत के ठीक से सफाई न करने के कारण से एक कैल्शियम की परत जमा होती है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में टार्टर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: उस टार्टर के कारण से मसूड़ों में धीरे धीरे एक उत्तेजना होती है,

0: ये बढ़ती जाती है
1: जी।
0: और एक अवस्था वो आती है कि जब सामने खड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि आपके मुंह से दुर्गंध आती है और तब व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि उससे पायरिया की बीमारी है
1: जी।
0: इसी स्थिति में दांत का हिलना शुरू हो जाता है। अगर प्राथमिक अवस्था में व्यक्ति ध्यान दे
1: जी।
0: और उसको किसी अच्छे डेंटल सर्जन को दिखाए तो दांतों की सफाई कर दी जाती है और सफाई करने से ये समस्या हल हो सकती है।
1: तो ये किसी भी उम्र में बच्चों को भी क्या जम सकता है टार्टर दांतों पर?
0: बच्चों में भी जमा होता है और ओल्ड एज में भी जमा हो सकता है, इसका एज से कोई संबंध नहीं।
1: अच्छा, जो दांतों के ऊपर मसूड़ों के पास एक पीली सी जो परत
0: होती है, पर जमा होती
1: है, उसे टार्टर कहते हैं। तो टार्टर यदि जमना शुरू हो श्रोताओं तभी आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाकर इसकी सफाई किस तरह से की जाती है?
0: ये आजकल अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आ गए हैं, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं और साथ में पानी का जेट निकलता है
1: जी।
0: बहुत पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है और सफाई अगर ठीक से कर दी जाए तो दांत की जो पायरिया की बीमारी है लगभग 90% केस में ठीक हो जाती है।
1: अच्छा, यानी कि शुरुआत में से रोका जा सकता है जी, लेकिन जी। यदि पायरिया साबित हो गया कि पायरिया है तो पूरी तरह जड़ से ठीक हो सकता है?
0: ऐसा हो तो सकता है पर उसके लिए फिर प्रोसीजर ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कुशल डेंटल सर्जन की आवश्यकता पड़ती है और कई बार यह है कि अगर बीमारी लाइलाज स्टेज में पहुंच गई है तो दांत निकालना भी बीमारी का एक इलाज है।
1: ओहो, तो इस स्थिति तक श्रोताओं पहुंचा ही क्यों जाए, उससे पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए और यदि दांतों पर टार्टर दिखाई देता है तो तुरंत दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उसका निवारण करवाना चाहिए। अच्छा, कैविटी की एक समस्या बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब देखने में आती है दांतों में, हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति बताता है कि दांतों में कैविटी है, तो ये क्या चीज़ है और क्यों पैदा होती है?
0: देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं
1: जी
0: उसके पाचन की क्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है।
1: बिल्कुल,
0: ये पाचन की सामान्य प्रक्रिया है। ये लैक्टिक एसिड दांत का जो सरफेस होता है, हम आप सब जानते हैं कि वो कुछ चिकनी नहीं होती, उसमें कहीं गड्ढे होते हैं और कहीं उसमें उभार होते हैं और ये इसलिए है कि जिससे खाना ठीक से कटे। उन गड्ढों में जब ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे इस लैक्टिक एसिड के कारण से दांत में छेद बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लगना।
1: अच्छा,
0: अब लोग ये पूछ सकते हैं कि साहब उसमें क्या कीड़ा होता है? कई जगह लोग रास्ता चलते दिखाते हैं कि उन्होंने कान में एक दवाई डाली और मुंह से कीड़ा निकाल दिया।
1: ओहो,
0: वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो कीड़े जैसी कोई बात नहीं होती है
1: जी।
0: और एसिड का मैं और आपको एक उदाहरण दूं कि आज हमारे घर में कई लोग बैटरी यूज करते हैं
1: जी।
0: उस बैटरी में दो प्लेट होती है, उसमें एसिड होता है तो वो प्लेट धीरे धीरे धीरे धीरे गल जाती है।
1: यानी एसिड तो गलाव पैदा करता है।
0: एसिड गलाव पैदा करता है, तो ये एसिड जो दांत में गलाव पैदा कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कीड़ा लगना।
1: वहाँ गड्ढा हो जाता तो गड्ढा हो जाता
0: जी। कीड़ा लगना इसलिए बोलते हैं कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि आम आदमी की भाषा में उसे समझाया जाए। जब हम बोलते हैं कीड़ा लगना तो वो आदमी समझ जाता है कि हमारे दांत में छेद है। आज हम उसको ये वैज्ञानिक पद्धति बताएं कि साहब इसमें एसिड से की वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कैल्सिफाइड सब्सटेंस हो रहा है तो समझ नहीं पाएगा
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव होता है?
0: इसमें स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो इनेबल कहलाता है
1: जी।
0: अगर कैविटी इनेबल में है तो उसको साफ करके डेंटिन तक साफ किया जाता है, उसके बाद में उसमें फिलिंग कर दी जाती है। अगर डेंटिन तक कैविटी पहुंच गई है तो कुछ ऐसा केमिकल्स होते हैं कि उनको लगाने के बाद फिलिंग करते हैं। इसके बाद भी अगर पेशेंट ध्यान नहीं देता है तो कैविटी दांत की जो पल्प होती है वहां तक पहुंच जाती है।
1: अच्छा,
0: और उस स्टेज में आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग करते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इसका उम्र से कोई वास्ता नहीं है, किसी भी उम्र में कैविटी हो सकती है?
0: कैविटी किसी भी उम्र में हो सकती है। लैक्टिक एसिड तो डाइजेशन की क्रिया में पैदा होगा पर अगर हम खाना खाने के बाद में कुल्ला बहुत अच्छी तरीके से करें
1: जी।
0: दूसरा, जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं खासतौर से जैसे टॉफी है, बिस्किट है, अगर इन पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो इनके बाद में हमें बच्चों को ये सलाह देना चाहिए कि वो ब्रश बहुत अच्छे तरीके से करें।
1: हाँ, ये कहा जाता है ना, मीठा ज्यादा खाओगे तो दांतों में कीड़ा लग जाएगा,
0: इसीलिए कि उससे कार्बोहाइड्रेट से एसिड ज्यादा बनता है
1: जी। तो ये कीड़ा क्या है आज हमारे श्रोताओं ने इसे जाना और किस तरह से इसे बचा जा सकता है ये भी जाना। तो दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों की जो है साफ सफाई का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित आपसे जानेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम श्रोताओं का आपकी पसंद का एक और गीत सुनवाएं।
0: एक गाना मुझे राजा हिंदुस्तानी का बहुत पसंद आता है
1: जी,
0: कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके
1: जी। बिल्कुल,
0: मतलब इस गाने को जब सुनते हैं तो उसकी हर लाइन में ये है कि कहीं ना कहीं वो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं
1: जी बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: तो श्रोताओं, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत आपने सुना और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में भी बाहर आ गई। आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सेहत की बात तरानों के साथ। आज का हमारा विषय है क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं, और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब ने बताया कि दांतों की कैविटी क्या होती है, पायरिया रोग क्या होता है, दांतों की सफाई कैसे रखी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के जो दांत होते हैं वो 6 या 7 साल के बाद टूटते हैं, इसे कहते हैं दूध के दांत होते हैं। अच्छा, वो दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कई बार बच्चों के दांत जब टूटते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो एक पंक्ति में नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं, और कई बार वो साइज में भी बहुत बड़े होते हैं, दांत पर दांत भी आ जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है?
1: जो बच्चों में दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट टीथ के लिए एक स्पेस मेंटेनर की तरह काम करते हैं
0: जी।
1: उनके लिए वो जगह रिजर्व करके रखते हैं।
0: अच्छा,
1: अब दूध के दांत जब बच्चों में होते हैं, बच्चे के जबड़े का साइज छोटा होता है
0: जी।
1: और उन दांतों का बहुत ज्यादा उपयोग इस हिसाब से नहीं होता है कि खाना चबाने में उनको बहुत हार्ड पदार्थ का उपयोग बच्चे नहीं करते
0: जी,
1: हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दूध के दांत सामान्य रूप से 6 वर्ष की उम्र में गिरना शुरू होते हैं और ये 12 साल की उम्र तक गिरते रहते हैं। 6 वर्ष की उम्र में सामने के दांत गिरते हैं। अब 6 वर्ष की उम्र में जो दूध का दांत गिरना है उसकी जगह जो परमानेंट टीथ आएगा वो उसकी जिंदगी भर रहना है।
0: बिल्कुल।
1: और उस दांत का उपयोग उसकी जिंदगी में हर तरह की चीजों के लिए उसका उपयोग होना है
0: जी।
1: अब जबड़े का साइज भी उसका उम्र के साथ में बढ़ेगा। तो आप कल्पना करिए कि अगर दूध के दांत के बराबर ही परमानेंट टीथ आएगा तो 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में वो कैसा दिखेगा। तो ये प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि जो परमानेंट टीथ है वो बड़ा आता है। अब उसका साइज जब हम देखते हैं 6 साल की उम्र में जब हम तुलना करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो दांत बहुत ज्यादा बड़ा है, जबकि वो हर व्यक्ति की हाइट के अकॉर्डिंगली, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली प्रकृति वो दांत बनाती है।
0: अच्छा, अच्छा, इसमें कहीं आनुवंशिकता काम करती है क्या, दांतों की आकृति, दांतों के रंग या दांतों के आकार में?
1: इसमें देखिए 2-3 चीजें होती हैं कि आपका जो स्किन का कलर है, आपके जो बालों का कलर है
0: जी,
1: आपका चेहरे का जिस तरह के गोल का चेहरा है या लंबा चेहरा है
0: जी,
1: उसके अनुसार सामने के दांत होते हैं
0: जी।
1: निर्भर इस पर करता है कि आपका हेयर कॉम्प्लेक्शन, स्किन कलर क्या है, उसके अनुसार दांतों का कलर प्रकृति के रूप से होता है।
0: और माता पिता का भी कुछ इसमें रोल रहता है?
1: माता पिता का रोल रहता है कि जो साइज आपका होता है, या कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनके कारण से अगर माता पिता में बीमारी है तो उसका रिफ्लेक्शन दांतों में आता है।
0: अच्छा, तो इसमें भी आनुवंशिकता कुछ हद तक जिम्मेदार होती है। अच्छा, एक अकल दाढ़ जिसे कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जो कहते हैं कि 17-18 साल की उम्र में निकलना शुरू होती है और उसके बाद अकल आती है। अकल आती है, ये तो नहीं पता
1: जी। प्रजातंत्र में भी आदमी को वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद है
0: जी।
1: और अपना जो दर्शन है वो भी ये कहता है कि इस उम्र में लोगों में ज्ञान आ जाता है। दांत के डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो दांत आता है ये 18 साल की एज के बाद आना शुरू होता है, इसलिए लोगों ने उसको अक्ल के साथ जोड़ दिया है।
0: लेकिन कई बार इसमें बहुत परेशानियां पैदा होती है, मतलब बार बार मसूड़ा सूझता है लेकिन दांत निकलता नहीं है, या कई बार पूरा भी ये नहीं निकलती, अकल दाढ़ 4 जो होती है नहीं निकलती है, या कई बार तिरछी निकलती है।
1: इसमें देखिए जो डार्विन का हमारा सिद्धांत है
0: जी,
1: कि धीरे धीरे धीरे धीरे तो मानव विकास हुआ, हमारे जो पूर्वज थे उनकी हाइट बहुत अच्छी थी,
0: सही बात,
1: पर समय के अनुसार हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारे रहन सहन का वो हुआ, उसके हिसाब से धीरे धीरे हमारी हाइट कम हुई है, खाने पीने के में भी परिवर्तन आया है। इस कारण से हमारे जो जबड़े का साइज है वो धीरे धीरे कम हुआ है, पर आज भी मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। तो जबड़े का साइज छोटा होने की वजह से कई लोगों में ये दांत या तो तिरछा आता है या फंसा हुआ आता है, और जब वो अपने प्रॉपर पोजीशन में नहीं आता ना तो बार बार वो दिक्कत करता है।
0: तो उसके लिए भी दंत रोग विशेषज्ञ के पास तुरंत जाना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, अभी एक गीत आपकी पसंद का और हो जाए।
1: मैं चाहूंगा
0: जी
1: कि तीसरी कसम का एक गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। जो गाने फिल्मों में ऐसे लिखे गए हैं कि जो हमारे जीवन दर्शन को दिखाते हैं, वो गाने हमेशा मुझे पसंद रहे हैं।
0: बहुत अच्छा गीत है, और इस गीत को आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, फिल्म तीसरी कसम का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, और अब हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर। और आज का हमारा विषय है क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हर डॉक्टर जो भी हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान बनकर आता है, एक बात ज़रूर कहते हैं कि खान पान बेहतर होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, तभी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है। तो दांत स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जितनी हमारी उम्र है हमारा साथ दें, उसके लिए हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
1: एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है
0: जी
1: कि हमें ये आदत डालना चाहिए कि सुबह उठने के साथ और रात में सोने के पहले ब्रश हमें जरूर करना चाहिए,
0: यानी कि बेड टी लेने की आदत छोड़ दें।
1: हाँ, ये बेड टी लेने की आदत छोड़ दें और रात में सोने के पहले ब्रश करें। दूसरा, खान पान में हम ये देखें कि जो चिपचिपे पदार्थ हैं, इन पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करें। आज ये मैं कहूँगा इन पदार्थों का उपयोग ना करें तो ये तो संभव नहीं
0: है,
1: उनका सीमित मात्रा में उपयोग करें। तम्बाकू पाउच या इस तरह की चीजों का सेवन हम ना करें
0: जी।
1: अगर ये दो तीन चीजों का हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, और अगर कोई जरा भी समस्या होती है तो उससे हमें उचित डॉक्टर के पास में जाके उसका इलाज कराना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अपने खान पान में क्या शामिल करना चाहिए, खास तौर पर संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या खास पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, चमकदार रहे?
1: उसमें रेशे वाली चीजों का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: फलों में जैसे हमें संतरा, सेब, हमें गन्ना

0: भी कभी कभी चूसना चाहिए, जो आजकल लोग धीरे धीरे जिससे अलग होते चले जा रहे हैं। खाने पीने में हमें जैसे मक्का है, मक्का हमें जरूर खाना
1: मोटा
0: चाहिए, मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। इनको क्या होता है, चबाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है, दांतों के ऊपर प्रेशर आता है और उसकी वजह से जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, हम पाउडर लेते हैं तो महीन होना चाहिए। पेस्ट हम कोई भी लें, किसी भी कंपनी का लें, बस टेक्निक सही उपयोग करें
1: जी, यानी कि ब्रश प्रॉपर स्टाइल में करें ताकि दांतों का क्षरण ना हो बल्कि दांतों की सफाई हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किन किन बातों का हम ध्यान रख के अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं, इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज का विषय था क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं, और जानकारी देने के लिए आज हमारे मेहमान थे वरिष्ठ दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। अब दीजिए मुझे आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम में डॉक्टर हरि मोहन पुरोहित से आभा गुप्ता की बातचीत, जिसका विषय था क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार द्वारा संगीतबद्ध किए हुए कुछ गीत। सबसे पहले फिल्म नागिन का ये गीत।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: और आइए अब हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है खामोशी।

0: योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षकों को नई पाठ्य पुस्तकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 28 सितम्बर से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज जबलपुर और रीवा समेत 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में ऑरेंज अलर्ट है। अन्य कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कमी ये नहीं होती कि कोई चीज हमें प्राप्त नहीं है, बल्कि कमी होती है इस बात की कि जो कुछ हमें प्राप्त है हम उसे देखते ही नहीं, और जो नहीं है उसकी चिंता में घुलते रहते हैं या बेचैन से रहते हैं। यानी कमी किसी चीज के अभाव से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन चीजों को न देख पाने से उत्पन्न होती है जो हमें उपलब्ध हैं। हमारी हथेली पर रखी हुई छोटी छोटी खुशियाँ, आंगन में बिखरी अपनों की हंसी, घर लौटने पर मिलने वाला एक अपनापन, सुबह की रोशनी, सांसों की सहज लय और मन को थाम लेने वाला कोई अपना, अक्सर हम इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं या इतना साधारण मान लेते हैं कि इसकी कोई खुशी हमारे भीतर नहीं होती, और हमारी नजर बस उस पर टिकी रहती है जो हमारे पास नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में समाधान की तरह एक सूत्र वाक्य उभरता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये केवल एक उक्ति नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जहां से धीरज धरने का एक रास्ता, संतोष का एक मार्ग उभरता है। श्रोताओं, संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हमारी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, हम अकर्मण्य से बैठ जाएं, बल्कि समाधान ये है कि हम पूरी शिद्दत से काम करें, अपने प्रयास करें, लेकिन उसके परिणाम या प्रतिफल को लेकर चिंतित न रहें। हम काम करें और परिणाम को बस छोड़ दें, और फिर जो कुछ मिले उसे पूरे मन से स्वीकार करें। कुल मिलाकर ये समझना आवश्यक है कि हर बड़ी उपलब्धि ही महत्वपूर्ण है, ये सोच गलत है। जो मिला है उसे पूरे मन से जी लेना ही जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि है। इसी विचार के आसपास हमारी आज की बातचीत होगी कि जो प्राप्त है पर्याप्त है। बताइए हमें कि आपके जीवन में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आपको बहुत संतोष है, जिनके लिए आपके मन में बहुत आभार है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आपको अपना जीवन भरा भरा सा लगता है। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: लल्ला कुशवा नाम है मैम, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: लल्ला जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छे
1: संगीत सिखाते हैं, संगीत बजाते भी हैं।
0: क्या बात है। तो आज के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस बात का संतोष आपको बहुत ज्यादा है अपने जीवन में?
1: अपने जो है कर्म करना चाहिए मैम, उसी में मस्त रहना चाहिए, किसी की चिंता नहीं करना चाहिए, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं।
0: जी, अपने प्रयास करने चाहिए, जो ईश्वर ने दिया है उसका आभार मानते हुए खुश रहना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं ना कितनी तेज रफ्तार जिंदगी हो गई, हर इंसान दौड़ रहा है, हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए, एक तलाश में वो भटक रहा है। तो आपका जो जीवन है, आपको किस बात का बहुत आभार है, किस बात के लिए आप बहुत खुश होते हैं, किस बात का बहुत संतोष है कि ये एक चीज ईश्वर ने मुझे दी है जिससे मेरा जीवन
1: में बेस्ट रहते हैं, मैं उसी में खुशी मिलती है हमको।
0: काम क्या है आपका?
1: संगीत सिखाना, संगीत बजाना।
0: जी जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने आपको संगीत दिया है, इस बात का आपके भीतर बहुत संतोष रहता है।
1: रहते हैं मैम।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। हर इंसान

0: ईश्वर कुछ न कुछ देता है और उसका हम आभार कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं लल्ला जी कि चूंकि आपने संगीत की बात की है और आप संगीत शिक्षक हैं आप कह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ गुनगुनाएं, कुछ सुनाएं हमें।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, कोई भी गीत जो आपको याद हो।
1: आई बहार दिल है बेकरारों मेरे राजकुमार तेरे बिन।

0: राजकुमार।
1: क्या बात है, बहुत ही सुरीला, बहुत ही सुंदर आपने गीत गाया, आजा आई बाहर, राजकुमार फिल्म का गीत। लल्ला जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
0: जी मैम अच्छा ही लगना चाहिए, इसमें ही संतोष है।
1: जी जी बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार जी,
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कौन है हमारे अगले श्रोता?
1: जी जी, मैं सबसे पहले श्रोता होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका नियमित श्रोता जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोतेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूँ। मैम जी,
0: कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: कुशल है मैम जी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मैम जी।
0: और रेडियो का साथ
1: सुन रहे हैं?
0: हाँ, रेडियो का साथ बना हुआ है हमेशा की तरह। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: देखिए मैम जी, विषय बहुत ही अनुकूल है और मैं आपसे एक बात और रखूंगा कि जो किसी ने कहा ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन मनुष्य की एक वो नियति होती है कि उसके पास साइकिल के अलावा मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल के अलावा फोर व्हीलर हो, यदि छोटा मोबाइल है तो बड़ा मोबाइल हो, एंड्रॉइड मोबाइल हो और बड़ा और महंगा मोबाइल हो,
0: जी जी,
1: या जो सुख सुविधाएं हैं घर में वो भी छोटी हो, तो वो चाहता है कि बड़ी से बड़ी सुख सुविधा हो।
0: जी,
1: ये नीति पता नहीं ये मन में ऊंच नीच क्यों चलती रहती है। मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं वर्तमान में मेरे पास साइकिल है, लगभग 25 साल पुरानी साइकिल आज भी चला रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: स्थितियाँ कुछ ऐसी है कि टू व्हीलर नहीं खरीद पा रहा हूँ। यह बात जरूर रहती है कि काश मैं भी कोई बड़ी गाड़ी ले पाता।
0: ये अच्छी बात है कि एक प्रयास जरूर होना चाहिए कि हम भी विकास करें, लेकिन जब ये भाव हमारे लिए तनाव पैदा करने वाला हो जाता है, जब ये भाव हमें तनाव देने लगता है, तो फिर जिंदगी खूबसूरत नहीं रह पाती है। तो आपके साथ बहुत अच्छी बात है कि जो आपको प्राप्त है उसका आपको संतोष है और आप आगे के लिए प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके पास एक 25 साल पुरानी साइकिल है, लेकिन आप खुशी के साथ उसको चलाते हैं और कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं कि एक गाड़ी खरीद सकें। लेकिन ऐसा कोई मन में बहुत तनाव हो या जिंदगी आपको खराब लग रही हो, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, हर इंसान को ईश्वर कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसका उसके भीतर आभार होता है, उसको संतोष होता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको आभार से भरती है, संतोष से भरती है?
1: मैम जी, आभार की बात हुई है तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरा परिवार है, मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ संतुष्ट हूँ।
0: जी जी जी,
1: मेरे दोस्त यार भी मुझे सहयोग बनता है उनसे, आर्थिक के अलावा शारीरिक सहयोग की बात करते हैं या मन या जो सेवा भाव की स्थिति बनती है, मुझे कहीं ना कहीं उनसे सहयोग हमेशा मिलता रहता है और मैं भी उनका सहयोग शारीरिक रूप से सेवा के भाव में हमेशा करता रहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक बहुत अच्छा भरा पूरा सा परिवार है, इस बात का आपको संतोष है। परिवार में अच्छी भावनाएं हैं, प्रेम है, और आपके मित्र जो हैं वो आपके बहुत साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मुश्किल जब आती है तो उस मुश्किल के समय आपके साथ खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा संबल है। तो कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी से।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है ये। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम, मैं रानी दली छतरपुर से रशीद अहमद खान अपने नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ।
0: रशीद अहमद खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
0: कैसे हैं?
1: एकदम अच्छे हैं सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया चल रहा है एकदम।
0: जी जी जी जी। आज हम जानना चाह रहे हैं आपकी जो जिंदगी है उसका मिजाज कैसा है, हम ये जानना चाह रहे हैं इस लिहाज से कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ अभाव होते हैं, लेकिन हमारा जो सोच होता है वो इस तरह का होता है कि हमेशा हमारी नज़र अभावों की तरफ जाती है, जो नहीं है उसको हम बहुत सोचते हैं, और इस सोच के कारण जो कुछ हमें उपलब्ध है उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसको हम वजन ही नहीं दे पाते, नज़रअंदाज हो जाती है वो बात, है ना। जबकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये कहा गया है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो हम
1: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखो ये बात भी बिल्कुल सच है कि सपने अपने को बहुत बड़े ऊंचे देखना चाहिए ताकि अपन आगे प्रोग्रेस कर सके, लेकिन उन बड़े सपनों के चक्कर में छोटे सपने अपन या छोटी खुशियां जो भी हैं अपने पास, जो भी अपने साथ के लोग हैं या जो भी अपने आसपास हैं, जो भी अपने को उपलब्ध है उसको अपन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बड़े सपनों का कोई मतलब रहता नहीं।
0: बिल्कुल,
1: अपने को ये कोशिश करना चाहिए कि आसपास जो भी है, जो भी अपने साधन है या जो भी अपने पास संसाधन उपलब्ध है या जो भी अपने मित्र मंडली है, जो भी अपने संबंधी नाते रिश्तेदार, कहीं ना कहीं उनके साथ अपन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, मिलते जुलते रहें। अगर अपन बहुत उनको हेल्प नहीं कर पा रहे तो अपन मिलते जुलते रहें, दुख दर्द में उनका हालचाल पूछते रहें।
0: बिल्कुल,
1: ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे मतलब बहुत एक दूसरे को संबंध मिलेगा।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको हम जरूर उत्सव की तरह मनाएं। अच्छा,
1: बिल्कुल, डेफिनेटली।
0: रशीद अहमद खान जी, एक सवाल मेरे मन में है, आपको क्या लगता है कि दूसरों से जब हम तुलना करते हैं तभी ऐसी स्थिति बनती है ना?
1: डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब तुलना तो करना बिल्कुल ठीक, मतलब नहीं ठीक नहीं है। एक बात और हम इधर बता दें, अधिक अपेक्षा भी कभी कभी असंतोष का कारण बन जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही
1: जी, है ना। तो ये तुलना अपन को नहीं करना है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने हिसाब से व्यवस्था अपनी बनाए हुए हैं, और ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो, या जैसे ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई ना कोई टैलेंट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अपन कोशिश ये करें कि उसके पॉजिटिव पॉइंट को अपन आगे प्रमोट करें, ना कि उसके निगेटिव पॉइंट को, गिलास आधा खाली है आधा भरा है, तो भरे हुए को देखें अपन।
0: बहुत सुंदर बात आपने कही।
1: तो उससे अपने को थोड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी और अपन को अच्छा भी लगेगा। अपन अगर अपने थोड़ा सा एक और पॉजिटिव में बताऊं, अगर अपन थोड़ा सा अपने नीचे देखें, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया, अगर अपन थोड़ा नीचे देखेंगे तो अपन को लगेगा अपन बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि अपने से बहुत लोग और भी अधिक कष्ट में या अधिक समस्याओं में लोग ग्रसित हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्थिति में अपन को ये लगेगा कि अपन बहुत ही बेटर हैं, वो ये लगेगा कि नहीं अपन ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर ने जो भी दिया, जो जैसा भी है वो सब बहुत पर्याप्त है और अच्छा है, मतलब अपन बहुत बेटर पोजिशन में।
0: बहुत सुंदर।
1: इतनी समस्याएं हैं जीवन में, आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, है ना। तो ये चीज होती है, तो अपन को पॉजिटिव देखना है, जैसा भी हो पॉजिटिव अपन को देखना है, उससे अपने आप अच्छा लगेगा।
0: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसी कोई दो तीन चीजें आपकी जिंदगी में कौन सी हैं जो आपको बहुत संतोष देती हैं, आपको आभार से भरती हैं?
1: मैम हम बताएं, देखते हैं पूरा हमारा मतलब घर परिवार जो सारे लोग हैं वो सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो वही है, वो हमारी शक्ति है। दूसरी बात ये है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो गई, अच्छे से नौकरी हो गई, अब रिटायर्ड भी हो गए, वो एक जीवन बहुत ही बैलेंस तरीके से, अपना मीडियम मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्य हम लोग, आराम से जीवन चल रहा है। और सबसे बड़ा सुख ये है कि रेडियो और आप सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, आनंद हो जाता है, आराम से चल रहा है। कभी ऐसा लगता नहीं कि किसी चीज का अभाव है, बाकी आराम से चल रहा है, जो संतोष है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं।
0: बिल्कुल। तो रशीद अहमद खान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम तक पहुंची है, और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक भी पहुंची होगी, और वो सब भी इसी तरह से अपनी जिंदगी को देखेंगे और सोचेंगे। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: मैम हमको भी बहुत अच्छा लगा, काफी समय बाद बात हुई, हमें भी अच्छा लगा, बहुत थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: रमेश प्रजापति जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: कैसे हैं?
1: पहली बार जोड़ा हूँ आपसे।
0: अच्छा, पहली बार फोन लगा है
1: जी?
0: ओह, फिर तो आपका विशेष रूप से हम स्वागत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: आज के विषय पे मैं बताना चाहता हूँ कि आज की ख्वाहिश, नए लोगों की ख्वाहिश इतनी बढ़ गई है कि घर में क्या, भली अपने पास मतलब जेब में पैसे नहीं है, लेकिन नहीं, आज मतलब बर्थडे मनाना है लड़के का, बड़ बड़ के, मतलब जैसे केक छोटा नहीं, बड़ा ही लाना है। अपने 10 मित्रों को बुलाना है तो नहीं नहीं नहीं 20 को बुलाएंगे अपन। क्या आज पहली बार तो मना रहे हैं अपन लोग, अब थोड़ा पैसा उधार कर लो, क्या दिक्कत है, किन फिर दे देंगे। तो ये ख्वाहिशें बढ़ रही है आजकल, जबकि जितनी अपनी चादर है उतना ही अपने पैर पसारना चाहिए। चादर से बाहर निकलेगा तो पेड़ फिर उगाले रहेंगे।
0: बिल्कुल, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही। मेरा जो कहना है वो ये है कि कई बार जो छोटी छोटी खुशियां हैं हमारी जिंदगी की, वो इसलिए नजरअंदाज हो जाती हैं कि जो अभाव है उसकी तरफ हमारी दृष्टि होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको बहुत संतोष है, आपको बहुत खुशी होती है कि आपका जीवन भरा भरा सा है?
1: जी मेरी जिंदगी में देखिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हुई है, मैं तो कैसा जीवित हूँ।

0: समय मैं तो मतलब बहुत पहले ही चला जाता, लेकिन आज जीवित हूँ मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ
1: जी। तो ये एक आभार की बात हो सकती है ना कि ईश्वर ने आपको सुरक्षित रखा।
0: जी जी, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरे बहुत बीमारियों से लड़ने के बाद फिर आज में मैं काम कर रहा हूँ और मस्त काम कर रहा हूँ और बढ़िया खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब मैं अपनी दो रोटी का धंधा करता हूँ, मतलब अपने कोई दिक्कत नहीं, किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, अपना परिवार चला लेता हूँ।
1: बढ़िया,
0: तो मैं धन्यवाद करूंगा उस ईश्वर का। तो बस सभी को ऐसे ही सबको मतलब दिया करे, ताकि मतलब बेचारा अपने हर लोग अपनी परिवार में अच्छे से रहे और गुजारा हो जाए, बस यही कहूंगा मैं।
1: देखिए, आपके माध्यम से एक बड़ा संदेश हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है कि बहुत सी बीमारियों से आप जूझे, आपका जीवन संकट में आया, लेकिन उससे आप उबरे, इस बात का आपको आभार है। और उसके बाद आप स्वयं कमा रहे हैं, अपने परिवार को देखते हैं, और आपके संतोष का विषय यह है कि आपको उधारी नहीं लेनी पड़ती है, आप अपने परिवार को चला ले जाते हैं।
0: जी।
1: तो इस तरह से जो छोटी छोटी हमारी खुशियां होती हैं, जो भी उपलब्धि हमारे जीवन की है, अगर उसको हम सकारात्मक रूप से देखते हैं तो जीवन में एक संतोष आता है, और हम कहते हैं कि हाँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कोशिश जरूर हम करते हैं आगे की, लेकिन एक संतोष के साथ करते हैं।
0: जी, संतोष है तो संतोष सबसे बड़ा धन्य है।
1: बिल्कुल। तो रमेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, धन्यवाद मैम आपको मेरा फोन रिसीव करने के लिए।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार सुनीता जी। हेलो।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से।
0: विवेक जी कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। जिंदगी कैसी है?
1: जिंदगी तो देखिए ऐसा है कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है जैसे कि मुझे आपका विषय पता चला है कि आज आपने विषय रखा है कि इंसान बहुत महत्वाकांक्षी होता है और इस चक्कर में वो अपनी छोटी छोटी खुशियों पर भी ध्यान नहीं दे पाता है और मतलब टेंशन में रहता है। तो मेरा तो ये मानना है सुनीता जी कि देखिए ऐसा है कि हर आदमी को मतलब वो तो होना चाहिए महत्व, लेकिन इस चक्कर में ये अपने पास

0: उनको भी खुश रखे
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए ऐसा है कि आप यदि हंसेंगे तो आपके साथ सारी दुनिया हंसेगी, लेकिन यदि आप रोएंगे तो फिर लोग आपसे दामन बचाने लगेगी कि यार ये तो ऐसा जब भी मिलो ये अजीब से इसका बिहेवियर रहता है। तो मेरा भी यही मानना है कि आप खुश रहे और जो आपको भगवान ने दिया है उसमें आप इंजॉय करें।
1: अच्छा ये बताएं कि आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो किन बातों से आती हैं, किन किन बातों को आप सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी खुशियां?
0: देखिए जैसे मेरी आपसे अभी बात हो रही है मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ।
1: बिल्कुल जी जी जी जी
0: छोटी छोटी बातें हैं।
1: हाँ और घर घर परिवार में ऐसी कुछ बातें जो आपको लगता है कि इस बात से आपको बहुत अच्छा लगता है, आभार होता है ईश्वर के प्रति कि ऐसा मेरी जिंदगी में है, ऐसी कुछ बातें आप बताएं।
0: देखिए ऐसा है कि ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, मुझे गाने का शौक है और थोड़ी बहुत मेरी आवाज भी अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वैसी आवाज तो मेरी नहीं है, फिर भी इस लायक को भगवान ने दी है कि मैं थोड़ा बहुत गा सकूं।
1: क्या बात है,
0: इजाजत है तो मैं थोड़ा सा गुनगुना कर भी
1: जरूर जरूर जरूर जरूर मैं कह नहीं जा रही थी।
0: गजल है छोटी सी
1: जी।
0: मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको।

0: तो ऐसा है सुनीता जी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गजल आपने सुनाई। और आप हमारे आज के दूसरे सुरीले श्रोता हैं जिन्होंने स्वरों के लिए आभार किया। बहुत अच्छा लगा हमें
0: साथ है और आपके साथ के वजह से ही हम सुरीले हो गए हैं।
1: विवेक जी बहुत अच्छा लगा,
0: आपका बहुत बड़ा योगदान है
1: जी। देखिए वो संगीत जो सबका मनोरंजन करता है, हर इंसान संगीत के आसपास रहना चाहता है, उस संगीत का वरदान आपको ईश्वर ने दिया है, कितनी बड़ी बात है ये। तो इस बात की तो खुशी होनी चाहिए और इस बात का आभार बहुत होना चाहिए जैसा कि आपने कहा। तो ऐसे ही सुरीले बने रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना हमारी है। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। कौन बोल रहे हैं
1: जी? शशिधर पाल बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
0: शशिधर पाल जी, कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: सर हम तो बहुत दिन के बाद आज फोन किए हैं। जो है आज वो बादल बहुत छाए हुए, बारिश हो रही थी, बैठे हुए थे, तो हमने कहा आप आकाशवाणी में देखते हैं क्या चल रहा है। तो लगा दिए जो है आज बहुत कम तो कम
0: लग भी गया फोन,
1: 9 महीने के बाद ही लगा रहा हूँ, 8-9 महीने के बाद।
0: जी जी, तो आपका फोन लग गया, बड़ी खुशी की बात है।
1: और हम जो है आपका स्टार्टिंग प्रोग्राम जो है वो 93 से शुरू हुआ था, तब ये आपका तो सजीव था।
0: हाँ, अब तो रिकॉर्डेड होता है।
1: वो मन्नान सर थे जो है 2 घंटे का लगातार करते थे प्रोग्राम।
0: तो अब तो रिकॉर्डेड ये प्रोग्राम होता है, लेकिन आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, तो आपका हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं शशिधर जी। और हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जिंदगी में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सूत्र किस तरह से काम करता है, और जिंदगी में असंतोष क्यों होता है?
1: देखिए मैम, ऐसा है जो है कि जिंदगी में जो है कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जितना उनको मिलता जाए वो कभी संतोष उनको होता नहीं है। उनकी लालच इतना बढ़ती जाती है कि ये मनुष्य जीवन में लालच कम होता नहीं है, लेकिन अगर आदमी सोचे कि हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएं, तो उस दिन आदमी जो है सुखी हो जाएगा, एक दूसरे के जो है प्रति इच्छा भाव नहीं रखेगा।
0: बिल्कुल। अच्छा,
1: कुछ तो लोग ऐसे हैं मैम कि एक दूसरे का देखते हैं, उनको तो हो गया है, मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है ये। अब उसको वो नहीं देख रहा है कि वो कितना रात दिन लगन से मेहनत करता है, वो चुपचाप बैठ करके सोए हुए हैं फिर भी ख्वाब देख रहे हैं उसका।
0: तो आपका कहना ये है कि बहुत से लोग हैं जो दूसरों को देख करके परेशान रहते हैं, है ना? और जो उनके पास चीजें हैं उसको वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसका संतोष नहीं कर पाते हैं, और उनका जीवन खराब होता है।
1: जी मैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जो सोशल मीडिया है उसमें जिस तरह से इंसान अपना खुद का प्रचार प्रसार करता है, खुद को जिस तरह से प्रस्तुत करता है कि वो निहायत ही खुशनुमा और संपन्न और इस तरह का एक व्यक्ति है, सच्चाई भले इससे इतर हो, इसका भी कुछ प्रभाव होता है लोगों पर?
1: उससे प्रभाव देखिए मैम, केवल देखने तक उनको प्रभाव रहता है, इसके बाद जहाँ देख करके वो हटाएंगे ना, उसके बाद वो फिर उसका उनका विचार वही हो जाता है।
0: लेकिन जो दूसरे देखने वाले हैं वो कभी कभी इस बात से परेशान होते हैं, तो
1: सौ में 2-4 लोग जो है समझ जाते हैं, बाकी और लोग तो मेरा जहाँ तक दृष्टिकोण है बस देखते ही रहते हैं, तो भी उनको याद रहता है, इसके बाद फिर भूल जाते हैं।
0: जी, तो आपका संदेश ये है कि दूसरों को देखकर हम परेशान ना हों, बल्कि अपने प्रयास करें और जो कुछ हमें प्राप्त है उसका संतोष करें।
1: मेहनत कर रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए।
0: अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसको आप बहुत सेलिब्रेट करते हैं?
1: हम तो मैम जी यही संतोष करते हैं जो कि खाने कमाने भर का मिल जाए बस पेट भरने के लिए, बाकी और दूसरा कोई चीज नहीं।
0: ये तो हुआ जीवन में ऐसी कोई बात जिसका आपको संतोष है, कोई ऐसी उपलब्धि घर परिवार की, आपको ईश्वर ने कुछ दिया हो, आपके बच्चे कुछ हो, कुछ भी, तो एक खुशी होती है ना, किसी का बच्चा हुनरमंद होता है इस बात का संतोष होता है, आपके पास कोई हुनर हो इस बात का संतोष होता है, इस तरह छोटी छोटी जो उपलब्धियां होती हैं हमारी ईश्वर देता है, या हमारे घर परिवार में प्रेम है, हम लड़ाई नहीं करते, इस बात का संतोष, खुशनुमा माहौल रहता है।
1: हम इलेक्ट्रीशियन काम शुरू से ही करना चाहते थे।

0: और हम अपना यही काम शुरू से ही कर रहे हैं, इसी में हम संतोष हैं।
1: तो जो काम आप करना चाहते थे वही काम आप कर रहे हैं, इस बात का आपको संतोष है। हाँ, ये बहुत सुंदर आपने बात कही है।
0: मैं बचपन से यही काम सीखना चाहा था, इलेक्ट्रीशियन बनूंगा, मिस्त्री बनूंगा, और मैं ये हासिल किया।
1: बहुत अच्छी बात है कि जो आपने सोचा वो आपको प्राप्त हुआ है और इसका आपको बहुत संतोष है।
0: जो इंसान अगर सोच लेता है कि हमें ये आगे चल के करना है, वो अगर उसी पे अडिग रहेगा तो वो एक न एक दिन उसमें कामयाब जरूर हो जाएगा, लेकिन उसकी मंशा उसी पे होनी चाहिए।
1: जी जी, तो शशिधर पाल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ, खातेगांव से बोल रहा था, गोविंद जलोदिया। नमस्ते।
0: नमस्ते गोविंद जी, कैसे हैं?
1: बस ठीक है।
0: बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम में आपने फोन किया है, बात आपकी होनी चाहिए। क्या कहेंगे हमारे दिए विषय पर आप?
1: संतोषी परम धर्म है मेरा।
0: संतोषी परम धर्म
1: तो पूरा मतलब यदि संतोष है उसके शरीर उसमें तो सभी सब कुछ मिल गया समझ लो। संतोषी परम धर्म
0: तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा आप मानते हैं? तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई कमी है और आपको उससे तनाव होता है?
1: नहीं, अपन संतोष कर लो तो कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की।
0: लेकिन यहाँ एक छोटी सी संतोष और अकर्मण्यता के बीच एक छोटी सी बारीक सी लकीर भी है कि अगर आपने हर बात में संतोष कर लिया तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना? तो हमारा अप्रोच क्या हो, हम किस तरह से जीवन में आगे बढ़ें? संतोष रखें लेकिन कोशिश करें, परिणाम की बहुत चिंता ना करें। यानी जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था निष्काम कर्म की बात, उस तरह से जब हम काम करते हैं संतुष्टि के साथ तो जिंदगी हमारी बहुत खुशनुमा हो जाती है।
1: बहुत अच्छे
0: है ना? तो
1: ठीक है,
0: ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ मिला और मिलने के बाद भी कुछ खालीपन ही लग रहा है? कई बार होता है ना, किसी चीज के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे लिए वो बहुत
1: कोशिश में समझ रहे हो, जो मतलब जो ये नहीं है कि जरूरी कि वो है, अपन तो ये संतोष रखो कि मिल गया।
0: हाँ,
1: तो जीत है आप।
0: कई बार क्या होता है कि इतने ज्यादा हम किसी चीज के लिए ललायत हो जाते हैं कि जब वो प्राप्त होती है तो लगता है अच्छा ये यही चीज थी क्या, फिर वो उसका सेलिब्रेशन नहीं हो पाता है ना? और जो भी चीज आपको प्राप्त होती है कुछ समय के बाद वो आपके लिए मूल्यहीन हो जाती है, फिर आपकी नजर एक दूसरे लक्ष्य पर होती है। जिंदगी इसी तरह से आगे चलती है। लेकिन इसी मिजाज के साथ चलते हुए जिंदगी में

0: खुशनुमा पल आने चाहिए और हर जिंदगी में कुछ न कुछ होता है जिसके लिए वो खुशी मना सकता है। तो आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जो आपको संतोष से भरती हैं, आपको आभार से भरती हैं?
1: मेरे जिंदगी में तो पूरी संतोष ही रहा अभी तक, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं रही।
0: क्या क्या बातें खुश करती हैं?
1: मेरी जीत है।
0: बिल्कुल, आपने जैसी जिंदगी चाही वैसी जिंदगी है।
1: बस अपन तो मैडम वही है क्या, संतोष को ही लेके चलते हैं हमेशा हर बात पे। संतोष और मान भी लेते हैं और कर भी लेते हैं
0: जी,
1: संतोष।
0: जी जी,
1: तो उससे मतलब आपको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं कुछ भी नहीं करता मैडम, अभी तो फिलहाल में मतलब 73 साल की उम्र हो गई मेरी। मैं पहले करता था।
0: हाँ, क्या करते थे?
1: पहले तो मैं टाकीज वगैरह में काम करता था, खातेगांव में।
0: जी जी जी, तो आपके घर परिवार में लोग हैं, आपस में सब में प्रेम है?
1: सब है ना, पत्नी पति सब है, मतलब पूरा हरा भरा परिवार।
0: तो देखिए, एक हरा भरा परिवार है और आपने एक अच्छा सा जीवन जिया है और सबके साथ मिलकर आप रहते हैं, है ना, साथ खाना खाते हैं, ये चीजें बड़ी हैं। और अक्सर ये जो बड़ी खुशी है इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कि हमें तो ऐसा चाहिए था, दूसरे के पास ये है, हमें वो चीज भी प्राप्त हो जाए, और असंतोष से भरते चले जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे संतोष हैं कि एक अच्छा सा परिवार है, सबके बीच प्रेम का भाव है, साथ रहते हैं, ये सेलिब्रेट करने की चीजें हैं, बड़ी बातें हैं ये। तो गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी मैम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ, जिला सीवर तहसील श्यामपुर से।
0: नरेंद्र दांगी जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेडियो लगातार सुनते हैं आप?
1: हाँ जी मैम सुनते हैं।
0: इसलिए आपने फोन किया। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है?
1: वो ये कि मैम जो है अपने पास उसमें संतोष रखना चाहिए, और जैसे हाय माया करते रहते इसमें कुछ भी नहीं। हाँ अपन जो कर्म कर रहे हैं उसको अच्छे से लगन से करो, वो भगवान देगा फिर।
0: बढ़िया, अच्छी बात आपने कही कि हाय माया न करें, लेकिन अपने कर्म जो है उसको लगन के साथ करें
1: जी।
0: और बहुत अपेक्षा न रखें, कर्म करें, ईश्वर पर छोड़ें और जो कुछ आपको प्राप्त है उसका आनंद मनाएं। तो नरेंद्र जी, आप किन किन बातों का आभार करते हैं, आनंद मनाते हैं?
1: अपन तो ऐसा है कि हम तो खेती किसानी करते हैं, तो आज कर्म कर लिया अपने, जो भी बना वो देना ऊपर वाले के हाथ में है।
0: तो आप खेती करते हैं और अपने कर्म को अच्छी तरह से करके उसके फल की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन संतोष का विषय ये हो सकता है आपके लिए कि आपके पास एक जमीन है।
1: अपने पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। अपन अभी मैंने बोला हाय माया करेंगे कुछ नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: जितना लोभ करोगे उतना कम होगा।
0: बिल्कुल, तो इस बात का आपको संतोष होगा कि आपके पास एक जमीन है जिस पर आप खेती कर सकते हैं, आपके पास संसाधन है कि आप खेती करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है कि आप काम कर पाते हैं। इन सारी बातों को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। तो नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप अपने काम के साथ बहुत खुश हैं और निष्काम भाव से इस काम को करते हैं। इसी तरह बने रहिए और जिंदगी को खुशनुमा तरीके से बिताते रहिए। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

श्रोताओं, सच तो ये है कि जिंदगी की दौड़ में एक बात हम बहुत देर से समझते हैं कि जिस मंजिल को पाने के लिए कल तक हम बेचैन थे वो हमें मिली और फिर एक नई प्यास जाग उठी, हमारी आंखें फिर किसी नई मंजिल की ओर उठ जाती हैं। तो इसी भागते हुए मन के बीच कभी ठहर कर पीछे देखना जरूरी होता है कि कितनी मुरादें थीं जो पूरी हो चुकी हैं, कितने ही चेहरे हमारे साथ हैं, कितनी सुबहें अब भी हमारी प्रतीक्षा करती हैं और कितनी छोटी छोटी खुशियां बिना शोर किए हमारी जिंदगी में रोज उतरती रहती हैं। उन्हें महसूस करना और जीना ही दरअसल जिंदगी है। समझने की बात यह है कि संतोष इच्छाओं की समाप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्त जीवन की सुंदरता को पहचान लेने का नाम संतोष है। तो अगली बार जब आपका मन अभावों से बेचैन हो तो एक पल ठहर कर खुद से ये भी पूछिएगा कि जो मेरे पास है क्या मैंने उसे कभी पूरे मन से जिया है, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप साधारण समझकर आगे बढ़ गए वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अनमोल पूंजी हो। आपके पास जो है उसकी कद्र बनी रहे, जो नहीं है उसके लिए उम्मीद बनी रहे और इन दोनों के बीच मन में संतोष हो, आंखों में सपने हो और होठों पर मुस्कुराहट बनी रहे, इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा यात्रा संवाद में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज से आंगन मिलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी 97,882 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। SBI ने 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकालने या दूसरे ATM लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने की घोषणा की है। SBI की सभी शाखाएं कल रविवार को भी खुली रहेंगी। पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जापान एशियाई खेलों में भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने आपकी फरमाइश पर लिया है, फिल्म का नाम है इज्जत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। गीत साहिर लुधियानवी का है और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ, शाइनी और निवान शर्मा ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म इज्जत का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म ठोकर का गीत। गीत लिखा था साजन दहलवी ने और इसे संगीतबद्ध किया था श्याम जी घनश्याम जी ने। गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। साथ ही थाना रोड बक्सर से जीवद गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बांडा जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार की। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म नाइट इन लंदन का ये गीत।

देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम का गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए फिल्म कुदरत से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है मजरूह ने और इसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा की, साथ ही संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव इशिका और तेजल यादव की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कुदरत का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: So, your place or mine?
2: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कौन है?
1: जी मैं पोस्टमैन, आपका पत्र आया है।
0: अच्छा अच्छा, आता हूँ भैया।
1: नमस्ते शर्मा जी।
0: अरे नमस्कार मुरारी भैया। कहो क्या ले आए आज?
1: बस आपका एक पत्र आया है, लीजिए।
0: अच्छा अच्छा, निमंत्रण पत्र है, लाइए। धन्यवाद।
1: अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम ही है।
0: अरे कैसी बात करते हैं, आइए ना, कुछ चाय वगैरह लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत से पत्र बांटने हैं, इसलिए चलता हूँ। और वैसे भी मैं ड्यूटी के वक्त केवल ड्यूटी ही करता हूँ, चाय पीने फिर कभी आ जाऊँगा छुट्टी वाले दिन।
0: अच्छी बात है भैया, जैसी आपकी इच्छा।
1: अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते।
0: नमस्कार।
2: किसका निमंत्रण पत्र आ गया जी?
0: अरे दीवान चंद्रजी श्रीवास्तव का भेजा पत्र है, उनके पुत्र अमरचंद श्रीवास्तव की शादी का निमंत्रण है।
2: अच्छा।
0: बारात मानिकपुर से खागा जाएगी अगले शनिवार को।
2: अरे पर ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना, कौन है ये अमरचंद श्रीवास्तव?
0: जहाँ तक मुझे याद है, मैं इस नाम के केवल एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, शायद वही होंगे।
2: वही कौन?
0: अरे वही जिनकी कविता स्पुरलिंग अभी कुछ दिन पहले ही देवदर्शन पत्रिका में छपी थी।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ी थी। अरे अरे अरे, बहुत ही जोशीली रचना थी। अरे मैंने यही तो कहीं आले में रख दी थी संभाल कर। अच्छा अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। हाँ
0: तुम्हें मालूम है, उस रचना के कारण सरकार ने पत्रिका से 2000 रुपए की जमानत ली।
2: अच्छा।
0: हाँ, अभी ये 2-4 दिन पहली अखबार में समाचार छपा है।
2: अरे ये तो होना ही था, क्योंकि उस कविता में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले शहीदों का गुणगान जो किया गया था।
0: मगर मानना पड़ेगा अमरचंद्र जी को, उनकी लेखनी में गजब का साहस है। ऐसी आग उगलने वाली शब्दावली का प्रयोग हर किसी के बूते की बात नहीं, देशभक्ति के ऐसे भाव कि पढ़कर पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं।
2: हाँ हाँ लीजिए लीजिए, ये रही वो पत्रिका। और हाँ इसमें इस पृष्ठ पर छपी है वो रचना, संभाल लो।
0: तो जरा पढ़कर ही सुना दो।
2: अरे अरे अब आप ही पढ़कर सुना दो भाई, मेरा चश्मा अंदर रखा है ना।
0: ला अच्छा मैं ही पढ़कर सुनाता।
2: हाँ।
0: दहक रही जिनके अंतर में, दहक रही जिनके अंतर में पराधीनता की ज्वाला, निकले जो रणचंडी को पहनाने मुंडों की माला।
2: वाह।
0: चलो पहन कर केसरिया बाना उन वीर जवानों को, बारंबार प्रणाम प्राण पण को उद्यत परवानों को।
2: वाह वाह।
0: प्राण पण को उद्यत परवानों को।
2: आहा कितनी अच्छी है ना।
3: महात्मा गांधी की
4: जय,
3: भारत माता की
4: जय,
3: महात्मा गांधी की
4: जय,
3: भारत माता की
4: जय।
2: क्या आपको विश्वास है कि ये विवाह आमंत्रण इन्हीं अमरचंद्र श्रीवास्तव का है?
0: विश्वास तो नहीं होता, किंतु आज की परिस्थितियों में जबकि पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो, लोगों में देशभक्ति का ज्वार हिलोरें ले रहा हो और हर कोई स्वेच्छा से जेल जाने के लिए तत्पर हो, ऐसे में एक देशभक्त लेखक विवाह करने का विचार भी कैसे कर सकता है?
2: तो ये और कोई अमरचंद्र श्रीवास्तव तो नहीं है?
0: कह नहीं सकता, परंतु जब मेरा किसी और अमरचंद्र श्रीवास्तव से परिचय ही नहीं तो मुझे विवाह का आमंत्रण वो क्यों भेजने लगे?
2: इसका मतलब तो ये निकला कि इनकी देशभक्ति दिखावा मात्र है।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। हाँ ये हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण उन्हें ये विवाह करना पड़ रहा हो। खैर जो भी हो, शादी में जाने पर हर बात साफ हो जाएगी।
2: मगर आपने कभी इनका जिक्र ही नहीं किया, मतलब ये आपसे कब मिले,

0: कहाँ मिले? अरे परिचय कैसे हुआ?
1: मैं इनसे पहली बार शायद बनारस में मिला था,
0: अच्छा।
1: शायद कॉलेज में। और सच कहूँ तो पहली मुलाकात में वो मुझे देवदूत दिखे। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने देवदूत होने का विज्ञापन किया हो, इसलिए भी नहीं कि उनके देवदूत होने के इतने उपकार विश्व पर बिखरे रहे हों कि उन्हें देखकर कोई भी उन्हें देवदूत ही कहता। अरे ऐसे ये बात भी नहीं कि उनके कष्ट सहने उनके शरीर को ऐसा तेजोमय और पारदर्शक बना दिया था कि आंखें चार होते ही देखने वाले की आंखें आंखों पर ठहरने के बजाय उनके चरणों पर ही ठहरें।
0: अच्छा।
1: और ये भी नहीं कि अपने चिंतन के चरखे पर हाथ कते हाथ बुने वे इतने बारीक डोरे निकालते हैं। अनुभव और चिंतन के ताने बाने से बने कि हमारी बुद्धि ललच उठे।
0: अरे क्या थे वो?
1: अनुभव की रोमावली फूल उठे और अंतरिक्ष के अंधकार में चलती हुई आंखें अंतश्चेतना और बहिर्प्रकाश पा जाए। ये कुछ भी न था।
0: अरे तो फिर क्या था?
1: केवल एक बात थी, दृश्यवान मानव में मुग्ध को मानने और अपरिमितता का आरोप कर पूजने की जो कमजोरी है, वही मिलने में वंदनीय कहने की जड़ में शायद विद्यमान थी। और इसलिए जब वे आए तो मैंने किसी चिंतक का विचार अपने सामने रखा कि प्रभु आसमान के परे नहीं, वो तो उम्र के परे निवास करता है। और धीरे से मिलाली छाती दूर खड़े खड़े ही।
0: अच्छा, मगर उनमें ऐसी क्या बात थी जिसने आपको इतना प्रभावित किया है?
1: उनका व्यक्तित्व, वो चौड़ा कपाल, लंबी लंबी आँखें।
0: अच्छा।
1: हजामत खूब अच्छी बनी हुई, किंतु आँखों की गंभीरता और आँखों की अस्त व्यस्तता कह रही थी कि अपने ध्रुव पथ में सौंदर्य को पनाह देने के लिए इस व्यक्ति के पास अवकाश नहीं। बातों में सारा बदन वक्ता की ओर, किंतु आंखें दीवार पर उगी घास पर आविष्कारक की तरह कुछ खोजती सी। प्रत्येक शब्द मुस्कुराकर बाहर निकले। हाथ में पंत जी का पल्लव और बाएं हाथ की अनामिका में कीमती पत्थर लगी सोने की अंगूठी। उस दिन की सब बातें जिज्ञासुओं जैसी थी। मैं बोलता गया, वो चुप सुनते रहे।
0: तो क्या बस इतना ही परिचय था आपका उनसे और कुछ नहीं?
1: नहीं नहीं, 3 महीने पश्चात फिर उनसे भेंट हुई।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन के अवसर पर डिग्री का आडंबर लेने आया था। वो भी बीए पास हो गए थे और मेरे समान धर्मार्थी थे।
0: अच्छा।
2: नमस्कार शर्मा जी।
1: अरे नमस्कार श्रीवास्तव जी, नमस्कार। कहिए क्या हाल है?
2: बस सब कुशल मंगल है। कल ही आया हूँ सुबह की ट्रेन से।
1: अच्छा।
2: कन्वोकेशन में बुलाया गया हूँ।
1: ओहो,
2: बीए की डिग्री जो लेना है। पास ही में ठहरा हूँ, राधा रमन धर्मशाला में।
1: अच्छा।
2: सोमेश अग्रवाल और महेंद्र कुमार तिवारी भी मेरे साथ ही ठहरे।
1: वो भी? अच्छा।
2: अरे धर्मशाला तो अच्छी है, मगर वहाँ बिस्तरों का प्रबंध नहीं है।
1: क्यों?
2: रात भर पलंग पर एक दरी बिछा कर सोना पड़ा।
1: अरे
2: खटमल मच्छर भी कम न थे, रात भर खून चूसते रहे। सही ढंग से नींद भी नहीं आई, बस करवटें बदलते रहे। एक तरह से रात्रि जागरण ही हो गया समझो। और बताएं, आप कहाँ ठहरे हैं?
1: मैं ये बैरिस्टर रामनंदन तिवारी जी के बंगले पर।
2: अच्छा, फिर तो आप आराम से रहे होंगे।
1: आराम से ही है।
2: अरे हाँ, याद आया, वो गौरी नंदन विश्वकर्मा को तो आप जानते हैं ना? पिछले दिनों पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
1: अच्छा, क्यों?
2: राजद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया है।
1: कहाँ, कौन सी जेल में?
2: ठीक से तो मालूम नहीं, पर लोगों का कहना है कि शायद लखनऊ जेल में रखा गया है।
1: अच्छा।
2: यूं वो आदमी अच्छे हैं, देशभक्त भी हैं, परंतु सुना है पत्नी से उनकी नहीं बनती। सुना है पत्नी घर

0: छोड़कर मायके चली गई है।
1: अच्छा, कब?
0: एक साल हो गया, आपको तो पता होगा।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम।
0: अरे वाह, आपके तो घनिष्ठ मित्र थे वो।
1: हाँ हैं, पर उनसे मेरा लगभग 1.5 साल से कोई संपर्क ही नहीं हुआ।
0: और वो रत्नाकर त्रिपाठी, वो आपकी बहुत याद करता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: कहता था आपने उसकी सब पुस्तकें रख ली।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
0: मैंने उसे कहा भी कि शर्मा जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, पर वो अपनी बात पर अड़ा था। मक्कार है धूर्त कहीं का। मैं तो जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते।
1: नहीं नहीं जी, हरगिज नहीं किया ऐसा।
0: सुना है आपको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है।
1: ये किसने कहा जी आपको?
0: अरे इलाहाबाद में ऐसी चर्चा थी।
1: क्या?
0: पार्टी के बड़े नेताओं को आपकी कर्मठता और देशभक्ति के बारे में कुछ लोगों ने जानकारी दी है, मगर आप अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई।
1: अरे तुम, मुझे क्या करना होगा उसके लिए?
0: अरे आप एक बार इलाहाबाद जाकर मधु मंगल जी से मिलिए, वे संगठन मंत्री हैं। एक बार उनसे मिल लेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा।
1: ये मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मुझे किसी पदवद की कोई आकांक्षा नहीं है।
0: वैसे ही आपकी इच्छा।
1: ठीक है,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। अरे बधाई हो सभापति जी, बधाई हो आपको। हाँ
0: जी,
1: सुना कि आप यूथ लीग के सभापति निर्वाचित हुए तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमें।
0: आप भी मजाक करेंगे?
1: अरे भाई मजाक कैसा, मुझे तो पता था कि आपकी योग्यता आपको बहुत आगे ले जाएगी, प्रतिष्ठा दिलवाएगी। और फिर कोई आदमी किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो खुशी तो होती ही है ना।
0: अरे भाई ये सब आप जैसे लोगों की शुभकामनाओं का प्रताप है, अन्यथा मेरे जैसे अदना आदमी की क्या दिशा।
1: देखिए, आपकी योग्यता किसी से छिपी नहीं है, ये तो उसी योग्यता का परिणाम है।
0: अरे ये सब आप जैसे लोगों की शुभकामनाओं का प्रताप है, अन्यथा मेरे जैसे अदना आदमी की क्या विसात।
1: आपकी योग्यता किसी से छिपी नहीं है साहब, ये उसी योग्यता का परिणाम है।
0: ये तो आपका स्नेह है, और सच कहा जाए तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इस लायक समझते हैं। वैसे लोगों ने प्रयास बहुत किए कि मैं इस पद पर ना चुना जाऊं।
1: अच्छा, किसने?
0: अरे अब क्या बताऊं, बड़े बड़े दिग्गज मेरे पीछे पड़े थे। राम आधार जी सैनी, शंकर शरण सिंह, वेद प्रकाश सोनी और रेवती रमन अग्निहोत्री जैसे लोगों ने तो अपना पूरा जोर लगा लिया, पर आपका ये मित्र उनकी कारगुजारियों के बावजूद आखिर जीत ही गया। अरे आपकी शुभकामनाओं का प्रताप नहीं तो और क्या है।
1: तो आप भी इनको ठिकाने लगवा दें, ताकि इन्हें मालूम पड़ जाए कि आपकी शक्ति भी कम नहीं।
0: नहीं शर्मा जी, आखिर काम तो इन्हीं लोगों के बीच करना है, और फिर ये भी कम ताकतवर लोग नहीं हैं, ऊपर तक पहुंचे इनकी। अब तो भलाई इसी में है कि बीती ताही विसारी के आगे की सुधि ले आई।
1: चलिए अच्छी बात है, ईश्वर करे आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें, मुझे एक आयोजन में भी पहुंचना है।
0: अच्छी बात है, फिर भेंट होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: अरे आइए आइए शर्मा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: अरे ट्रेन के इस डिब्बे में आपका स्वागत है।
1: अरे दूल्हे राजा, कितना सुखद अवसर है कि आपसे ट्रेन में मुलाकात हुई। आज तो आप जच रहे हैं।
0: सचमुच?
1: ये मेहंदी रचे हाथ, हाथों में कटार, उंगलियों में रत्न जड़ी अंगूठियां, फोटो पर पान की लाली, कजरारे, नैन,

0: इस पर पगड़ी और इत्र की भीनी भीनी खुशबू सारे साज श्रृंगार आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं।
1: अरे ये तो आपकी स्नेह दृष्टि है, वरना मैं तो साधारण सा दिखने वाला प्राणी हूँ।
0: परंतु आज तो आपका रूप सर्वथा असाधारण लग रहा है।
1: अरे अब छोड़िए भी रूप स्वरूप की प्रशंसा, आइए कुछ और बातें करें।
0: बात कुछ और होगी तब भी तो आपकी प्रशंसा ही करना पड़ेगी ना।
1: मैं आपका मतलब नहीं समझा।
0: अरे भाई पिछले दिनों आपकी रचना स्फुरलिंग पड़ी।
1: अच्छा
0: हाँ, एक बहुत अच्छी कविता के लिए आपको बधाई।
1: अरे सब आपकी कृपा है, टूटा फूटा लिख लेता हूँ, ये मुझे आता ही क्या है।
0: वाह क्या हृदय पाया है, कविता मानो वो उमाड़ है जो रोके ना रुके थमाई ना थमे।
1: अरे आपका बिस्तरा कहाँ है? यहीं इसी डिब्बे के नीचे वाले गद्दे पर आ जाइए ना, रास्ते भर बातें होती रहेंगी।
0: हाँ, अच्छी बात है, मैं अभी ले आता हूँ, उधर रखा है
1: जी।

विवाह में मैं 2 दिन रहा। रोज अखबार देखता। जहां शादी हो रही थी उस गांव में पुलिस ने उसी दिन सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया था।

शादी बहुत धीरे धीरे होती चली जा रही थी। अमरचंद्र औरतों के गीतों और मर्दों के हंसी मजाक में ऐसा रस ले रहे थे मानो वो किसी और लोक के नहीं, सिर्फ इसी लोक के जीव हो। रह रहकर मैं अमरचंद्र से कुछ पूछना चाहता था, किंतु रंग में भंग ना हो इस भय से मैंने कुछ पूछा नहीं। तीसरे दिन मैं चल दिया।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ हाँ मैं यही हूँ, कहिए क्या हुआ?
0: अरे होना क्या है, ये अखबार देखा?
1: कौन सा?
0: यही लोक दर्पण।
1: हाँ हाँ पढ़ा तो है, पर सरसरी नजर से। क्यों, कुछ खास छपा है क्या?
0: खास ही समझो, इसमें कहानी छपी है। वाह क्या कहानी है, एकदम बोलती भाषा, बड़ा आनंदमय प्रवाह।
1: अच्छा,
0: मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाने वाले तरुण का सजीव चित्रण है।
1: अरे
0: पढ़ते पढ़ते मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए।
1: अरे आप तो वैसे ही बहुत भावुक है ना?
0: नहीं, कहानी ही इतनी मार्मिक है। और पता है किसकी लिखी है ये?
1: किसकी?
0: अमरचंद श्रीवास्तव की।
1: अरे ये वही अमरचंद्र जी जिनकी शादी में आप गए थे?
0: हाँ वही। पर कुछ भी कहो, उनकी लेखनी में दम तो है।
1: अरे क्यों ना होगी, सिद्धहस्त लेखक जो हैं वो।
0: अच्छा सुनो, मेरा सामान तैयार कर दूँ।
1: क्यों भाई, क्या फिर किसी शादी में जाना है?
0: नहीं शादी में नहीं, एक मुकदमे की पैरवी करने शहर जाना है।
1: जब से आपने वकालत पास की है ना, घर में तो आपका पांव टिकता ही नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन ही शहर भागते हो।
0: क्या करूं, आखिर अदालत तो शहर में ही है ना, जाना तो पड़ेगा।
1: अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी, जाइए।
2: ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए।
3: मिलॉर्ड, यह पहला केस है गवर्नमेंट वर्सेस रोशनलाल। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी माल असबाब से भरी मोटर गाड़ी को लूटा है।
2: सरकारी वकील को कुछ कहना है?
4: मिलॉर्ड, रोशनलाल वल द्वारिकादास ने 21-22 जून की दरमियानी रात में रामपुर और किशनपुर के बीच घात लगाकर सरकारी माल असबाब ले जा रही मोटर गाड़ी पर हमला किया और ड्राइवर सहित 2 पुलिस कांस्टेबलों को गोली मारकर घायल कर दिया और सारा माल लूट ले गए। मिलॉर्ड, मैं इस वाक्य के चश्मदीद गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ।
2: इजाजत है।
5: गवाह नंबर 1 सुदामा प्रसाद बलराम लाल हाजिर हो।
4: हाँ तो सुदामा प्रसाद, गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।
6: मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
4: हाँ तो सुदामा प्रसाद, बताइए इस केस के बारे में आप क्या जानते हैं?
6: जी मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता।
4: क्या क्या आपने अभियुक्त को ट्रेन लूटते हुए नहीं देखा?
6: जी नहीं।
4: इसने 2 पुलिस वालों को गोली से घायल किया, क्या ये भी आपने नहीं देखा?
6: जी नहीं। जी मुझे तो मालूम ही नहीं। मिलॉर्ड, वकील साहिबा से ही मुझे ये नई जानकारियां मिल रही हैं। मिलॉर्ड, रोशन लाल तो देशभक्त युवक है हुजूर।
4: मिलॉर्ड, ये गवाह सच बोलने से मुकर रहा है, इसे पक्षद्रोही घोषित करने की आज्ञा चाहती हूँ।
2: इजाजत है।
4: मिलॉर्ड, अब मैं इस केस के एक और गवाह अमरचंद्र वल दीवान चंद्र को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ।
2: इजाजत है।
5: अमर चंद्र वल दीवान चंद्र श्रीवास्तव हाजिर हो।
4: हाँ तो अमर चंद्र जी, बताइए आप इस केस और मुलजिम रोशनलाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
7: मिलॉर्ड, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं और मेरे पिता और मेरे श्वशुर, हम सभी परम राजभक्त हैं। मेरे विचार से षड्यंत्र बड़ी बुरी चीज है। मैं षड्यंत्रकारियों को जानता हूँ, मैंने उनके पास पिस्तौल भी देखी थी।
2: ऑर्डर ऑर्डर,
7: रोशनलाल मेरे यहाँ आता जाता था, मैंने उसे मना भी किया था पर वो नहीं माना। मुझे पता चल गया था कि वो गुनाह करने पर उतारू है, इसलिए मैंने ही पुलिस को उसकी सूचना दी थी।
4: मिलॉर्ड, सरकारी गवाह ने हर बात साफ कर दी है, अब मुलजिम के वकील चाहें तो उससे जिरह कर सकते हैं।
2: मुलजिम के वकील को जिरह की इजाजत है।
0: धन्यवाद मिलॉर्ड। हाँ तो श्रीमान अमरचंद्र जी, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगे सच सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे।
7: मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा और सच के सिवा
8: अरे ये क्या, ये गोली किसने चलाई? पकड़ो उसे, पकड़ो फौरन, और गवाह को अस्पताल ले जाओ, जल्दी करो। अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है।

भाइयों, अमरचंद जी श्रीवास्तव एक देशभक्त और परम स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मैं भी उन्हें बचपन से जानता था। यूथ लीग के सभापति और दूसरे प्रमुख पदों पर रहते हुए उन्होंने जो देश सेवा की वो हमेशा याद रखी जाएगी। ये बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि जब वो अदालत में गवाही दे रहे थे, तभी अदालत की कार्रवाई देख रहे

0: उनके चचेरे भाई गोपाल चंद ने ही उन्हें गोली मार दी, जिससे उनका प्राणांत हो गया। चूंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, कानून सजा देगा ही। पर फिर भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और अब अंत में मैं इस शोक सभा के सभापति माननीय श्री शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मृत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
1: भाइयों, दिवंगत अमरचंद श्रीवास्तव मेरे अच्छे मित्र थे। वे शिक्षक तो थे ही, एक अच्छे नेता और एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। मेरा मानना है कि कला जीवन से अपना अनुवाद मांगती है। जो दे सकते हैं उन्हीं की जीवन छाया इतिहास के नाम से तिथि ग्रंथों में और प्रेरणा के नाम से कृति ग्रंथों में पड़ी रह जाती है। मेरी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत आज से आंगन मिलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। SBI ने 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकालने या दूसरे ATM पर लेन देन का पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने की घोषणा की है। SBI की सभी शाखाएं कल रविवार को भी खुली रहेंगी। पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जापान एशियाई खेलों में भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सफर में यूं ही चलते रहना सादगी के साथ, लोग मिलते रहेंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। महिला सभा के सभी श्रोता बहनों का कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज मैं अर्चना शुक्ला आपके साथ हूँ, स्वीकारिए नमस्कार। बहनों, मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, ऐसे खूबसूरत मौसम में आपको कहीं घूमने जाने का मन नहीं हो रहा? मन तो हो ही रहा होगा, तो सोचिए नहीं, इस ब्यूटीफुल सीजन को एंजॉय कीजिए और देशाटन को निकलिए। कोई भी अपने मन पसंद पर्यटन स्थल चुनिए और अपने काम को, ड्यूटीज को थोड़ा रोक के भ्रमण के लिए निकल पड़िए। और जान लीजिए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और पर्यटन दिवस के दिन इसी अवसर पर अपने पर्यटन मंत्री ने लॉन्च किया है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। लोकसभा में पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो बहनों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इस पहल की शुरुआत क्यों की है, इसमें उनका क्या उद्देश्य निहित है, ये जानते हैं। तो पहल का प्राथमिक उद्देश्य है गंतव्यों में पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना, गंतव्यों में पर्यटकों के समग्र अनुभव को उन्नत करना तथा उन्हें पर्यटक मित्रवत लोगों से मिलाना जो अपने लिए गौरवशाली राजदूत और हानिकार है, अतुल्य भारतीयों के माध्यम से सभी को अतुल्य भारत का अनुभव कराना जिससे भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए अधिक स्वागत योग्य, आतिथ्यपूर्ण और यादगार अनुभव निर्मित हो सके। और यह काम हमारी पर्यटन दीदियां बखूबी कर सकती हैं। महिलाओं और युवाओं को हेरिटेज वॉक, फूड टूर और प्रकृति ट्रैक जैसे नवीन पर्यटन उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद डिजिटल साक्षरता और डिजिटल उपकरणों के सामान्य प्रशिक्षण को दिया जाना भी सुनिश्चित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा बनाए गए अनुभव राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के लिए खोजे जा सके और दिखाई दे सके। स्थानीय अनुभवों को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अब तक 3000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सन 2024 पर पर्यटन मंत्रालय ने देश के 50 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का विस्तार भी किया है। यह पहल पूरे भारत में 6 पर्यटन स्थलों ओरछा मध्य प्रदेश में, गांधी कोटा आंध्र प्रदेश में, बोधगया बिहार में, आइजोल मिजोरम में, जोधपुर राजस्थान और श्री विजयापुरम अंडमान और निकोबार में शुरू की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल के तहत महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि ये गंतव्य की क्षमता के आधार पर हेरिटेज वॉक, फूड टूर, फास्ट फूड, नेचर ट्रैक, होम स्टे का अनुभव और नवीन पर्यटन उत्पादों जैसे नए पर्यटन उत्पाद और अनुभव विकसित कर सके। यह प्रशिक्षण अतिथि देवो भव दर्शन से प्रेरित है तथा पर्यटकों को सम्मानित अतिथि के रूप में मानता है। बहनों, पर्यटन दीदी पर विशेष जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज की हमारी बहनें, हमारी बेटियां सभी पढ़ी लिखी हैं और उनकी मधुर वाणी और उनके समझ की क्षमता विकसित हो चुकी है। आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां, हमारी बहनें लगी हुई हैं। यह काम वो बखूबी कर सकती हैं, इसलिए युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बहनों, चलिए एक गीत सुनते हैं। गीत फिल्म अंदाज से, इसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने।

नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी ही जीवन है, नारी ही शक्ति है, इस बात की गवाह पूरी सृष्टि है, नारी के बिना संसार नहीं। इतिहास भी इस बात का गवाह है, हमेशा से ही स्त्रियों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। हर क्षेत्र में आज महिला अपना लोहा मनवा चुकी है। स्त्री ने मजबूर कर दिया है कि लोग कहें कोमल है कमजोर नहीं, तो शक्ति का रूप ही नारी है। और इसी बात की गवाह कल्पना सोरेन, जिन्होंने झारखण्ड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने, उन्हें सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी न रखकर समाज में बदलाव की नायिका बनाने का काम किया है। कल्पना सोरेन, जिनका पूरा नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है, इनका जन्म 3 मार्च 1985 में हुआ। इनके पिता भारतीय सेना में थे, इसी कारण इनकी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में हुई। कल्पना संथाल आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती है। उच्च शिक्षा में बीटेक की डिग्री हासिल की और एमबीए भी किया। ओडिया, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और संथाली भाषा में धारा प्रवाह है ये। राजनीति में आने से पहले ये

ने स्कूल का संचालन करती थी। इन्होंने 2024 में ही राजनीति में प्रवेश किया। गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और विधायक बनी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़ी हैं और पार्टी के प्रमुख प्रचारक व राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। सबसे बड़ी बात, झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्सा सीसीआई वाई एनुअल वुमेन समिट 2026 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वुमेन एम्पायरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके द्वारा जमीनी स्तर पर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और महिला नेतृत्व वाले विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। बहनों, वुमेन ट्रेल ब्लेजर अवार्ड प्रोत्साहन और सम्मान के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना और उनके योगदान को सराहना है। बहनों, चलिए एक गीत और सुनते हैं। फिल्म माया का ये गीत, जिसे अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: बहनों, आज के समय में, आज की भाग दौड़ के जीवन में और प्रदूषण भरी जिंदगी में कान में ना सुनाई देना या बहरापन एक बड़ी समस्या बन चुकी है और जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, उन लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहनों, बधिर समुदाय और उनके अधिकारों से जुड़ा विश्व बधिर दिवस हम सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे वंदना पांडे जी से।
1: वंदना जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, आपने देखा ही होगा कि जिन लोगों को कान में सुनाई कम देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उनको समाज, परिवार या सार्वजनिक स्थलों पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस विषय पर समाज को क्या समझाना चाहेंगे?
2: मैं अपने अनुभवों को आज साझा करती हूँ, क्योंकि हम खुद दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं और लगभग प्रत्येक दिन हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। मेरा तो यही कहना है या मानना है कि ऐसे लोगों के लिए हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए और हमारा व्यवहार इनके प्रति हमेशा सामान्य होना चाहिए।
1: वंदना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर इन लोगों को समझा कैसे जाए, जरा इस पर प्रकाश डालिए आप।
2: जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो समाज में जो भ्रांतियाँ हैं कि बधिरता एक मानसिक बीमारी है, उसको दूर करना हमारा पहला काम है और यह समझाना कि यह कोई बीमारी या अभिशाप नहीं है, यह एक शारीरिक भिन्नता है बस। और दूसरी चीज़ यह, उन्हें गूंगा, बहरा, अपमानजनक शब्दों से संबोधित ना करके कुछ गरिमामय शब्दों से हम उनको संबोधित करें या उनको पुकारें।
1: वंदना जी, क्योंकि इनके साथ सामान्यतः लोगों को बातचीत करने में दिक्कत होती है, तो इस दिक्कत से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं?
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। संचार की सुगमता बहुत आवश्यक है। सांकेतिक भाषा को एक आधिकारिक रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्कूलों और जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर बुनियादी तौर पर साइन लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। टीवी, समाचारों, फिल्मों, रेलवे स्टेशंस, अस्पतालों में सब टाइटल्स और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की व्यवस्था अनिवार्य कर देनी चाहिए।
1: वंदना जी, बधिरों के लिए आपकी राय में हम और क्या क्या कर सकते हैं?
2: सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना चाहिए या होना चाहिए उनके लिए। सामान्य स्कूलों में इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों और तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे समाज से अलग, अपने आप को अलग महसूस न करें और इनकी योग्यता अनुसार नौकरी या जीविका उपार्जन के लिए रोजगार का अवसर भी देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मन में भेदभाव न रखें। सभी आयोजन, चाहे वे पारिवारिक हो या सामाजिक, सामान्य भागीदारी मिलनी चाहिए। मन में सहानुभूति के साथ साथ समानता का भाव भी होना चाहिए।
1: वंदना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारी सभी बहनें इसको सुनी होंगी और इसको मानेंगे भी।
0: बहनों, बारिश का सीजन यूं तो जाता रहा, पर इस सीजन में त्वचा कांतिहीन हो जाती है। ह्यूमिडिटी के कारण हमारी त्वचा खुरदुरी और चिपचिपी सी रहती है। इसी के कारण हमें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। तो चलिए, आज आपसे हम कुछ ब्यूटी टिप्स साझा करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी त्वचा को चमका सकते हैं। तो बहनों, थोड़ी सी दही में एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे और अपने हाथों में मसाज करें। मसाज करने के बाद उसे सूखने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दें। सूख जाने के बाद ठंडे पानी से धो लें। सप्ताह में कम से कम दो बार करें, आप देखेंगी त्वचा में निखार आ जाएगा। दूसरी टिप्स है मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर का लेप लगाइए, पर इसको चेहरे पर मसाज नहीं करनी है। लेप लगाकर सूखने को छोड़ दीजिए और सूख जाने पर गुनगुने पानी से धो डालिए। बाद में कोई भी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए। चमकती दमकती त्वचा पाइए और इत्मीनान से एक और गीत सुनिए। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है साथ साथ और आवाज दी है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत, योगदान है आकाशवाणी रीवा का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं पदमधर झा के गाए लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में पदम धर झा के गाए लोकगीत। योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं राजकुमार तिवारी के गाए भजन। योगदान है आकाशवाणी रीवा का।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में राजकुमार तिवारी के गाए भजन। योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहरा से। स्वर है पंकज उदास और साधना सरगम की। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है बिजू शाह ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गणेश अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर लंबे अंतराल के बाद भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे समृद्ध, सुगम और विकसित भोपाल के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्र जैसे प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में हरित TDR का विशेष प्रावधान है, जिससे हरित क्षेत्र की भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति और विकासकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। नागरिक

प्रारूप पर अपने सुझाव व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन भी आज गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष के साथ अपने आराध्य को भावभीनी विदाई दी। धार जिले में रात भर झांकियां और अखाड़ों के प्रदर्शन के साथ उत्सव चला। हालांकि बदनावर में विसर्जन के दौरान गहरे पानी में जाने से 3 युवकों की डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। खंडवा जिले में नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंडों में शांतिपूर्ण विसर्जन सम्पन्न हुआ, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और डीआईजी सिमाला प्रसाद ने लिया। यहां नहालदा क्षेत्र में 2 सगे भाइयों की डूबने से मृत्यु की दुखद घटना भी घटी। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील स्थित शीतलदास की बगिया, प्रमुख नदियों नर्मदा, ताप्ती, बेतवा सहित अन्य प्रमुख स्थानों में पितरों को तर्पण किया जा रहा है। बता दें कि 15 दिनों के इस पवित्र समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए सात्विक रहकर दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। बात खेल की। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में भोपाल की आशी चौकसे ने निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर आशी चौकसे और उनकी टीम तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद को विशेष रूप से बधाई दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने मिश्रित युगल स्क्वैश में कांस्य पदक विजेता जोड़ी और स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम को भी बधाई दी। दूसरी ओर स्क्वैश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे के खिलाफ जबरदस्त वापसी की और महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया। इससे पहले मिक्स डबल्स में जोशना चिन्नप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली चमकने और आंधी तूफान की आशंका भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है, जिसका असर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित शासकीय महाविद्यालय में नालसा दान योजना और पाक्सो पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। सचिव अश्विनी सिंह ने नशा मुक्ति, पुनर्वास और प्रभावितों को निशुल्क विधिक सहायता देने पर जोर दिया। भिंड जिले के मालनपुर में एमएसएमई प्रोत्साहन योजना से न्यूरोन ग्लोबल कंपनी ने 70 करोड़ का निवेश कर उत्पादन शुरू किया। 40% सब्सिडी से स्थापित ये इकाई 200 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। डिंडोरी जिले में अत्यधिक वर्षा और जल भराव को देखते हुए कलेक्टर ने 26 सितंबर को कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित किया। नागरिकों ने उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर झाबुआ जिले में नमामि भारतम के तहत सामूहिक गान आयोजित हुआ। झाबुआ, रायपुरिया, मेघनगर और पेटलावद के विद्यालयों में पद्मश्री महेश शर्मा सहित गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। और मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर गांव में शनिवार सुबह गणेश पंडाल में शॉर्ट सर्किट से करंट फैलने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
4: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
5: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
6: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
7: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
6: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
8: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
6: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल से, स्वर है अनुराधा पोटवाल, उदित नारायण और साथियों के, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयबीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सभी श्रोताओं ने अपने पत्रों में लिखा है कि हमें कोई सा भी अच्छा सा गीत सुना दे, तो आप सभी के लिए हमने पसंद किया है ये फिल्म दिल का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर इस गीत को पसंद किया है छबड़ा जिला बारा से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म निकाह का ये बेहद खूबसूरत गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने। गीत लिखा है हसन कमाल ने और संगीत है रवि का।

अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम सब चोर हैं का ये बहुत प्यारा सा गीत है, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है नवाब अर्जुन ने और संगीत बनाया है बप्पी लहरी ने। इस गीत को सुनना चाहे धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुदत्त डेरे ने। और भी श्रोता हमारे जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेली जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ हल्ले और ऋषि रैकवार ने। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं हम आपको ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी से। इस गीत को गाया है अनुराधा पोडवाल ने, स्वर है गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा। इसी गीत को सुनना चाहे मेहर नगर उमरखंड महाराष्ट्र, अभिजीत गभाड़, श्रीमती सरिता गभाड़, प्रिंस एकांश और इनका पूरा परिवार। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गभाड़, प्रणीता गभाड़, अर्जुन आकार हाइट्स बहादुरपुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और इनका परिवार। इसी गीत को पसंद किया है चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू और किशन साहू ने।

बागी से। इस गीत को गाया है अभिजीत और साथियों ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का। फिल्म आशिकी का गीत इस गीत के बाद हम आपको सुनाते हैं।

लीजिए अब सुनिए फिल्म आशिकी का ये बहुत प्यारा संगीत जिसे गाया है अनुराधा पुडवाल ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मुहत से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज बिटिया, रोजमीन तैमूर भैया तड़वी, रीना मुशर्रफत और इनके पूरे परिवार ने। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने इसी गीत को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर भोपाल की निशानेबाज आशी चौकसे और उनकी टीम को बधाई दी है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी की यात्रा कर रहे यात्रियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने यात्रियों से युवाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप जारी करते हुए इसे विकसित भोपाल की दिशा में अहम कदम बताया है। अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन भी प्रदेश भर में ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहा। आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील, नर्मदा, ताप्ती व बेतवा नदियों पर श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण किया। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता देते हैं आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवावाणी कार्यक्रम। योगदान होगा आकाशवाणी रीवा का। फिल्म संगीत का समय होगा शाम 5:33 पर, शाम 6:00, 6:45 पर, 8:35 और रात 10:20 पर। शाम 6:30 पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। इसके बाद 7:25 पर बुंदेली समाचार होंगे और 7:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 विशेष कार्यक्रम जनसेवा देश सेवा। रात 10:00, रात 9:30 कार्यक्रम विज्ञान भारती। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनिएगा एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5:00 इसी मीटर पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच हमारा प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश प्रस्तुत है लोक संगीत। योगदान है आकाशवाणी रीवा का।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाते हैं राजकुमार तिवारी के गाए भजन।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। योगदान था आकाशवाणी रीवा का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म नदिया के प्यार का, नदिया के पार का ये बहुत खूबसूरत संगीत जिसे गाया था हिमलता और सुरेश वाटकर ने। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म

श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था शिवहरी का। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लम्हे का ये गीत।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म लम्हे का गीत। स्वर थे लता मंगेशकर, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है शिवहरी का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म डर से। स्वर है उदित नारायण के, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है शिवहरी का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म सुर से, सुमधुर आवाज महालक्ष्मी अय्यर की, शब्द रचना है निदा फाजली की और संगीत है एमएम क्रीम का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर भोपाल की निशानेबाज आशी चोकसे और उनकी टीम को बधाई देते हुए इसे देश का गौरव बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप जारी करते हुए इसे समृद्ध और विकसित भोपाल की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मास्टर प्लान भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्रों के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, उन्हें एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील, साथ ही नर्मदा, ताप्ती व बेतवा नदियों पर श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान जताया है। बारिश और जलभराव के चलते डिंडोरी कलेक्टर ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित किया है और शहडोल में स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना के तहत 8 साल पहले मिले पट्टों की निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया में शहडोल जिले की प्रगति शून्य बनी हुई है। इस पर शहडोल कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने नाराजगी जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम इनसे मिलिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, संवेदनाओं को समझने का एक सशक्त माध्यम भी है। और जब कोई व्यक्ति अपना जीवन साहित्य, भाषा, संस्कृति और नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने के लिए समर्पित करता है तो उसकी जीवन यात्रा स्वयं एक प्रेरक कहानी बन जाती है। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही व्यक्तित्व जिन्होंने साहित्य, लेखन, संपादन, बाल साहित्य और साहित्यिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज हम जानेंगे उनके बचपन से लेकर साहित्य तक के सफर के बारे में, उनके लेखन की प्रेरणा के बारे में, बाल साहित्य को लेकर उनकी सोच के बारे में, और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आज के डिजिटल युग के दौर में हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता किस तरह बनी हुई है। तो आइए मुलाकात करते हैं साहित्यकार, लेखक, संपादक और साहित्य जगत से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्व डॉक्टर विकास दवे जी से। आप मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक भी हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ और साथ ही आकाशवाणी के श्रोताओं से हमेशा की तरह आज इस आत्मीय पारिवारिक संवाद में आकर के बहुत आनंद मिल रहा है। और विशेष करके आकाशवाणी के प्रति मैं हमेशा से प्रारंभ में ही कृतज्ञता इसलिए भी ज्ञापित कर देता हूँ क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश शासन की साहित्य अकादमी के जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं सक्रियता से, तो सचमुच में हृदय से इसलिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आकाशवाणी के माध्यम से सदैव ही साहित्य अकादमी की सभी योजनाएं जन सामान्य तक पहुँचती है और विशेष करके दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले साहित्यकार, रचनाधर्मी जो हैं, वे आकाशवाणी के प्रति इसलिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, व्यक्तिगत चर्चा में भी कहते रहते हैं कि इस तरह की वार्ताओं से उन्हें जो सूचनाएँ मिलती है उनके कारण से वे साहित्य अकादमी से जुड़ पा रहे हैं। तो ये एक विशेष धन्यवाद मेरी ओर से भी आप स्वीकारिए और आज आनंद रहेगा आपके साथ बातचीत करने।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकास जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में आपके

0: बचपन, परिवार और परिवेश की भूमिका क्या रही?
1: वास्तव में चूंकि मैं बाल साहित्य, बाल पत्रकारिता और बाल मनोविज्ञान के विषय का अध्ययन हमेशा से करता रहा हूं और अध्येता के नाते विद्यार्थी भाव से मैंने अब तक जितना पढ़ा है, तो मैं इस बात को दृढ़ता से स्वीकारता हूं कि प्रत्येक मनुष्य का जो गढ़न होता है, उसके व्यक्तित्व का, कृतित्व का जो निर्माण होता है, वो सब कुछ बाल्यकाल से ही वास्तव में उसकी नींव पड़ जाती है।
0: जी,
1: मैं बहुत ही छोटे से एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के क्षेत्र से आता हूँ, रतलाम जिले का सबसे जो दूरस्थ अंचल जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ।
0: जी,
1: प्रारंभ से घर में स्वाध्याय की रुचि रही, पिताजी भी खूब पढ़ते रहे, माताजी की भी पढ़ने की आदत खूब रही, तो उसके कारण से ये हुआ कि बाल्यकाल से घर में पुस्तकों की आवाजाही, पत्र पत्रिकाओं की आवाजाही पर्याप्त मात्रा में रही। और लगभग पांचवी छठी कक्षा में पिताजी ने एक बहुत बड़े ग्रंथालय से मुझे जोड़ा। वे स्वयं सदस्य थे, चाहते तो वो एक दो पुस्तकें वहां से ला करके मुझे दे सकते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी रुचि जागृत हो, मैं सीधे जुड़ूं स्वाध्याय से, इसलिए उन्होंने मुझे सीधे उसका सदस्य बनाया। और उसके बाद देखते ही देखते बाल्यकाल से वह जो रुचि जागृत हुई, तो पूरा का पूरा ग्रंथालय, उसमें बाल साहित्य की पुस्तकें भी थी, वैश्विक बाल साहित्य भी मैंने उसी समय पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो बाल साहित्य था
0: जी।
1: और उसके अतिरिक्त ढेरों बाल पत्रिकाएं आती थी, वो तो पढ़ता ही था। धीरे धीरे जब पुस्तकें पढ़ चुका था तो बड़ों के साहित्य की दिशा में जाना प्रारंभ किया। और देखते ही देखते लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आठवीं नवीं कक्षा तक आते आते मैं बड़ों के साहित्य की भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ चुका था। तो ये जो आदतें मेरी बनी
0: जी,
1: इन आदतों ने मुझे जीवन के बाद के काल में भी जीवन की दिशा बदलने का काम किया
0: जी।
1: यानी मैं अभी जब स्मरण करता हूँ तो दो घटनाएं जरूर बताना चाहता हूँ। एक तो प्रौढ़ साक्षरता विभाग जो केंद्र सरकार का होता है, वहां पर मैं एक परियोजना में अधिकारी के रूप में जुड़ा
0: जी।
1: और उस सेवा में जाने के बाद स्वाभाविक रूप से वाहन सुख और वेतन सुख वगैरह सब कुछ था, लेकिन मन में ये लगता था कि साहित्य की तरफ जाना है
0: जी।
1: तो उस सेवा को छोड़ करके मैं आया। उसके बाद पता नहीं कैसे, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, तो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया और इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने के बाद मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में एक वर्ष सेवा करने के लिए गया
0: जी।
1: और जिसको आमतौर पर तकनीकी सेवा कहते हैं वो सब करता रहा। एक वर्ष बाद उसको भी छोड़ करके वापस लौटा और उसके पश्चात मैंने फिर से दोबारा स्नातक और स्नातकोत्तर किया
0: जी।
1: इस बार जब मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर किया तो हिंदी साहित्य लेकर के किया
0: जी।
1: तो साहित्य के प्रति रुचि जो बाल्यकाल में जागृत हुई थी, कई दिशा भटकाव आए, लेकिन अंततः मुझे साहित्य ने अपनी ओर खींचा और मैं साहित्य की ओर चलता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की दृष्टि से भी जब हम अभिभावक के रूप में विचार करते हैं, तो इस बात को जरूर विचार करना चाहिए कि बचपन में हम जो संस्कार दे देते हैं, उन संस्कारों का प्रभाव बच्चे पर पूरे जीवन भर पड़ता है
0: जी।
1: उसकी जीवन की दिशा भी उसी से तय होती है।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अब जैसे आपने बात करी साहित्य से आपके जुड़ाव के बारे में, अब हम आपसे जानना चाहेंगे साहित्य लेखन के बारे में। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसने आपको प्रेरणा दी साहित्य के लेखन के प्रति, जिससे आपका रुझान बढ़ा हो?
1: पहली प्रेरणा तो वास्तव में पठन पाठन से ही आई थी। रामकुमार भ्रमर जी को खूब पढ़ा, नरेंद्र कोहली जी को खूब पढ़ा
0: जी।
1: तो कई साहित्य, ओशो को मैंने पर्याप्त मात्रा में पढ़ा लगभग, यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक समय काल आया जब मैंने ब्रेक लिया एक प्रकार से कि अब थोड़ा सा इस विषय पर पढ़ना कम करना है। तब तक प्रकाशित ओशो का समग्र साहित्य मैंने पढ़ा था
0: जी।
1: और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे साहित्यकार ऐसे थे जिनको लगातार पढ़ता रहा, तो प्रेरणा तो मिलती रही। लेकिन हुआ ऐसा कि सामान्य ढंग से मैं बहुत छोटा ही था उस समय, तो एक बार माणिकचंद जी वाजपेयी मामा जी जिनको कहा करते थे और स्वदेश के वे प्रधान संपादक हुआ करते थे, वे घर पर पिताजी से मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि फूलबगिया पढ़ते हो क्या, वो बच्चों का स्तंभ होता है। तो मैंने कहा मैं प्रति रविवार पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम उसमें कुछ लिखा भी करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखूंगा। और ये एक प्रेरणा श्रद्धेय मामा जी से मुझे प्राप्त हुई थी। उसी समय हमारे एक और परिचित थे, पिताजी के मित्र, वे एक अखबार के संपादक हुआ करते थे
0: जी।
1: तो प्रसारण अखबार का नाम था, तो प्रसारण अखबार रतलाम से प्रकाशित होता था और आंचलिक पत्रकारिता का एक उदाहरण था वो। अच्छा
0: जी, जी, जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ लिख करके दो मुझे। तो पहली बार मैंने जिस विषय पर लिखा वो एक प्रकार से पत्र संपादक के नाम था
0: जी, जी।
1: और बहुत कम अवस्था में लिखा था, विद्यार्थी था। और उसके बाद तो फिर क्रम चलता चला गया
0: जी।
1: ईश्वर कृपा से अब 30 के लगभग पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है और करीब मेरा ऐसा अनुमान है कि 300 से ज्यादा ग्रंथों का संपादन करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये सब सरस्वती की अनुकंपा है, वाग्देवी की अनुकंपा मैं मानता हूँ।
0: जी जी जी

0: अब जैसे आपकी साहित्य यात्रा पर अगर हम प्रकाश डालें तो ऐसा कौन सा मोड़ है जिसने आपके जीवन और सोच को एक नई दिशा दी?
1: जैसा मैंने बताया कि 2 शासकीय सेवाओं से वापसी हुई और उसके बाद मैंने एक विद्यालय में आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की थी
0: जी।
1: आचार्य से बहुत जल्दी 1 वर्ष में मैं प्रधानाचार्य बना दिया गया था, लेकिन बच्चों के बीच में रहना, बच्चों को पढ़ाना, उस सब के कारण से मुझे बच्चों के क्षेत्र में काम करने की एक रुचि जागृत हुई कि बच्चों को पढ़ा जाए। हम लोग दरअसल बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ नहीं पाते
0: बिल्कुल।
1: और पता नहीं, मन में एक जिज्ञासा थी, थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान भी तब तक पढ़ना शुरू कर लिया था, तो लगा कि नहीं, बच्चों को ही पढ़ना चाहिए। और संयोग ऐसा रहा कि मैं जब प्राचार्य के रूप में स्थानांतरित होकर के इंदौर पहुंचा तो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं और पुरानी पीढ़ी के अब तो रहे नहीं, स्वर्गीय कृष्ण कुमार जी अष्ठाना
0: जी,
1: उनके पास 1991 में एक बाल पत्रिका का काम आया था, देवपुत्र पत्रिका का। तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप प्राचार्य होकर के इंदौर आए हो, तो आप एक काम करिए कि प्राचार्य तो हमको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप इस पत्रिका के संपादन से जुड़ जाइए। और संयोग ऐसा रहा कि बस वो 1992 में मैं 1 वर्ष बाद ही अष्ठाना जी के पास जैसे ही देवपुत्र आया, और लगभग 1 वर्ष के अंतराल से फिर मैं देवपुत्र से जुड़ा, तो मेरे लगभग 32-35 वर्ष पूरे के पूरे बाल साहित्य, बाल पत्रकारिता इसी में बीत गए
0: जी जी।
1: तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए एकदम यू टर्न का काम किया था, कि मेरे कल्पना से परे था कि अचानक मुझे शिक्षकीय दायित्व को छोड़ करके और संपादन और पत्रकारिता में जाना पड़ेगा
0: जी जी।
1: और ये सब मेरी अभिरुचियों के कारण से ही हो पाया, मुझे ऐसा लगता है
0: जी। जैसे कि आप लेखक, संपादक और साहित्य सेवी के रूप में सक्रिय रहे हैं, इन भूमिकाओं में से कौन सी ऐसी भूमिका है जो आपके व्यक्तित्व के सबसे करीब है और क्यों?
1: मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो बाल साहित्यकार वाला जो ठप्पा लगा हुआ है, या बाल पत्रकारिता वाला विशेष करके, संपादक रहा इसलिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं, इनमें परस्पर कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि मैं सदैव से मानता हूं कि एक अच्छा बाल पत्रिका का संपादक स्वयं बाल साहित्यकार होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी समझ जब तक विकसित नहीं होगी आपके मानस पर, तब तक आप संपादक नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है कि मैं उसी ठप्पे के साथ जीना चाहता हूं, मुझे अपने साथ जुड़ा हुआ वही विशेषण सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बाद के युग में निश्चित तौर पर साहित्य अकादमी के निदेशक का भी दायित्व मिला, फिर बाल साहित्य शोध संस्थान के निदेशक का दायित्व मैं 2002 से निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाल साहित्यकार होना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है।
0: निश्चित तौर पर बाल साहित्य से लेकर जो आपकी रचनात्मक यात्रा रही है, उसने एक अलग विशेष स्थान दिया है आपको
1: जी।
0: अब जैसे आज के परिवेश की अगर हम बात करें, तो आज के जो बच्चे हैं मोबाइल और डिजिटल दुनिया में इतने ज्यादा अधिक व्यस्त है, तो ऐसे में उन्हें पुस्तक और साहित्य से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
1: सचमुच आपकी जो चिंता है, मुझे लगता है कि ये एक सार्वभौम चिंता बनकर के उभरी है। बहुत पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण का जो निष्कर्ष आया था
0: जी,
1: उसका पहला वाक्य मैं जीवन में हजारों बार उद्धृत कर चुका हूं। वो वाक्य ऐसा था कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व आतंकवाद से भी बड़ी एक विभीषिका से जूझने वाला है
0: जी।
1: और वो विभीषिका ये होगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई पौध जो है, वो केवल लिसनर और व्यूअर बनकर के रह जाएगी, रीडर नहीं बचेगी। तो इस विभीषिका को विश्व आज आतंकवाद से भी बड़ी विभीषिका के रूप में इंगित कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब से दो चार तो होना ही है आगे चल करके, चूंकि अब उसके परिणाम भी हम सब लोगों को देखने को मिल रहे हैं, मोबाइल से, इंटरनेट से, टेलीविजन से, कंप्यूटर से, इतना ज्यादा नई पीढ़ी जुड़ चुकी है
0: जी।
1: कि कई बार ऐसा लगता है कि इन बच्चों तक पुस्तकों को पहुंचाना ये भी अपने आप में एक श्रमसाध्य काम हो गया है। हमारे यहाँ, मैं चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, किसान लोग एक कहावत कहते हैं कि पशुओं को जब पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, तो किसान हमेशा से ये कहता है कि आप पशु को पानी तक तो ले जा सकते हो, पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसकी मर्जी होगी तो पिएगा।
0: क्या बात है।
1: इसको केवल प्रतीक रूप में मैंने उल्लेख किया उस कहावत का, लेकिन प्रश्न ये कि इन बच्चों को, जिनकी अब धीरे धीरे स्वाध्याय से अरुचि बन गई है, पढ़ना उनके लिए एक प्रकार से बड़ा श्रमसाध्य काम हो गया है, विशेष करके पुस्तकों को लेकर के बच्चों के मन में ये धारणा बन गई कि जो खचा खच भरा हुआ टेक्स्ट होता है, जो हमारी बड़ों की किताबें होती है, उस तरह की पुस्तकें तो अब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते
0: जी।
1: उसका एक बड़ा कारण जो आप हम सबको ध्यान में आता है कि बच्चे अब जो व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहे हैं, शब्द कम हो चित्र अधिक हो, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को उनके अभिरुचि के अनुसार चित्रात्मक सामग्रियां परोसे उसको थोड़ा सार तत्व के रूप में दें। मैंने इस तरह के कुछ प्रयोग किए, मेरी 4-5 किताबें इसी प्रकार की है। और विशेष करके मुझे लगता है कि ये जो कॉमिक्स पैटर्न है, चित्रकथा का पैटर्न है, ये संभवतः हमको ऐसा लगता है कि केवल बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो बड़ी अवस्था के बच्चे होते हैं, क्योंकि बाल साहित्य को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, एक शिशु साहित्य होता है, बाल साहित्य होता है, एक तरुण साहित्य होता है और एक किशोर साहित्य होता है। इन चारों ही हिस्सों में क्या अब हम चित्रकथा पैटर्न ना ले, कॉमिक्स पैटर्न ना ले, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि चित्र की अधिकता बढ़ा दे, उससे बच्चे धीरे धीरे स्वाध्याय की तरफ जागृत होंगे। एक बात और जो पिछले दिनों मैंने एक कार्यक्रम में सुझाव दिया था, हम लोग जैसे एयरपोर्ट पर ट्रॉली लेकर के चलते हैं सामान की,
0: जी जी जी,
1: क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिन विद्यालयों में या महाविद्यालयों में भी, मैं तो कहता हूं इसमें जेन अल्फा और जेन जी दोनों की बात करना चाहिए, क्योंकि आदत तो दोनों की कम हुई है पढ़ने की,
0: बिल्कुल,
1: क्या लाइब्रेरी के पीरियड में यदि बच्चे लाइब्रेरी तक नहीं जा रहे हैं, ग्रंथालय तक नहीं जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वे कक्षा कक्ष में बैठे रहे, उनका जो आयु वर्ग है उसके अनुसार अच्छी पुस्तकें छांट करके ट्रॉली में रख करके जो वाचनालय का कर्मचारी है वो सीधे उस कालांश में कक्षा में पहुंच जाए, और बच्चों के लिए अनिवार्य हो जाए, सबको एक एक पुस्तक बांट दी जाए, उनसे कहा जाए कि आप इस आधे घंटे में जो पढ़ेंगे आखिरी के 10 मिनट में हम उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ कुछ प्रयोग यदि हमने करना प्रारंभ किए तो हम चूंकि प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी ग्रंथालय में बैठ करके बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि अब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा।
0: जी विकास जी, अब जैसे बात करते हैं बच्चों के साहित्य लेखन की, तो बच्चों के लिए साहित्य लिखना वयस्कों के लिए लिखने से किस तरह अलग है, और एक अच्छे बाल साहित्यकार में कौन से गुण होने चाहिए?
1: आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। वास्तव में पहले दरअसल ऐसा हुआ था, बड़ों के साहित्य जगत के जो तथाकथित बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बाल साहित्य लिखने वालों का मजाक बनाया
0: जी,
1: और अभी किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, हम जिस पटल पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े स्वनाम धन्य व्यक्ति ने कहा था कि मेरे जीवन में ऐसा भी दुर्भाग्यशाली समय आया कि मुझे पैसा कमाने के लिए बाल साहित्य लिखना पड़ा
0: जी।
1: अब इतने बड़े लोगों ने जब इस हिकारत के साथ जब बातचीत की तो लोगों को लगने लगा कि बाल साहित्य जो है ये तो बड़ा बेकार काम है, और एक साहित्यकार ने तो अपने कथन में यह भी कहा कि बाल साहित्य लिखना वो बचकाना काम है, लेकिन हम लोगों ने फिर दृढ़ता से इस बात को कहना शुरू किया कि बाल साहित्य का लेखन का जो काम है वो बचकाना काम नहीं है, बल्कि बच्चों का खेल नहीं है
0: जी,
1: इसको बड़ी तपस्या के साथ करना पड़ता है। आप जब तक बच्चों के मानसिक स्तर तक नहीं पहुंच पाते तब तक अच्छा बाल साहित्य लेखन नहीं कर सकते, तो ये जो बच्चों के स्तर तक पहुंचने की तपस्या है ये करना जिस व्यक्ति को आ गया वो बहुत अच्छा बाल साहित्यकार हो सकता है
0: जी।
1: हम लोगों ने कई बार अध्ययन नहीं किया या कई बार ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता। निराला जी को हम महाकवि कहते हैं, निराला जी के जीवन की जो पहली पुस्तक छपी है उस पुस्तक का नाम है बाल बोध कथाएं
0: जी,
1: और बच्चों के लिए उन्होंने पंचतंत्र की कथाओं को रीराइट किया था, पुनर्लेखन किया था। मुझे लगता है कि जब महाकवि निराला अपने लेखन जीवन की शुरुआत बाल साहित्य से कर सकते हैं तो फिर बाकी साहित्यकारों को इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता है। और वैसे ही आप महादेवी जी को अगर देखते हैं तो महादेवी जी के जो रेखा चित्र है, किट्टो गिलहरी पढ़िए आप, सोना हिरनी पढ़िए, सुई दो रानी डोरा दो रानी, वो एक यात्रा को ही उन्होंने रेखा चित्र की तरह लिखा है, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्राओं के विवरण को उन्होंने रेखा चित्र की तरह लिखा
0: जी।
1: अब इन सब रचनाओं को पढ़कर के लगता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान यदि झांसी की रानी पर एक रचना लिख करके अमर हो सकती है और वो भारत के बच्चे बच्चे के कंठ में विराजमान हो जाती है, तो फिर अब शेष साहित्यकारों को भी अब ये सोचना चाहिए कि अच्छा बाल साहित्य कैसे लिखा जा सकता है, इस दिशा में सोचें। और बाल साहित्य लिखना ये बचकाना काम नहीं है, ये दिमाग में स्पष्ट रखें। मैं कई बार कहता हूं कि राष्ट्र और समाज के ऋण से उऋण होने का एकमात्र मार्ग अगर साहित्यकारों के पास कोई है तो वो बाल साहित्य लिखना है, ये अगर करेंगे तो उस ऋण से मुक्त हो सकेंगे
0: जी। जी जी विकास जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी रचना है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है।
1: वैसे तो सामान्यतः सभी साहित्यकार जो वाक्य विन्यास प्रयोग करते हैं वैसा मैं भी कर सकता हूँ कि माँ को अपने सब बच्चे प्रिय होते हैं, वैसे ही रचनाकार को अपनी सब रचनाएं प्रिय होती है, लेकिन मैं हमेशा एक बाल कथा का उल्लेख करता हूँ। वो बाल कथा, हालांकि वैसे दो बाल कथाएं मुझे बहुत प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय जो है उसमें से एक बाल कथा तो ऐसी है कि एक अभिजात्य वर्ग की जिसको हम कहते हैं पॉश कॉलोनी
0: जी,
1: तो वैसा रहवासी क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे और उनके दादाजी बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी रहे, तो वो बच्चों से दादाजी पूछते हैं कि तुम गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताने वाले हो। बच्चे कहते हैं कि हम कंप्यूटर सीखेंगे, एक कहता है मैं स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, एक कहता है मैं सिंथेसाइजर सीखूंगा, तो ऐसे अलग अलग अपने अपने शौक पूरे करने की वो बात करते हैं। दादाजी उन बच्चों से कहते हैं कि आज शाम को तुम सब मेरे साथ चलोगे क्या घूमने के लिए? कहा दादाजी क्यों नहीं चलेंगे। वो एक सेवा बस्ती में पहुंचते हैं जहां झुग्गी झोपड़ियां होती है, अत्यधिक गरीब परिवार रहते हैं।

0: दादाजी को देख करके वहां के बच्चे सब उन पर झूम जाते हैं, तो इन बच्चों को आश्चर्य लगता है जो असली नाती पोते हैं उनके, कहते दादाजी आपको ये बच्चे कैसे जानते हैं। कहा मैं रोज इनको कोचिंग क्लास पढ़ाने आता हूँ शाम को। तो वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, जरा इन बच्चों से पूछो इनकी गर्मी की छुट्टियां कैसी रहेगी। अब जब पूछना शुरू करते हैं तो एक बच्चा कहता है कि मैं तो होटल पर कप प्लेट धोता था, दादाजी ने मेरे पिताजी से बातचीत कर ली थी तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उस काम को छुड़वा दिया, पर अब गर्मी की छुट्टी आ गई तो अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा है और पिताजी ने कह दिया है कि कल से तुमको फिर से होटल पे कप प्लेट धोने के लिए जाना है। और फिर वो अपने अनुभव शेयर करता है कि मुझे कोई चवन्नी कहता है, कोई छोटू कहता है, तरह तरह के नामों से बुलाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बच्ची से जब एक बहन पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो, तो बोले मैं तो माँ के साथ पन्नियां बिनने के लिए जाऊंगी, उनको बेच करके जो पैसा आता है उससे हम लोग भोजन करते हैं। सुबह आटा घर में होता है तो शाम को नहीं होता है, शाम को होता है तो सुबह नहीं होता है। वो सारी बातें सुनकर के इन बच्चों को लगता है कि सचमुच दुनिया में कितने संघर्ष है, इन्होंने कभी वो संघर्ष देखा नहीं है। तो कुल मिलाकर के दादाजी फिर उन सब बच्चों को कहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इन बच्चों के माता पिता से मैं बातचीत करता हूँ कि पूरी गर्मी की छुट्टियों में एक ग्रीष्मावकाश का शिविर हम आयोजित करें, उसमें ये बच्चे भी आएंगे और वो बच्चे भी आएंगे, हम सब साथ मिलकर के, तुम लोग सिंथेसाइजर सीखना चाहते हो तुम भी सीखो लेकिन उसको भी सिखाओ, तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो मैं स्विमिंग पूल में व्यवस्था बनाऊंगा, हम सब साथ में मिलकर के सीखेंगे। और इन बच्चों की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम सब लोग मिलकर के कर सके, नहीं तो फिर इनको वही होटल पर जाना पड़ेगा, पन्नी बिनना पड़ेगा, तो वो व्यवस्था मैं करूंगा, इनको जितना वेतन मिलेगा उतने वेतन की व्यवस्था मैं समाज से जुटाऊंगा, लेकिन हम सब लोग साथ में मिलकर के गर्मी की छुट्टियां मनाएंगे। तो उस कहानी का शीर्षक था अपनी अपनी छुट्टियां। तो बच्चों को दरअसल इस तरह की सामग्री देने का आशय ये रहता है कि बच्चे इन दिनों इस तरह के संघर्षों से बड़ा दूर होते जा रहे हैं, उनका बाल मनोविज्ञान ऐसा हो गया कि अंधेरे से डरते हैं बच्चे, भूख का उनको अभ्यास ही नहीं है
1: जी।
0: हम लोग इतना ज्यादा बना बना करके बच्चों को खिला रहे हैं कि जो थोड़ा भी मध्यम वर्गीय परिवार है या उससे ऊपर के हैं वो बच्चे पांच तरह की डिश बनती है और एक चखना नहीं चाहते
1: जी।
0: तो उन बच्चों को ये पता होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त समृद्धि हो तब भी अपने बच्चों को थोड़ा सा तो भूख का आभास करवाएं,
1: बिल्कुल
0: उसको जब भूख लगे तब भोजन देना, ऐसा कुछ अभ्यास करवाना चाहिए
1: जी जी।
0: और जहां संघर्ष है उनसे मिलवाने की कोशिश करना चाहिए, तब जाकर के कोई सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध बनता है, उसको पता लगता है कि दुनिया में बीमारी भी होती है, व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, ये सारी जो संघर्ष है जीवन के
1: जी जी जी।
0: उनसे परिचय बच्चों का होता है
1: निश्चित तौर पर, तभी उनको कष्ट का एहसास होगा।
0: हाँ,
1: अब जैसे हम बात करें साहित्य और भारतीय संस्कृति के संबंध के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि साहित्य और भारतीय संस्कृति का गहरा संबंध माना जाता है,
0: बिल्कुल
1: आपके विचार से साहित्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में किस तरह का योगदान दे सकता है?
0: मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर भी मैं बाल साहित्य से ही जोड़ करके दूं और एक उदाहरण के साथ दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने जैसा कहा हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, दरअसल सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये हुई कि अंग्रेजों ने हमारे मन में एक भ्रांति ठूंस दी, उन्होंने कहा कि ये तो जादूगर सपेरों का देश है और हमने उसको मान लिया, हमने उस मुखौटे को ओढ़ करके बड़ा गौरव बोध होने लगा हमको, जबकि वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की इतनी श्रेष्ठतम ज्ञान परंपरा थी कि पूरी दुनिया अगर हमारी ज्ञान परंपरा की मुरीद नहीं होती, अगर उसकी उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखती, तो आखिरकार क्यों वेनसांग यहाँ पर आते, आखिरकार क्यों विश्व के तमाम देशों के जर्मनी के विद्वान आ रहे हैं, मैक्स मुलर आ रहे हैं, इन सब के आने का जो मूल कारण था वो मूल कारण था भारतीय ज्ञान परंपरा। तो मैंने एक कड़वा मुंह मीठी बातें ऐसी एक कहानी लिखी थी। तो दादाजी कहते हैं बच्चों से कि आज नया साल है, तुम लोग जल्दी से नहा करके तैयार हो जाओ। तो बच्चों ने कहा आज कौन सा नया साल है, आज तो मार्च चल रहा है, हमारा तो 31st खूब इंजॉय किया हमने, पार्टी वार्टी हुई थी, केक काटा था। तो कहा नहीं बेटा आज चैत्र प्रतिपदा है
1: जी,
0: हमारा नव वर्ष इसी से शुरू होता है। तो कुल मिलाकर के उस पूरी कहानी में दादाजी बच्चों को तर्क के साथ बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा जनवरी महीना पहला है, लेकिन ये अंग्रेजों ने अपने जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में एक बार नहीं 10-12 बार सुधार किया, और उन सुधारों के कारण से जनवरी फरवरी जो है वो पहले 2 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन तुम बाद के महीनों की अगर उच्चारण के हिसाब से देखो, उन्होंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, मैं सितंबर बोलता हूं तो ये कौन से अंक के बराबर लगता है तुमको? तो बोले दादाजी ये तो सितंबर यानी 7 के बराबर लगता है, अक्टूबर कहा 8 के बराबर, कहा संस्कृत में ये अष्टम होता है, हिंदी में 8 होता है, नवंबर 9 सब मैच करते हैं। उन्होंने कहा इस हिसाब से दिसंबर 10 ये कौन सा महीना हुआ? कहा 10वां। तो फिर 11वां कौन सा हुआ? जनवरी हुआ। 12वां कौन सा हुआ? फरवरी हुआ। तो इसका मतलब नया वर्ष कब शुरू होगा? मार्च में शुरू होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये सूर्य की गणना के अनुसार है। तो उस पूरी कथा

0: अवस्था में कुल मिलाकर के मैंने उन बच्चों को दादाजी के माध्यम से खेलवाया कि बेटा तुम बताओ सबसे छोटी इकाई तुम्हारी कौन सी है। तो कहा दादाजी हमको तो सेकंड के बारे में पता है। उन्होंने कहा तुमको पता है अपने पुरखे जो है वो जो न्यूनतम गणना का उपयोग करते थे, और उसमें बकायदा मैंने उस कहानी में दृष्टता की, उसमें सारे जो इकाइयां है वो दर्शाई कि ये कला विकला पल विपल है ना प्रतिपल, तो ये सारा जब बताया कि ये इसके बराबर होता है ये इसके बराबर होता है। और उन्होंने कहा कि हम लोग सेकंड के 14,00,000वें हिस्से तक को नापते थे, और बड़ी इकाई तो उन्होंने कहा कि प्रकाश वर्ष, उन्होंने कहा प्रकाश वर्ष कुछ भी नहीं है, तुम्हारे प्रकाश वर्ष से 29 करोड़ गुना ज्यादा की इकाई हमारे भारतीय कालगणना में। तो देखते ही देखते बच्चों का सारा मानस बदल जाता है। फिर वो दादाजी धीरे से नीम की पत्ती और मिश्री खिलाते बच्चों को, तो बच्चे मुंह बनाते हैं कि नीम की पत्ती से मुंह कड़वा हो गया। तो दादाजी कहते हैं मजा आया कड़वा हुआ मुंह, तो कहते हैं कि दादाजी कड़वा मुंह तो हुआ लेकिन मीठी बातें सुनने को हमको आज मिली। और पापा मम्मी और सब जो सुन रहे थे उनके लिए भी नयापन था। तो कहानी विस्तृत है, उसमें और कई तथ्य प्रमाण उसमें सम्मिलित किए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो सांस्कृतिक वैज्ञानिकता है इसको हम साहित्य के माध्यम से परोसे। आपके प्रश्न पर आ गया मैं, लेकिन बाल साहित्य के माध्यम से आया कि ये जो साहित्य है ये दरअसल हमारी सांस्कृतिक उदात्तता को बच्चों तक ही नहीं बड़ों तक भी पहुंचाने में सक्षम है। तो बड़े साहित्यकारों को भी लिखना पड़ेगा इस तरह का साहित्य, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी विकास जी, मध्य प्रदेश अकादमी के निदेशक के रूप में आपकी भूमिका जानना चाहेंगे, आपकी भूमिका क्या है और अकादमी के माध्यम से प्रदेश की साहित्यिक गतिविधियों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है?
0: निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य बहुत उज्ज्वल है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृति मंत्री जी दोनों ही इस दिशा में अत्यंत संवेदनशील हैं, और लगातार आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य ईश्वर की कृपा से इतना समृद्ध हुआ है। चूंकि मेरा साहित्य जगत में संपूर्ण भारत भर में जाना आना भी होता है और संपर्क भी है, सब लोग इस बात को खुले स्वर से स्वीकारते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे तो पता लगेगा, सब कहते हैं कि मध्य प्रदेश जितना समृद्ध है इतना समृद्ध परिदृश्य पूरे भारत में कहीं दिखाई नहीं देता।
1: जी
0: एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि भारत भर में इतनी सारी साहित्य अकादमियां हैं, चूंकि साहित्य अकादमी की चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी अलग अलग विधाओं में कृति आधारित जो सम्मान देती है, कृति आधारित उन सम्मानों में जो विविधता है, ये जो विधा वैविध्य है ये आपको पूरे भारत की किसी साहित्य अकादमी में दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी इतनी रेयर विधाओं में भी सम्मान देती है, 1,00,000 रुपए के अखिल भारतीय सम्मान है, 51,000 के प्रादेशिक है, बोलियों के तो है ही है, लेकिन संस्मरण रेखाचित्र जीवनी साहित्य आत्मकथा और इसके साथ साथ संवाद और पटकथा लेखन, इस तरह की विधाओं में भी हम सम्मान देते हैं। तो उपन्यास कहानी कविता केवल ये भर नहीं है, गीत में हम देते हैं, कविता में देते हैं, हम हिंदी गजल में देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समृद्धि है इस समृद्धि के साथ साहित्य अकादमी लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है। और मुझे चूंकि यह तीसरा कार्यकाल मध्य प्रदेश शासन ने सौंपा है तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए संपूर्ण साहित्य जगत को आकाशवाणी के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि दो कार्यकाल में भी लगातार नवाचार किए हैं, और अधिक प्रयास करेंगे कि नवाचारों को और नई दिशा मिले। ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने का जो हमारा प्रयास है, गांव गांव तक साहित्य अकादमी स्वयं पहुंचेगी, ये मैं आश्वस्ति पूरे साहित्य जगत को और आकाशवाणी के श्रोता वर्ग को देना चाहता हूं।
1: जी निश्चित तौर पर हम भी यही उम्मीद करते हैं। विकास जी कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आज की युवा पीढ़ी को साहित्य जीवन और अपने सपनों के संबंध में कोई एक सलाह अगर आप देना चाहेंगे तो वह क्या होगी?
0: मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो युवा मित्रों से मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो भी इस साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं, सामान्यतया साहित्य जो है वो एक तरह से पूजा की तरह हम लोग मानते आए हैं। साहित्य साधना यानी इसको अब युवा पीढ़ी ने ऐसा मान लिया है कि ये अर्निंग का साधन है। तो सबसे पहले तो इसे ये ठीक है कि उसमें से अगर अर्थ प्राप्ति होती है, आपको कहीं पत्र पुष्प मिलता है, कहीं पारिश्रमिक मिलता है, तो वो प्राप्त करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वृत्ति चलाने का साधन यदि आपने बनाया तो फिर वो साहित्य साहित्य नहीं रह जाता है। साहित्य को साहित्य बनाता है उसका सरोकार।
1: जी
0: जब तक सामाजिक सरोकार नहीं है, राष्ट्रीय सरोकार नहीं है, सांस्कृतिक सरोकार नहीं है, तब तक वो साहित्य आपके लिए एक तरह से बिजनेस हो सकता है, वृत्ति हो सकता है, लेकिन वो उस तरह से स्थापित नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए मैं कई बार कहता हूं कि अभी अभी पिछले दिनों अभी बमुश्किल एक या दो सप्ताह पहले हम सब लोगों ने पढ़ा कि पश्चिम जगत के एक तथाकथित लेखक थे, जो नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो लोगों को ये सिखाते थे कि अधिकतम पैसा कैसे कमाएं।
1: जी
0: और ब्रेड के टुकड़ों को प्रतीक बना करके, और उन्होंने कई किताबें लिख दी थी।

0: और ये टुकड़ा तुम्हारा, ये टुकड़ा मेरा करके, और उसके जो भी हिंदी अनुवाद भी हुए, ये जो मोटिवेशनल लेखक थे उन्होंने अंततः आर्थिक रूप से असक्षम हो जाने के कारण से आत्महत्या कर ली। अब आप मुझे बताइए, साहित्य और कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस उम्र में जाकर के जब उस व्यक्ति ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया तब तो वो सुकून से जी रहे थे, लेकिन इतने लोगों को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति खुद यदि आत्महत्या करके मरने लगे तो हमको समझना पड़ेगा कि ऐसे उदाहरण हमको ये सिखाते हैं कि साहित्य को जब आपने वृत्ति बनाया तो उसकी दुर्गति होती है, लेकिन साहित्य को यदि हमने धर्म की तरह पालन किया, यहाँ पर धर्म कोई रिलीजन मذهب पंथ की तरह मैं नहीं उपयोग कर रहा हूँ, ये ना ये हमारे कर्तव्य की तरह जब साहित्य प्रकट होता है तो निश्चित तौर पर इसको यश भी मिलता है और मानसिक आनंद की प्राप्ति भी होती है।
1: जी जी जी निश्चित तौर पर। तो श्रोताओ, आज की इस मुलाकात में हमने डॉक्टर विकास दवे जी के व्यक्तित्व और उनकी साहित्यिक यात्रा के कई पहलुओं को जानने का प्रयास किया। डॉक्टर विकास दवे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया और अपने अनुभवों और विचारों से हमारे श्रोताओं को परिचित कराया, इसके लिए आकाशवाणी भोपाल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी भी साक्षात्कार की सार्थकता दरअसल प्रश्नों से होती है, उत्तर से नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। आपके अच्छे प्रश्नों के उत्तर देने के कारण से यह साक्षात्कार मुझे लगता है कि अच्छा हो पाया, इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आपने भेंट वार्ता सुनी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक एवं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक डॉ. विकास दवे से बातचीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का

0: कौन है?
1: जी मैं पोस्टमैन, आपका पत्र आया है।
0: अच्छा अच्छा, आता हूँ भैया।
1: नमस्ते शर्मा जी।
0: अरे नमस्कार मुरारी भैया। कहो क्या ले आया आज?
1: बस आपका एक पत्र आया है, लीजिए।
0: अच्छा अच्छा, निमंत्रण पत्र है, लाइए। धन्यवाद।
1: अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम ही है।
0: अरे कैसी बात करते हैं, आइए ना, कुछ चाय वगैरह लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत से पत्र बांटने हैं, इसलिए चलता हूँ। और वैसे भी मैं ड्यूटी के वक्त केवल ड्यूटी ही करता हूँ, चाय पीने फिर कभी आ जाऊंगा छुट्टी वाले दिन।
0: अच्छी बात है भैया, जैसी आपकी इच्छा।
1: अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते।
0: नमस्कार।
2: किसका निमंत्रण पत्र आ गया जी?
0: अरे दीवान चंद्र जी श्रीवास्तव का भेजा पत्र है, उनके पुत्र अमर चंद्र श्रीवास्तव की शादी का निमंत्रण है।
2: अच्छा।
0: बारात मानिकपुर से खागा जाएगी अगले शनिवार को।
2: अरे पर ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना, कौन है ये अमर चंद्र श्रीवास्तव?
0: जहाँ तक मुझे याद है, मैं इस नाम के केवल एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, शायद वही होंगे।
2: वही कौन?
0: अरे वही जिनकी कविता स्पुरलिंग अभी कुछ दिन पहले ही देवदर्शन पत्रिका में छपी थी।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ी थी। अरे अरे अरे, बहुत ही जोशीली रचना थी। अरे मैंने यहीं तो कहीं आले में रख दी थी संभाल कर। अच्छा अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। हाँ
0: तुम्हें मालूम है, उस रचना के कारण सरकार ने पत्रिका से 2000 रुपए की जमानत ली।
2: अच्छा।
0: हाँ, अभी ये 2-4 दिन पहले अखबार में समाचार छपा है।
2: अरे ये तो होना ही था, क्योंकि उस कविता में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले शहीदों का गुणगान जो किया गया था।
0: मगर मानना पड़ेगा अमर चंद्र जी को, उनकी लेखनी में गजब का साहस है। ऐसी आग उगलने वाली शब्दावली का प्रयोग हर किसी के बूते की बात नहीं, देशभक्ति के ऐसे भाव कि पढ़कर पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं।
2: हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, ये रही वो पत्रिका। और हाँ इसमें

0: कितनी अच्छी है ना।
1: महात्मा गांधी की
2: जय, भारत माता की
1: जय, महात्मा गांधी की
2: जय,
1: भारत माता की
2: जय।
0: क्या आपको विश्वास है कि ये विवाह आमंत्रण इन्हीं अमरचंद्र श्रीवास्तव का है?
3: विश्वास तो नहीं होता, किंतु आज की परिस्थितियों में जबकि पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो, लोगों में देशभक्ति का ज्वार हिलोरें ले रहा हो और हर कोई स्वेच्छा से जेल जाने के लिए तत्पर हो, ऐसे में एक देशभक्त लेखक विवाह करने का विचार भी कैसे कर सकता है?
0: तो ये और कोई अमरचंद्र श्रीवास्तव तो नहीं है?
3: कह नहीं सकता, परंतु जब मेरा किसी और अमरचंद्र श्रीवास्तव से परिचय ही नहीं तो मुझे विवाह का आमंत्रण वो क्यों भेजने लगे?
0: इसका मतलब तो ये निकला कि इनकी देशभक्ति दिखावा मात्र है।
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण उन्हें ये विवाह करना पड़ रहा हो। खैर, जो भी हो, शादी में जाने पर हर बात साफ हो जाएगी।
0: मगर आपने कभी इनका जिक्र ही नहीं किया, मतलब ये आपसे कब मिले, कहाँ मिले, अरे परिचय कैसे हुआ?
3: मैं इनसे पहली बार शायद बनारस में मिला था।
0: अच्छा।
3: शायद कॉलेज में, और सच कहूँ तो पहली मुलाकात में वो मुझे देवदूत दिखे। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने देवदूत होने का विज्ञापन किया हो, इसलिए भी नहीं कि उनके देवदूत होने के इतने उपकार विश्व पर बिखरे रहे हों कि उन्हें देखकर कोई भी उन्हें देवदूत ही कहता।
0: अच्छा।
3: अरे ऐसे ये बात भी नहीं कि उनके कष्ट सहने उनके शरीर को ऐसा तेजोमय और पारदर्शक बना दिया था कि आंखें चार होते ही देखने वाले की आंखें आंखों पर ठहरने के बजाय उनके चरणों पर ही ठहरें। हाँ।
0: अच्छा।
3: और ये भी नहीं कि अपने चिंतन के चरखे पर हाथ कते, हाथ बुने, वे इतने बारीक डोरे निकालते हैं अनुभव और चिंतन के ताने बाने से बने कि हमारी बुद्धि ललच उठे।
0: अरे क्या थे वो
3: अनुभव की रोमावली फूल उठे और अंतरिक्ष के अंधकार में चलती हुई आंखें अंतश्चेतना और बहिर्प्रकाश पा जाए, ये कुछ भी न था।
0: अरे तो फिर क्या था?
3: केवल एक बात थी, दृश्यवान मानव में मुग्ध को मानने और अपरिमितता का आरोप कर पूजने की जो कमजोरी है, वही मिलने में वंदनीय कहने की जड़ में शायद विद्यमान थी। और इसलिए जब वे आए तो मैंने किसी चिंतक का विचार अपने सामने रखा कि प्रभु आसमान के परे नहीं, वो तो उम्र के परे निवास करता है। और धीरे से मिलाली छाती दूर खड़े खड़े ही।
0: अच्छा, मगर उनमें ऐसी क्या बात थी जिसने आपको इतना प्रभावित किया है?
3: उनका व्यक्तित्व, वो चौड़ा कपाल, लंबी लंबी आंखें।
0: अच्छा।
3: हजामत खूब अच्छी बनी हुई, किंतु आंखों की गंभीरता और आंखों की अस्त व्यस्तता कह रही थी कि अपने ध्रुव पथ में सौंदर्य को पनाह देने के लिए इस व्यक्ति के पास अवकाश नहीं। बातों में सारा बदन वक्ता की ओर, किंतु आंखें दीवार पर उगी घास पर आविष्कारक की तरह कुछ खोजती सी, प्रत्येक शब्द मुस्कुराकर बाहर निकले। हाथ में पंत जी का पल्लव और बाएं हाथ की अनामिका में कीमती पत्थर लगी सोने की अंगूठी, उस दिन की सब बातें जिज्ञासुओं जैसी थी। मैं बोलता गया, वो चुप सुनते रहे।
0: तो क्या बस इतना ही परिचय था आपका उनसे और कुछ नहीं?
3: नहीं नहीं, 3 महीने पश्चात फिर उनसे भेंट हुई।
0: अच्छा।
3: हाँ, मैं अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन के अवसर पर डिग्री का आडंबर लेने आया था। वो भी बीए पास हो गए थे और मेरे समान धर्मार्थी थे।
0: अच्छा।
4: नमस्कार शर्मा जी।
3: अरे नमस्कार श्रीवास्तव जी, नमस्कार। कहिए क्या हाल है?
4: बस सब कुशल मंगल है, कल ही आया हूँ सुबह की ट्रेन से।
3: अच्छा।
4: कन्वोकेशन में बुलाया गया हूँ।
3: ओहो,
4: बीए की डिग्री।

0: जो लेना है पास ही में ठहरा हूँ, राधा रमन धर्मशाला में।
1: अच्छा
0: सोमेश अग्रवाल और महेंद्र कुमार तिवारी भी मेरे साथ ही ठहरे।
1: वो भी अच्छा।
0: अरे धर्मशाला तो अच्छी है मगर वहाँ बिस्तरों का प्रबंध नहीं है।
1: क्यों?
0: रात भर पलंग पर एक दरी बिछाकर सोना पड़ा।
1: अरे
0: खटमल मच्छर भी कम न थे, रात भर खून चूसते रहे, सही ढंग से नींद भी नहीं आई, बस करवटें बदलते रहे, एक तरह से रात्रि जागरण ही हो गया समझो। और बताएं आप कहाँ ठहरे हैं?
1: मैं ये बैरिस्टर रामनंदन तिवारी जी के बंगले पर।
0: अच्छा फिर तो आप आराम से रहे होंगे।
1: आराम से ही है।
0: अरे हाँ याद आया, वो गौरी नंदन विश्वकर्मा को तो आप जानते हैं ना, पिछले दिनों पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
1: अच्छा क्यों?
0: राजद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया है।
1: कहाँ? कौन सी जेल में?
0: ठीक से तो मालूम नहीं पर लोगों का कहना है कि शायद लखनऊ जेल में रखा गया है।
1: अच्छा
0: यूँ वो आदमी अच्छे हैं, देशभक्त भी हैं, परंतु सुना है पत्नी से उनकी नहीं बनती है। सुना है पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है।
1: अच्छा कब?
0: 1 साल हो गया, आपको तो पता होगा।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम।
0: अरे वाह आपके तो घनिष्ठ मित्र थे वो।
1: हाँ हैं पर उनसे मेरा लगभग 1.5 साल से कोई संपर्क ही नहीं हुआ।
0: और वो रत्नाकर त्रिपाठी, वो आपकी बहुत याद करता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: कहता था आपने उसकी सब पुस्तकें रख ली।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
0: मैंने उसे कहा भी कि शर्मा जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, पर वो अपनी बात पर अड़ा था। मक्कार है धूर्त कहीं का, मैं तो जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते।
1: नहीं नहीं जी हरगिज नहीं किया ऐसा।
0: सुना है आपको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है।
1: ये किसने कहा जी आपको?
0: अरे इलाहाबाद में ऐसी चर्चा थी।
1: क्या?
0: पार्टी के बड़े नेताओं को आपकी कर्मठता और देशभक्ति के बारे में कुछ लोगों ने जानकारी दी है, मगर आप अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई।
1: अरे तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए?
0: अरे आप एक बार इलाहाबाद जाकर मधु मंगल जी से मिलिए, वे संगठन मंत्री हैं, एक बार उनसे मिल लेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा।
1: ये मुझसे नहीं होगा, वैसे भी मुझे किसी पदवत की कोई आकांक्षा नहीं है।
0: वैसी आपकी इच्छा।
1: ठीक है
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। अरे बधाई हो सभापति जी, बधाई हो आपको। हाँ
0: जी
1: सुना कि आप यूथ लीग के सभापति निर्वाचित हुए तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमें।
0: आप भी मजाक करेंगे?
1: अरे भाई मजाक कैसा, मुझे तो पता था कि आपकी योग्यता आपको बहुत आगे ले जाएगी, प्रतिष्ठा दिलवाएगी, और फिर कोई आदमी किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो खुशी तो होती ही है ना।
0: अरे भाई ये सब आप जैसे लोगों की शुभकामनाओं का प्रताप है, अन्यथा मेरे जैसे अदना आदमी की क्या दिशा।
1: देखिए आपकी योग्यता किसी से छिपी नहीं है, ये तो उसी योग्यता का परिणाम है।
0: अरे ये सब आप जैसे लोगों की शुभकामनाओं का प्रताप है, अन्यथा मेरे जैसे अदना आदमी की क्या विसार।
1: आपकी योग्यता किसी से छिपी नहीं है साहब, ये उसी योग्यता का परिणाम है।
0: ये तो आपका स्नेह है और सच कहा जाए तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इस लायक समझते हैं। वैसे लोगों ने प्रयास बहुत किए कि मैं इस पद पर ना चुना जाऊं।
1: अच्छा किसने?
0: अरे अब क्या बताऊं, बड़े बड़े दिग्गज मेरे पीछे पड़े थे, राम आधार जी सैनी, शंकर शरण सिंह, वेद प्रकाश सोनी और रेवती रमन अग्निहोत्री जैसे लोगों ने तो अपना पूरा जोर लगा लिया, पर आपका ये मित्र उनकी कारगुजारियों के बावजूद आखिर जीत ही गया। अरे आपकी शुभकामनाओं का प्रताप नहीं तो और क्या है।
1: तो आप भी इनको ठिकाने लगवा दें ताकि इन्हें मालूम पड़ जाए कि आपकी शक्ति भी कम नहीं।
0: नहीं शर्मा जी, आखिर काम तो इन्हीं लोगों के बीच करना है, और फिर ये भी कम ताकतवर लोग नहीं हैं, ऊपर तक पहुंचे इनकी। अब तो भलाई इसी में है कि बीती ताही विसारी के आगे की सुधि ले आई।
1: चलिए अच्छी बात है, ईश्वर करे आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें, मुझे एक आयोजन में भी पहुंचना है।
0: अच्छी बात है, फिर भेंट होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: अरे आइए आइए शर्मा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: अरे ट्रेन के इस डिब्बे में आपका स्वागत है।
1: अरे दूल्हे राजा, कितना सुखद अवसर है कि आपसे ट्रेन में मुलाकात हुई। आज तो आप जच रहे हैं।
0: सचमुच?
1: ये मेहंदी रचे हाथ, हाथों में कटार, उंगलियों में रत्न जड़ी अंगूठियाँ, होठों पर पान की लाली, कजरारे नैन, सिर पर पगड़ी और इत्र की भीनी भीनी खुशबू। सारे साज श्रृंगार आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं।
0: अरे ये तो आपकी स्नेह दृष्टि है, वरना मैं तो साधारण सा दिखने वाला प्राणी हूँ।
1: परंतु आज तो आपका रूप सर्वथा असाधारण लग रहा है।
0: अरे अब छोड़िए जी रूप स्वरूप की प्रशंसा, आइए कुछ और बातें करें।
1: बात कुछ और होगी तब भी तो आपकी प्रशंसा ही करना पड़ेगी ना।
0: मैं आपका मतलब नहीं समझा।
1: अरे भाई पिछले दिनों आपकी रचना स्फुरलिंग पड़ी।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक बहुत अच्छी कविता के लिए आपको बधाई।
0: अरे सब आपकी कृपा है, टूटा फूटा लिख लेता हूँ, ये मुझे आता ही क्या है।
1: वाह क्या हृदय पाया है। कविता मानो वो उमाड़ है जो रोके ना रुके, थमाई ना थमे।
0: अरे आपका बिस्तरा कहाँ है? यहीं इसी डिब्बे के नीचे वाले गद्दे पर आ जाइए ना, रास्ते भर बातें होती रहेंगी।
1: हाँ, अच्छी बात है, मैं अभी ले आता हूँ, उधर रखा है
0: जी।

विवाह में मैं 2 दिन रहा। रोज अखबार देखता। जहां शादी हो रही थी उस गांव में पुलिस ने उसी दिन सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया था।

शादी बहुत धीरे धीरे होती चली जा रही थी। अमरचंद्र औरतों के गीतों और मर्दों के हंसी मजाक में ऐसा रस ले रहे थे मानो वो किसी और लोक के नहीं, सिर्फ इसी लोक के जीव हो। रह रहकर मैं अमरचंद्र से कुछ पूछना चाहता था, किंतु रंग में भंग ना हो इस भय से मैंने कुछ पूछा नहीं। तीसरे दिन मैं चल दिया।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ हाँ मैं यही हूँ, कहिए क्या हुआ?
0: अरे होना क्या है, ये अखबार देखा?
1: कौन सा?
0: यही लोक दर्पण।
1: हाँ हाँ पढ़ा तो है, पर सरसरी नजर से। क्यों, कुछ खास छपा है क्या?
0: खास ही समझो, इसमें कहानी छपी है। वाह क्या कहानी है, एकदम बोलती भाषा, बड़ा आनंदमय प्रवाह।
1: अच्छा,
0: मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाने वाले तरुण का सजीव चित्रण है।
1: अरे
0: पढ़ते पढ़ते मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए।
1: अरे आप तो वैसे ही बहुत भावुक है ना?
0: नहीं, कहानी ही इतनी मार्मिक है। और पता है किसकी लिखी है ये?
1: किसकी?
0: अमरचंद श्रीवास्तव की।
1: अरे ये वही अमरचंद्र जी जिनकी शादी में आप गए थे?
0: हाँ वही। पर कुछ भी कहो, उनकी लेखनी में दम तो है।
1: अरे क्यों ना होगी, सिद्धहस्त लेखक जो हैं वो।
0: खैर अच्छा सुनो, मेरा सामान तैयार कर दूँ।
1: क्यों भाई, क्या फिर किसी शादी में जाना है?
0: नहीं शादी में नहीं, एक मुकदमे की पैरवी करने शहर जाना है।
1: जब से आपने वकालत पास की है ना, घर में तो आपका पांव टिकता ही नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन ही शहर भागते हो।
0: क्या करूं, आखिर अदालत तो शहर में ही है ना, जाना तो पड़ेगा।
1: अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी, जाइए।
2: ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए।
3: मिलॉर्ड, ये पहला केस है गवर्नमेंट वर्सेस रोशनलाल। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी माल असबाब से भरी मोटर गाड़ी को लूटा है।
2: सरकारी वकील को कुछ कहना है?
4: मिलॉर्ड, रोशनलाल वल द्वारिका दास ने 21-22 जून की दरमियानी रात में रामपुर और किशनपुर के बीच घात लगाकर सरकारी माल असबाब ले जा रही मोटर गाड़ी पर हमला किया और ड्राइवर सहित 2 पुलिस कांस्टेबलों को गोली मारकर घायल कर दिया और सारा माल लूट ले गए। मिलॉर्ड, मैं इस वाक्य के चश्मदीद गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ।
2: इजाजत है।
5: गवाह नंबर 1 सुदामा प्रसाद वल रामलाल हाजिर हो।
4: हाँ तो सुदामा प्रसाद, गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।
6: मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
4: हाँ तो सुदामा प्रसाद, बताइए इस केस के बारे में आप क्या जानते हैं?
6: जी मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता।
4: क्या क्या आपने अभियुक्त को ट्रेन लूटते हुए नहीं देखा?
6: जी नहीं।
4: इसने 2 पुलिस वालों को गोली से घायल किया, क्या ये भी आपने नहीं देखा?
6: जी नहीं। जी मुझे तो मालूम ही नहीं। मिलॉर्ड, वकील साहिबा से ही मुझे ये नई जानकारियां मिल रही हैं। मिलॉर्ड, रोशन लाल तो देशभक्त युवक है हुजूर।
4: मिलॉर्ड, ये गवाह सच बोलने से मुकर रहा है, इसे पक्षद्रोही घोषित करने की आज्ञा चाहती हूँ।
2: इजाजत है।
4: मिलॉर्ड, अब मैं इस केस के एक और गवाह अमरचंद्र वल दीवान चंद्र को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ।
2: इजाजत है।
5: अमर चंद्र वल दीवान चंद्र श्रीवास्तव हाजिर हो।
4: हाँ तो अमर चंद्र जी, बताइए आप इस केस और मुलजिम रोशन लाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
7: मिलॉर्ड, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं और मेरे पिता और मेरे श्वसुर, हम सभी परम राजभक्त हैं। मेरे विचार से षड्यंत्र बड़ी बुरी चीज है। मैं षड्यंत्रकारियों को जानता हूँ, मैंने उनके पास पिस्तौल भी देखी थी।
2: ऑर्डर ऑर्डर,
7: रोशनलाल मेरे यहाँ आता जाता था, मैंने उसे मना भी किया था पर वो नहीं माना। मुझे पता चल गया था कि वो गुनाह करने पर उतारू है, इसलिए मैंने ही पुलिस को उसकी सूचना दी थी।
4: मिलॉर्ड, सरकारी गवाह ने हर बात साफ कर दी है, अब मुलजिम के वकील चाहें तो उससे जिरह कर सकते हैं।
2: मुलजिम के वकील को जिरह की इजाजत है।
0: धन्यवाद मिलॉर्ड। हाँ तो श्रीमान अमरचंद्र जी, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगे सच सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे।
7: मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा और सच के सिवा
8: अरे ये क्या, ये गोली किसने चलाई? पकड़ो उसे, पकड़ो फौरन, और गवाह को अस्पताल ले जाओ, जल्दी करो। अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है।

0: भाइयों, अमरचंद जी श्रीवास्तव एक देशभक्त और परम स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मैं भी उन्हें बचपन से जानता था। यूथ लीग के सभापति और दूसरे प्रमुख पदों पर रहते हुए उन्होंने जो देश सेवा की वो हमेशा याद रखी जाएगी। ये बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि जब वो अदालत में गवाही दे रहे थे, तभी अदालत की कार्रवाई देख रहे उनके चचेरे भाई गोपाल चंद ने ही उन्हें गोली मार दी, जिससे उनका प्राणांत हो गया। चूंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, कानून सजा देगा ही। पर फिर भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और अब अंत में मैं शोक सभा के सभापति माननीय श्री शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मृत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
1: भाइयों, दिवंगत अमरचंद श्रीवास्तव मेरे अच्छे मित्र थे। वे शिक्षक तो थे ही, एक अच्छे नेता और एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। मेरा मानना है कि कला जीवन से अपना अनुवाद मांगती है। जो दे सकते हैं उन्हीं की जीवन छाया इतिहास के नाम से तिथि ग्रंथों में और प्रेरणा के नाम से कृति ग्रंथों में पड़ी रह जाती है। मेरी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 8वां एपिसोड। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजे।

0: अमली के साथ रील नहीं है।
1: नमस्कार, नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के पांच बजे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर भोपाल की निशानेबाज आशी चौकसे और उनकी टीम को बधाई देते हुए इसे देश का गौरव बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप जारी करते हुए इसे समृद्ध और विकसित भोपाल की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मास्टर प्लान भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्रों के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, उन्हें एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील और नर्मदा, ताप्ती व बेतवा नदियों पर श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान जताया है और शहडोल में स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना के तहत 8 साल पहले मिले पट्टों की निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया में शहडोल जिले की प्रगति शून्य बनी हुई है। इस पर शहडोल कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने नाराजगी जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडियम वेब डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। अब प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे पर्यटन के विषय में। साथ ही आज हम बात करेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में और होंगी कुछ अन्य जानकारियाँ, सुनवाएंगे कुछ गीत भी। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन में पर्यटन का महत्व बहुत ज्यादा है। ये केवल मनोरंजन या घूमने फिरने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच पर्यटन हमें नई ऊर्जा देता है। तो चलिए अब पर्यटन के बहुआयामी महत्व को समझते हैं। ये हमें मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से मुक्ति दिलाता है। रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी और काम के दबाव से दूर होकर जब हम नई जगहों पर जाते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। प्रकृति के करीब समय बिताने से अवसाद कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही ज्ञान और शिक्षा का भी विस्तार होता है। किताबों में पढ़ी गई ऐतिहासिक इमारतों, भौगोलिक संरचनाओं और संस्कृतियों को जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो वो ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। नए लोगों से मिलने और उनकी जीवन शैली को देखने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक और उदार बनता है। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और एकता भी बढ़ती है। पर्यटन हमें अलग अलग धर्मों, भाषाओं, खान पान और त्योहारों को समझने का अवसर देता है, जिससे समाज में सहिष्णुता और भाईचारा बढ़ता है। ये विभिन्न देशों और राज्यों के लोगों के बीच की दूरियों को मिटाकर आपसी समझ को बेहतर बनाता है। इससे आर्थिक विकास होता है और रोजगार का सृजन भी होता है। दोस्तों, पर्यटन उद्योग दुनिया भर में रोजगार जैसे होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया है। पर्यटकों द्वारा खर्च किए गए पैसे से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सरकार को टैक्स के रूप में बड़ी आय प्राप्त होती है। जब किसी स्थान पर पर्यटक आते हैं तो सरकार और स्थानीय प्रशासन उस ऐतिहासिक स्मारक, नेशनल पार्क या प्राचीन मंदिर के रखरखाव पर विशेष ध्यान देते हैं। स्थानीय कला, लोक नृत्य और लुप्त हो रही परंपराओं को पर्यटकों के सामने प्रदर्शित करने से उन्हें नया जीवन मिलता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत शान की आवाज में, प्यार में कभी कभी फिल्म से।

दोस्तों, अब हम जानेंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ के शुरुआती बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के आधिकारिक विवरण के अनुसार 2023 तक कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने की योजना है, जैसे उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, सालाना लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना। दोस्तों, जब नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो उससे निकलने वाली हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि इसके उत्पादन और उपयोग में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में, आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से।

0: दोस्तों, भला घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होगा। हमें जब भी समय मिलता है या जब भी हम अपने काम से फ्री होते हैं या हम छुट्टियों पर होते हैं तो हमें घूमने की इच्छा जरूर होती है। तो आइए आज हम रीवा जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं युवा श्रोता राजा त्रिपाठी से।
1: मैं राजा त्रिपाठी जिला रीवा से हूँ और मैं आज जिला रीवा के पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगा। हमारा जिला रीवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक किलों और शानदार जलप्रपातों के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। रीवा को जलप्रपातों का जिला भी कहा जाता है। यहाँ कई खूबसूरत झरने हैं, जैसे बहुती जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। इनमें से बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ एक ऐतिहासिक किला रीवा का किला भी है, जो रीवा के राजाओं की शान और वास्तुकला का प्रतीक है। यहाँ मौर्य काल से जुड़ा एक प्राचीन बौद्ध पुरातात्विक स्थल देउर कोठार है, जहाँ बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है। गोविंदगढ़ महल और झील, वेंकट भवन, यह एक शानदार ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी है। रीवा की सीमा से सटे मुकुंदपुर में विश्व की पहली सफेद बाघ सफारी स्थित है। यहाँ आप सफेद बाघ के साथ साथ अन्य जानवरों को भी देख सकते हैं। रीवा जिले में ऐतिहासिक रानी तालाब है, जिसके किनारे प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है। रीवा किले के अंदर भगवान शिव का महामृत्युंजय मंदिर है। यह मंदिर देश भर में अनोखा है। तो साथियों, रीवा जिले में बहुत से पर्यटन स्थल हैं जहां आप सैर कर सकते हैं और प्रकृति के साथ साथ कुछ समय बिता सकते हैं। बस ध्यान रहे कि पर्यटन स्थलों में गंदगी न फैलाएं, जैसे स्नैक्स, चिप्स की पैकेट खुले में न फेंकें, डस्टबिन का प्रयोग करें, वन्य जीवों और पेड़ पौधों के साथ छेड़खानी न करें। धन्यवाद
0: दोस्तों। अब सुनते हैं ये गीत हमारी अधूरी कहानी फिल्म से अमी मिश्रा की आवाज में।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे कर्नाटक की याना गुफाओं के बारे में। ये गुफाएं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट के घने और सदाबहार जंगलों के बीच स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और रहस्यमयी प्राकृतिक धरोहर हैं। ये स्थान अपने विशाल और अजीबोगरीब काली क्रिस्टलीय चूना पत्थर की चट्टानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल भी घोषित किया है। यहाँ दो सबसे प्रमुख और विशाल चट्टाने हैं जो जंगल के बीच आसमान छूती नजर आती हैं, भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर। भैरवेश्वर शिखर के नीचे एक गुफा मंदिर है जहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के ऊपर छत से प्राकृतिक रूप से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जिसे देखना बेहद अद्भुत अनुभव होता है। प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए ये एक आदर्श जगह है। मुख्य गुफाओं तक पहुँचने के लिए घने जंगलों, छोटे झरनों, खूबसूरत रास्तों से होकर लगभग 2 से 3 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रेक करना पड़ता है। यहाँ घूमने के लिए अक्टूबर से जनवरी के बीच का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम सुहावना और जंगल पूरी तरह से हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दौरान भी यहाँ बहुत बड़ा उत्सव और रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत गुमनाम फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvairiva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स,

0: अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोतो, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना बाजीगर फिल्म का गीत पंकज उदास की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने और संगीत था अनु मलिक का। अब आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत कसूर फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोतो, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फना फिल्म से, जिसे गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। प्रसून जोशी की शब्द रचना है और संगीत है जतिन ललित का।

दिल क्या करे इस फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं, रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म का गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है हैरिस जयराज ने।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप जारी करते हुए इसे समृद्ध और विकसित भोपाल की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मास्टर प्लान भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्रों के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील, नर्मदा, ताप्ती और बेतवा नदियों पर श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण किया। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अपना आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने और संगीत से सवारा था नदीम शिवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने, कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं फैज अनवर ने और संगीत है नदीम शिवण का। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

अभी आपने सुना पद्मावत फिल्म का गीत। शिवम पाठक, मुस्तवा अजीज नाजा, कुणाल पंडित और फरहान सबरी की आवाज में। गीत लिखा था एएम तुराज ने और धुन बनाई थी संजय लीला भंसाली ने। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है संघर्ष फिल्म से, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रद्धा पंडित ने। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है साजन फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। इसको संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है विकास दर्शन का प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: प्रिय मित्रों, जब कभी आप भविष्य के बारे में सोचते हो और किसी काम को आरंभ करने का

प्रयास करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या भविष्य को लेकर आपके अंदर एक डर होता है? भविष्य के बारे में सोचते समय हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है, और वो सवाल ये होता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अक्सर परीक्षा से पहले यही डर छात्र और छात्राओं के मन में होता है। अक्सर इंटरव्यू से पहले बहुत से युवाओं में भी यही डर देखने को मिलता है। कई बार नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों के मन में भी इसी प्रकार नया व्यापार या कोई नया कार्य करने से पहले डर लोगों के जीवन में पाया जाता है। यही डर कई बार हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम किसी नए काम को शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम सफल नहीं होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम असफलता का डर और आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे और कैसे हम असफलता के डर पर विजय पा सकते हैं और अपने जीवन में आत्मविश्वास को लेकर चल सकते हैं, इसी के विषय में हम बात करेंगे। मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचते हैं कि जीवन में आने वाली असफलताएं हमारे भविष्य को नष्ट कर रही हैं? क्या इसी कारण आपको भविष्य का डर सता रहा है? क्या आपके जीवन की असफलता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है? तो आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसने अपनी असफलता को अपनी सफलता का एक कारण बना लिया था। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, उनका जन्म 17 फरवरी 1963 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय शिकागो बुल्स के लिए खेलते हुए बिताया और अपनी मेहनत, अनुशासन, लगन, भावना और असाधारण प्रतिभा के कारण बास्केटबॉल की दुनिया में एक महान नाम बनाया। माइकल जॉर्डन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैं लगभग 300 मैच हार चुका हूं। 26 बार मुझे मैच जिताने वाला अंतिम शॉट लेने का भरोसा दिया गया, लेकिन मैं चूक गया। मैंने अपने जीवन में बार बार और बार बार असफलता का सामना किया है और यही कारण है कि मैं आज एक सफल खिलाड़ी हूं। माइकल जॉर्डन की सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके शुरुआती जीवन में भी ऐसी घटनाएं थी जिनसे उन्हें निराशा मिली। हाई स्कूल में वे टीम में चुने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अंतिम असफलता नहीं माना। उन्होंने अभ्यास जारी रखा और अपने खेल को बेहतर बनाया। बाद में वो कॉलेज और फिर जिस टीम से उन्होंने भविष्य में खेलना शुरू किया उसके द्वारा वो महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। प्रिय श्रोताओं, असफलता का डर हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने और आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमारे मन में कोई डर नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद हमें विश्वास हो

का सामना किया है। उसने कई बार असफल होकर भी अभ्यास जारी रखा है। उसकी सैकड़ों और हजारों अभ्यास प्रतिक्रियाओं में कई बार गलतियां और असफलताएं हुई होंगी, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा और फिर से प्रयास किया। इन्हीं अनुभवों ने धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास पैदा किया कि डर के बावजूद वह अपना काम कर सकता है। यही आत्मविश्वास है। इसी तरह एक पेशेवर सिंगर को भी हम मंच पर हजारों लोगों के सामने गीत गाते या बजाते हुए देखते हैं। कई कलाकार वर्षों तक मंच पर प्रदर्शन करने के बाद भी घबराहट और डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के कारण पीछे नहीं हटते। वे डर के बावजूद मंच पर जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। बार बार ऐसा करने से उन्हें यह अनुभव होता है कि मैं डर को सह सकता हूं और फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। यही अनुभव धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको अपने जीवन में किसी भी काम को करने का डर लग रहा है और यदि आपने उस काम को करते हुए अपने जीवन में कई बार असफलताओं को प्राप्त किया है, तो आप ये ना सोचें कि आपका भविष्य नष्ट हो गया है, बल्कि उन असफलताओं के कारण ही आप एक ना एक दिन जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास कोई ऐसी भावना नहीं है जो हमें अचानक मिल जाती है। यह अनुभव, अभ्यास, असफलता और बार बार प्रयास करने से विकसित होता है। जब हम असफल होने के डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि हम भविष्य की चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए असफलता से मत डरिए, डर के बावजूद कदम उठाएं, गलतियों से सीखें और फिर से प्रयास करें। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाएगा। कुछ लोग इसलिए सफल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे अपने आप को दूसरों के सामने साबित करना चाहते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि वे असफल हुए तो उन्हें लोग कमजोर या असफल समझेंगे, इसलिए उनकी सफलता के पीछे डर और असुरक्षा होती है। इसलिए दूसरी ओर आत्मविश्वासी लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं क्योंकि वे अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जानते हैं कि असफलता भी सिखाने का एक हिस्सा है, इसलिए वे अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते जाते हैं।

0: नहीं हार के।
1: प्रिय श्रोताओ, सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितना हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हम सफलता के पीछे किस भावना और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए अपना कमरा नहीं था और जो कभी कभी दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता था, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, वही व्यक्ति बाद में ऐसी तकनीक बनाएगा जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी। और क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, वही कुछ वर्षों के बाद वापस लौटकर उस कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल के सह संस्थापक थे। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए। वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारत आए थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों की यात्राएं की और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित हुए। भारत से लौटने के बाद उनकी सोच में काफी बदलाव आया। उन्होंने जीवन को केवल धन और भौतिक सफलता के दृष्टिकोण से नहीं देखा, उनके लिए सरलता, अनुभव और जीवन के गहरे अर्थ भी महत्वपूर्ण हो गए। बाद के वर्षों में उन्होंने आध्यात्मिकता और जो उनके पास अंतर्ज्ञान था उसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण माना। स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई। वॉजनियाक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने में बहुत प्रभावशाली थे। जॉब्स तकनीकी को समझने के साथ साथ ये सोचने में माहिर थे कि किस तकनीक को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। दोनों की प्रतिभाएं एक दूसरे से अलग थी, लेकिन एक दूसरे के पूरक थी। वॉजनियाक मशीन बना सकते थे, जॉब्स उनमें एक बड़ा अवसर देख सकते थे। यहीं से एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। 1976 में जॉब स्टीव वॉजनियाक और

रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत किसी बड़ी फैक्ट्री या शानदार ऑफिस से नहीं हुई, उन्होंने जॉब्स के परिवार के घर के गैरेज से काम शुरू किया। उनका पहला महत्वपूर्ण उत्पादक था एप्पल। यह आज के आधुनिक कंप्यूटर जैसा नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्तिगत कंप्यूटर था जिसे लोग खरीद कर इस्तेमाल कर सकते थे। स्टीव जॉब्स का स्वभाव बहुत दृढ़ था। वे अपने विचारों को लेकर बेहद जुनूनी थे और अपने उत्पादों के बारे में बहुत ऊंची अपेक्षाएं रखते थे। आखिरकार 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया गया। जिस कंपनी को आपने खुद शुरू किया, जिसके लिए आपने अपना जीवन लगा दिया, उसी कंपनी से आपको निकाल दिया जाए। स्टीव जॉब्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने बाद में कहा भी कि एप्पल से निकाला जाना उनके जीवन की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था, लेकिन यही घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक नया अध्याय बन गई। असफलता के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा उससे भागना नहीं है। 1990 के दशक में एप्पल कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। एप्पल ने 1985 में नेक्स्ट को खरीद लिया। इसके साथ ही स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए। यहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा कमबैक था। जिस कंपनी से उन्हें कभी निकाल दिया गया था, उसी कंपनी में उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने एप्पल को पूरी तरह बदलने का काम शुरू किया और उन्होंने इस काम को कर भी दिखाया। प्रिय मित्रों, असफलता हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट तो बन सकती है, लेकिन हमें उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ना होता है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।

0: तो अब प्रश्न ये है कि असफलता के डर पर काबू पाने के लिए हम क्या करें। प्रिय मित्रों, असफलता के डर को समझना जरूरी है, लेकिन केवल समझना ही काफी नहीं है। आत्मविश्वास और मजबूती के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना और लगातार अभ्यास करना जरूरी है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में किताबें पढ़ने से शरीर अपने आप में मजबूत नहीं होता, वैसे ही मनोविज्ञान को समझने से आत्मविश्वास अपने आप नहीं बढ़ता है। हमें धीरे धीरे ऐसी आदतें विकसित करनी होती हैं जो हमारे दिमाग को ये सिखाए कि डर और चिंता खतरा नहीं है। तो सबसे पहली चीज, डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करें। जी हाँ दोस्तों, जब आपको डर या चिंता महसूस हो तो खुद से कहें, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये सामान्य है। डर लगना गलत नहीं है, मैं डर के बावजूद ये काम कर सकता हूं। दूसरी चीज, कोई नया शौक सीखें। ऐसा कोई काम शुरू करें जिसमें आप पहले से अच्छे नहीं थे, जैसे कि कोई नया खेल खेलना सीखें, खाना बनाना सीखें, संगीत या गीत गाना सीखें, नृत्य करना सीखें, साइकिलिंग या फिर कोई और काम जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, उस कार्य को करने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य सफल होना नहीं, बल्कि गलतियां करने और असफल होने को स्वीकार करना सिखाना है। जब हम किसी नए काम में शुरुआत करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, इससे हमें सीखने का अवसर मिलता है कि असफल होना बुरी बात नहीं है। तीसरी चीज, हमें अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करना चाहिए। कई लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने या दूसरों के सामने कमजोर दिखने का डर होता है। यह डर से प्रेरित जीवन है। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे ईमानदारी, साहस, प्रेम, सेवा, अनुशासन और करुणा। तो दोस्तों, असफलता के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा उससे भागना नहीं है, डर को स्वीकार करें, कठिन काम करने का अभ्यास करें और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। धीरे धीरे आपका डर कमजोर होता जाएगा और आप आत्मविश्वास में मजबूत होते जाएंगे।
1: आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। प्रायोजक थे विकास दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को रुदाली फिल्म में गुलजार का गीत था और धुन बनाई थी भूपेन हजारिका ने। पुनः सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लेकिन फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सवार है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक,
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी मध्य

0: प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और विलावन किसान संथल कुमार की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, आइए सबसे पहले आपको आज शाम की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम बता दें। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 7:30 पर। रात्रि 8 होगा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात्रि 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात्रि 10 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही सुनेगा एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। रात्रि 10:20 पर आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले विशेष आकर्षण बता दें। सबसे पहले आइए आपको आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें। भीने भीने मौसम में आपकी चाय की चुस्कियों में रस घोलने को हम लेकर आते हैं हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसे आप सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:30 पर। सुबह 10 वक्त होगा जिले की चिट्ठी का। 10:05 पर सुनिए सामुदायिक गान शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 10:30 पर। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आपको बता दें। कल सुबह 11 सुने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। दिन में 12 होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। दिन में 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 9वां भाग। महिला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1 प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। दिन में 1:35 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से होंगे। दोपहर 2 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 2:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। शाम 5 सुनिए युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, शाम 6, रात्रि 8 और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत शाम 7:30 से सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। कल का विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार नीमा। आप अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट करें 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। डगर विकास की ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल रात्रि 8:15 पर। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 10 आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। और रात्रि 10:20 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारे

0: अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत कल देशवासियों को करेंगे संबोधित। भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया विकास का आधार। सेवा संकल्प अभियान के तहत झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने छात्राओं को दी करियर सलाह। और मध्य प्रदेश की आशी चौकसे को एशियन गेम्स में मिला रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस दिशा में कदम उठाए गए जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए।
4: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
3: भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह योजना भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्र जैसे प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक विकास के अवसर देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में हरित TDR का प्रावधान है, जिससे हरित क्षेत्र की भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति और विकासकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा 2026 के तहत पुरस्कार वितरण समारोह और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन नर्मदा क्लब ऑडिटोरियम हबीबगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंकज त्यागी, मंडल रेल प्रबंधक भोपाल, सीनियर DCM सौरभ कटारिया और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का लोक शिक्षण संचालनालय DPI इन दिनों प्रमुख प्रयासों और नवाचारों का केंद्र बना हुआ

0: किया है। करीब 10 वर्षों से लंबित 600 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति महज 48 घंटे में पूरी कर ली गई। डीपीआई आयुक्त अभिषेक सिंह ने स्वयं प्रतिदिन सुबह 9:30 पर कार्यालय पहुंचकर ई अटेंडेंस दर्ज करने की अनूठी पहल की, जिसके सकारात्मक असर से आज प्रदेश के 99% शिक्षक नियमित रूप से डिजिटल हाजिरी लगा रहे हैं। ऑन द स्पॉट सुनवाई के तहत आयुक्त सीधे 15 मिनट में समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। अभिषेक सिंह के अनुसार सरकारी स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन भाषा और AI पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। 4000 शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल कक्षाओं में वापस भेजा गया है। विभाग द्वारा हाल ही में 14000 से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्ति पूरी की गई है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने छात्राओं को रुचि व क्षमता के आधार पर करियर चुनने की सलाह दी। रीवा में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, वहीं ग्वालियर के अंबेडकर पॉलिटेक्निक में चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हुई। नीमच जिले के कुक्कड़ेश्वर व जावद के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के विकास पर चर्चा हुई। बैतूल में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने पौधारोपण किया। मंदसौर की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया और सांसद बंशीलाल गुर्जर ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उधर बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पौधारोपण कर ग्रामीणों और हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने आंगनवाड़ी में बच्चों को फल और मिठाई बांटी। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में लोगों को हेलमेट बांटे गए। छिंदवाड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्वच्छ भारत और नशा मुक्त समाज विषय पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। गुना में मेरे सपनों का भारत प्रतियोगिता हुई। रायसेन जिले में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में सीहोर जिले के बुधनी में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वोकल से लोकल का सबसे सटीक उदाहरण है सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना उद्योग। बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के जिला महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि
3: बुधनी के जो परंपरागत शिल्पी है उनके द्वारा दूधी लकड़ी से खिलौने का निर्माण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है। उनके लिए शासन ने एक खिलौने क्लस्टर का बुधनी में निर्माण किया क्योंकि हमारे जो परंपरा का शिल्पी हैं एक ही जगह सभी लोग आए जिससे कि इनको बड़ा मार्केट मिलेगा।
2: ये उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ की विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियां इस कला को आगे बढ़ा रही है।
4: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
5: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
0: भोपाल के संत निरंकारी संत सत्संग भवन संत हिरदाराम नगर में शनिवार को शासकीय हमीदिया ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित शिविर में एक दिन में 518 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बात खेल की। एशियन गेम्स 2026 की महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में भोपाल की आशी चौक से तिलोत्तमा सेन और वृदशा विनोद कोचलू मकल ने रजत पदक जीता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निशानेबाजी में मिला ये पदक युवा खिलाड़ियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को लगातार मिल रही इन ऐतिहासिक उपलब्धियों से संपूर्ण देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मंडला, डिंडोरी तेज बारिश वाले जिलों में शामिल रहे। मौसम विभाग ने दतिया, भिंड, सीधी, रीवा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर जिले के आंतरी में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में 300 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। खंडवा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों में 417 हाई रिस्क गर्भवतियों को परामर्श दिया गया। मुरैना जिले के जौरा के गुना, चंबल और खांडोली में आयोजित कार्यशाला में ग्रामीणों को HIV एड्स से बचाव के उपायों और जांच की जानकारी दी गई। शहडोल जिले में बीते 48 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के चलते बाणसागर बांध के 12 गेट खोले गए और मंडला जिले के नैनपुर के हीरापुर गांव में गणेश पंडाल हादसे में हुए 4 युवकों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक सपनों को, दें हम आकार।
1: आकाशवाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
0: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी भयन खो सभी बहन खो आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच गए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुए। सो देखो आज बहुत सारी बातें आपसे करने हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप सिंचाई की और स्प्रिंकलर से सिंचाई प्रणाली की। भैया बहना हरो, लगातार होत पानी की कमी और बढ़त भई खेती की लगत से ई दौर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली किसानन के लाने वरदान साबित हो रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली आधुनिक कृषि के लाने कम पानी में अधिक पैदावार सुनिश्चित करत है। ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधन की जड़न में जात है, जिसे 60 से लेकर 70% तक को पानी बच जात है। उतने खरपतवार भी कम उगत है और खाद भी सीधे जड़न तक पहुँचत है। सो जो प्रणाली फलदार सब्जियों बाग बगीचों कतार में बोई जावे वाली फसलन के लाने सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पौधन के बीच की खाली जगह सूखी रहत है, जिसे खरपतवार बहुत ही कम उगत है। पौधन को नियंत्रित नमी मिलवे से पैदावार बढ़ जात है, माने पैदावार में वृद्धि हो जात है। दूसरी बात, स्प्रिंकलर प्रणाली बारिश की तरह फब्बारे के रूप में पानी देत है, जो गेहूं चना सोयाबीन जैसी फसलन में असमतल जमीन के लाने भी बेहद उपयोगी है। इसे उबड़ खाबड़ और ढलान वाली जमीन पर भी आसानी से खेती करी जा सकत है और इसे पूरे खेत में एक समान सिंचाई होत है और जमीन की उर्वरता भी बनी रहत है, जो वर्षा की तरह पानी को छिड़काव करत है, जिसे खेत के हर हिस्सा में पानी समान रूप से पहुंच जात है। इन दो प्रणालियों से बिजली की बचत होत है, कम मजदूरी लगत है और पैदावार में वृद्धि सोई हो जात है और सरकार इन पे 70% तक की सब्सिडी सोई देत है, जैसे जे कम लागत में ज्यादा मुनाफा देवे वाली आधुनिक खेती की सबसे अच्छी विधियां हैं। ई के पाइप और नोजल बहुत ही हल्के होते हैं, जिन्हें एक खेत से दूसरे खेत में जल्दी से लेके जा सकत है। सो जो तो हती बातचीत और ई के अलावा भी आज हम अपरन के लाने बड़ी ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। देखो काहे के पारंपरिक फसलन की तुलना में फूलन की खेती माने फ्लोरी कल्चर किसानन को कम लागत और कम समय में कई गुना अधिक आर्थिक मुनाफा दे सकत है और गेंदा और गुलदावदी जैसी फसलें मात्र 60 से लेकर 70 दिन में तुड़ाई के लाने तैयार हो जाते हैं। पारंपरिक गेहूं और धान की तुलना में जे फूलन की खेती प्रति एकड़ बहुत ही ज्यादा कमाई को साधन बन सकते है। सो चलो ई के संबंध में अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो भेंट वार्ता, किसान फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कमाए, विशेषज्ञ है डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा। इनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों से आय कमाने के लिए हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर सीखकर आप बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। बात हम अगर फूलों की करें तो फूलों की मांग हमेशा बाजार में रहती है और ऐसे में किसान अगर फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ, हमारा आज का विषय भी यही है, फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कैसे कमाएं। वर्तमान समय में फूलों की खेती को लेकर बहुत सारे शोध किए गए हैं, बहुत सारे नए नए तरीके निकाले गए हैं जिनसे कि किसान अधिक

से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा जी, जो कि सहायक निदेशक हैं उद्यानिकी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती की,

0: उस दौर में है कि हम परंपरागत और तकनीकी जो खेती है उसके बीच में हम कैसे एक सेतु बनाए, कैसे उनमें आपस में संबंध बनाए, वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। तो ये जो फूल है ये एक विकल्प के रूप में हमारे पास है कि इसकी खेती करके हम निश्चित रूप से जो परंपरागत हमारी चीजें हैं और हमारी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनके दोनों के बीच में हम लोग एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा कि विदित है कि जो पुष्प की अभिलाषा हमारे जो रेखांकित की है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी
1: जी
0: जी ने,
1: जी
0: कि जो पुष्प की जो अभिलाषा है तो उसको कहीं ना कहीं यदि हमारे किसान भाई भी पुष्प की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आज के परिवेश में, क्योंकि आज का जो दौर है वो सीमित ना रहकर वैकल्पिक विश्व के रूप में उभर कर आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो पुष्प की खेती है किसान के लिए लाभदायक है।
1: हम बात करते हैं जैसे फूलों की, जब खेती की बात होती है तो निश्चित ही आज बहुत मांग है खेतों में फूलों, माफ कीजिए, आज बहुत मांग है फूलों की। पर अगर फूलों की खेती से किसान की आर्थिक प्रगति को अगर हम देखें, उसकी प्रगति कैसे संभव है?
0: देखिए, हम इसको वृद्ध रूप में यदि देखें वर्तमान समय में, तो सबसे जो महत्वपूर्ण आज खेती का जो स्वरूप बदला है तो हमें उसकी उपयोगिता देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो फसल लगा रहे हैं, उसकी मांग क्या है। तो हम पुष्प को कई रूप में देख सकते हैं कि इसकी जो मांग है वो हमारे स्थानीय स्तर से लेके हमारे वैश्विक स्तर तक कहाँ कहाँ पर है। तो इसके हम उपयोग यदि देखते हैं, नंबर एक तो जैसे हम बात करते हैं कि जो फूलों की खेती है ये अधिक मुनाफा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, फूलों की खेती जो सामान्य फसलें हैं उनसे लगभग 3 से 4 गुना अधिक जो है लाभ किसान भाइयों को प्रदान करती है। इसी तरह हमारी जो फूलों की फसलें होती है ये कम अवधि की फसलें होती है। कम अवधि की फसलें होने से हम साल में अधिक से अधिक फसलें एक खेत से ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो भूमि के आकार छोटे होते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे एक विकल्प के रूप में। इसी तरह हमारे रोजगार के अवसर, फूलों की यदि खेती करते हैं तो ये रोजगार के अवसरों का विसर्जन करती है, क्योंकि इसमें पैकिंग और कटिंग्स, हार्डनिंग्स बहुत प्रोसेस रहती हैं फूलों की खेती में। और अब हम देखते हैं कि हमारे जो समय में है धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यदि देखते हैं तो धार्मिक पर्यटन की यदि बात करते हैं तो जैसे मैं उज्जैन की बात करता हूँ, ओरछा की बात करता हूँ, और भी जो दूसरे हमारे पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा महत्व होता जा रहा है। तो उसमें वर्ष भर जो फूल हैं उनकी मांग बनी रहती है। ऐसे में यदि हम देखें तो फूलों की खेती उन क्षेत्रों में और अधिक लाभकारी हो सकती है। विभिन्न स्थानों पर आजकल वर्ष भर सजावट का काम चलता रहता है, विभिन्न आयोजन होते हैं तो उनमें फूलों की मांग बनी रहती है। इसी प्रकार हमारे जो सुगंध उद्योग हैं, हमारे इत्र उद्योग है, उसका भी ये एक कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है जिससे कि हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: वाकई सर, अब जैसे कि किसानों ने मन बनाया कि अब हम फूलों की खेती करना चाहते हैं, तो शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए?
0: देखिए, जैसा कि विदित है कि जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारा जहाँ हम फूलों की खेती करना चाह रहे हैं सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, बाजार की स्थिति का आकलन करना होगा। किसान भाई अधिकांश देखते हैं कि कई बार इन चीज़ों में चूक कर जाते हैं कि बाजार की स्थिति का आकलन किए बिना ही वो फसलों की जो वो तैयारी है वो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम यदि फूलों की खेती चालू करना चाहते हैं तो हमें बाजार की स्थिति का आकलन ये करना होगा कि वो फूल हम उगाएंगे, किस प्रकार के फूल उगाएंगे, कहाँ बिकेंगे, ये सारी जो है इसकी स्थिति का आकलन करना होगा। इसी प्रकार किसान भाइयों को अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उसके बार पास जो फूलों की खेती है उसके लिए कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि फूलों की गुणवत्ता उत्पादन के लिए पॉली हाउस, नेट हाउस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और उसमें अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है, प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। उपलब्ध तकनीक कौन कौन सी हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं पुष्प उत्पादन में, उनका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ कितनी पूंजी उस जो फूल की खेती है उसमें लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि किसान भाई शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम निकल कर आएगा।
1: सर देखिए ना, अब जैसे फूल उगाना शुरू करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन कौन से फूल उगाए जाएं। गेंदा भी है, गुलाब भी है, जरबेरा भी है, मोगरा भी है, नाना प्रकार के फूल हैं। और जब फूल की बात आती है तो दिल खुश हो जाता है, कौन कौन से उगाए जाएं समझ में नहीं आता, बताइए ना।
0: तो फूल जो हैं, जैसे किसान भाई खेती करना चाहते हैं।

0: तो फूलों में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से फूलों की खेती की जा सकती है। जैसे कट फ्लावर्स के रूप में यदि किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो इसमें गुलाब है, जरबेरा है, लिली है, आर्किड है, कार्नेशन है, ट्यूब रोज है, ग्लेडियोलस है, इनकी नाना प्रकार की रंगों वाली किस्में आज हमारे पास उपलब्ध हैं। और ये कट फ्लावर्स आसानी से ओपन जो एरिया है उसमें भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो संरक्षित संरचनाएं हमारी जैसे पोली हाउस है, नेट हाउस है, इनमें भी इनका उत्पादन किसान भाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि खुले पुष्प की बात करते हैं तो खुले पुष्प में गेंदा, चमेली, मोगरा, गुलदावरी, ग्लेडियोलस, इस तरह के फूल उगाए जा सकते हैं। और इनकी जो वर्ष भर मांग, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे, पूजा में उपयोग होने के लिए, सजावट के लिए उपयोग होने रहते हैं, तो इस तरह के जो फूल रहते हैं, खुले फूल, इनकी वर्ष भर मांग बनी रहती है। इसी प्रकार हमारे जो गमले और क्यारियों में भी हम उगा कर सजावटी जो फूल हैं उनके द्वारा भी अच्छा हम लाभ कमा सकते हैं। फूलों का हम बीज उत्पादन भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे किसान भाइयों के पास है कि
1: जी
0: हमें जो गुणवत्ता युक्त बीज हैं कई बार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में हम अच्छी गुणवत्ता के जो बीज हैं उनको बनाकर और उनको हम विक्रय कर सकते हैं।
1: आप सर, जैसे अच्छी गुणवत्ता अधिक फूल उत्पादन लेने के लिए अगर समसामयिक कार्यों की बात करें, ऐसे कौन कौन से काम किसानों को करने की जरूरत है कि भरपूर उत्पादन फूलों का मिल जाए?
0: इसके लिए हमें जो हमारी संरक्षित संरचनाएं हैं
1: जी
0: उनका हमें निर्माण करना होगा, क्योंकि ये आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो परिदृश्य है
1: जी
0: वो
1: जी
0: लगातार बदलता जाता है। कभी भी बारिश हो रही, कभी भी ओले गिर रहे हैं, कभी भी कीड़े, तो ऐसे में जो फूलों की खेती है ये भी, चूंकि फूल यदि दिखने में सुंदर नहीं होगा तो उसके बाजार में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें फूलों की सुंदरता और उसके उत्पादन दोनों के लिए हम संरक्षित संरचनाएं जैसे नेट हाउस, पोली हाउस, इस तरह की संरक्षित संरचनाओं का निर्माण करा सकते हैं। शासन स्तर पर भी इसमें वृद्ध रूप पे हमारे उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो हम उसका भी शासन से संपर्क करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो अक्सर हम ध्यान नहीं रखते कि हमें उन्नत किस्मों के बीज और पौधों का रोपण करना है। इसमें कई बार हम चूक कर जाते हैं कि हमारे पास जो हम खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, उसमें उन्नत किस्म के पौधे का रोपण नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे फूलों की गुणवत्ता है और उसका उत्पादन है वो प्रभावित होता है। सिंचाई प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है
1: जी
0: फूलों में। तो सिंचाई के लिए हम विभिन्न प्रकार के आज ऐसे टपक विधि सिस्टम आ गए हैं, पानी कम लगता है, पानी देना आसान होता है, तो इस तरह की चीज़ों का हम सिंचाई प्रबंधन का उपयोग कर सकते हैं। पौधों को पोषण देने के लिए हमें नाना प्रकार के आज हमारे पास खाद उपलब्ध है जिनका उपयोग करके हम पौधों को जो है फूल है उसमें और चमक बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। पौधों में खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है, पौधों को विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से बचाना जरूरी है। कुछ विशेष क्रियाएं होती है जैसे डिसूटिंग, डिसबडिंग, पिंचिंग, ये क्रियाएं करके हम अच्छी गुणवत्ता के बड़े फूल उपलब्ध कर सकते हैं। समय समय पर हम निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है,
1: जी
0: यदि हम समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा फूलों का उत्पादन कम हो जाएगा। परिवहन और पैकिंग, ये सारी चीज़ों का यदि किसान भाई ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
1: सर, आखिरी सवाल, फूलों की खेती करने में सबसे ज़्यादा सावधानियां कौन कौन सी रखना पड़ती हैं?
0: दो तीन चीज़ों की, जो जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि हमें जो बीज ले रहे हैं, जो पौधे ले रहे हैं, वो हम प्रमाणित जो संस्थाने हैं उनसे ही हम अच्छी गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पौधे या बीज प्रमाणित संस्थानों से, प्रमाणित जगह से नहीं लेते हैं, तो उसका जो उत्पादन पे और उसकी गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, जब हम फूल को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उसका जो रखरखाव है, वो बाजार तक जाना, ग्राहक तक जाना, तब तक उसका एक चैनल है, तो उसमें पूरे फूलों को सही तरीके से हम कैसे रख सकते हैं, कैसे उनका प्रबंधन कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों का यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाई फूलों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: धन्यवाद कृपाल सिंह वर्मा जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारी हमारे किसानों को दी है, आपका बहुत बहुत आभार।
2: अभी अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता, किसान फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कमाए, विशेषज्ञ हते डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा, इनसे बातचीत करी हती मनोज सक्सेना भैया ने। और चलो अब कछु मनोरंजन हो जाए, सो चलो आप और उनको सुनवात हैं जो गणेश वंदना नवनीता श्रीवास्तव की गाई भई।

0: अब अपन ने सुनी जो गणेश वंदना, आवाज हती नवनीता श्रीवास्तव की। भैया बहनों देखो का है कि आजकल बाजार में नकली बीज और नकली कीटनाशक दवाओं को कारोबार सोई बहुत ही बढ़त जा रहा है। इसे किसानन की पूरी मेहनत और फसल दो ही चीजें बर्बाद हो जाते हैं और जैसे सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। हमेशा बीज और दवाएं विश्वसनीय और लाइसेंस वाली दुकानन से ही खरीद में, दुकानदार से पक्को बिल जरूर ले लेवे जी पे लॉट नंबर एक्सपायरी की डेट सोई लिखी होवे। अनजान व्यक्ति या सस्ते दाम के लालच में खुले में बिकवे वाले बीजन को कभी ना लेवे। बीज खरीदत समय पैकेट पे कंपनी को नाम मार और हरे रंग को ISI मार्क देख पसोई ना भूलें। अगर बीज को रंग या आकार एक जैसा ना हो या दवा की बोतल की सील टूटी भई लगे तो तुरंत समझ जाएं कि वो नकली है। जो सोई याद रखने हैं कि नकली बीज से अंकुरण नहीं हुए और नकली दवाई से कीड़ा ना मरे बल्कि फसल को नुकसान नहीं पहुंचे। शक होवे पे अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से अपन संपर्क कर सकत है। थोड़ी सी समझदारी से आप अपनी फसल और अपनी लागत दो ही बचा सकत है। नकली खाद बीज कीटनाशकन से बचवे के लाने हमेशा प्रमाणित दुकान से पक्को बिल लेवे और पैकेट पर सील और लाइसेंस नंबर की जांच कर वो सोई बहुत ही जरूरी है। सो जो हती बड़ी ही अच्छी जानकारी।
1: भैया बहना हरो, खरीफ को मौसम खत्म हो पे है और अब रबी फसलन की बुआई को समय नजदीक आ रहा है। ई किलाने सबसे पहलो चरण होत है बीजन को उपचार और तैयारी। सो चलो इसे ही जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको सुनवाते हैं। सुनत हैं जो लघु वार्ता। रबी फसलों में बीज उपचार एवं बीज प्रबंधन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कौर।
2: बीज जो होते हैं वो फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब भी हम कोई भी फसल बोएं, कोशिश करें कि जो भी हम बीज लें वो प्रमाणित हो किसी हमारी मान्यता प्राप्त संस्था, विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पर बीज का उत्पादन होता हो वहाँ से बीज लें। प्राय किसान देखने में आता है ऐसे कि वो जल्दी में मंडी से खुला बीज ले लेते हैं, तो ऐसे में वो कोशिश करें कि पैकेट बंद बीज लें और जो प्रमाणित संस्था है वहाँ से बीज लें और साथ ही जरूरी है कि उसका पक्का बिल भी जरूर लें, क्योंकि कई बार जब वो बीज लेते हैं तो उसमें मिक्सचर की प्रॉब्लम आती है ना, मिक्सण होता है कई प्रजातियों का, तो उनकी पकाई में भी अंतर होता है, रोग के प्रति संवेदनशीलता उनका और उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही वैरायटी का बीज जो है वो प्रमाणित संस्था से लें। अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आधे से ज्यादा समस्या तो आपकी वहीं निकल जाती। जब भी आप बीज लें हमारी कोशिश ये होती है कि हम बीज का उसका उपचारित करें, क्योंकि बीज जो है वो अलग अलग किसानों के यहाँ से अलग अलग जगह से आया होता है, तो संभावना होती है कि वहाँ कोई बीमारी या कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि बीज में जो बीमारी होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो उसके बाह्य स्तर पे भी उसका जो आवरण होता है वहाँ पे भी रोग के रोगाणु रह सकते हैं और कई बार उसके अंदर भी रहते हैं, उसके भ्रूण में या उसके अंदर बीज के अंदर भी बीमारी रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो किसान बीज लेके आए पहले देख लें कि वो जो संस्था जहाँ से ले रहे हैं उनसे पूछ लें कि ये उपचारित तो नहीं है। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो उपचारित बीज होता है वो उसका रंग अलग होता है, क्योंकि जो दवा उसके ऊपर मिली होती है उसका रंग होता है नीला हो गया, सफेद हो गया ना, इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। और जो पैकेट होता है जो उसमें लिखा भी होता है कि ये फफूंदनाशक दवा से उपचारित, कीटनाशक से उपचारित ना, या जैविक तरीके से उपचारित है, तो इसको भी वो लोग पढ़ लें ना, तो अगर वो ऐसा पढ़ लेंगे तो उनकी समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। और हम अंकुरण के बाद किसानों के यहाँ देखते हैं कि बीज जो है वो अंकुरित नहीं होता या अंकुरित होता है कुछ समय बाद, उसकी पत्तियां सूख जाती है, तना सूख जाता है, जड़ें भी सूख जाती हैं, काली पड़ जाती है और पूरा का पूरा जो फसल जो है वो पौधा सूख जाता है। उसका कारण ये है कि जो हमने संक्रमित बीज बोया, बीज बोने के साथ साथ जब उसको उचित वातावरण मिलता है तो जो हमारा रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु होता है वो भी पौधे के साथ साथ जब उसका लेवल नुकसान पहुंचाने के लेवल तक आ जाता है तो वहां पर ही क्या होता है, हमारा पौधा जो है वो सूख जाता है और हमारा अंकुरण प्रभावित होता है। तो इसके लिए यही जरूरी है कि अगर हम रोग के लिए देख रहे हैं तो हम किसी भी फफूंदनाशक से उपचारित करें। बाजार में इसके हमारे जैविक भी हैं, प्राकृतिक तरीके भी हैं और रासायनिक तरीके भी हैं। तो बीजामृत है ना, किसान बीजामृत का भी प्रयोग कर सकता है बीज उपचार के लिए। जैविक फफूंदनाशक में जैसे ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा की दो स्पीसीज आती है, हर्जियानम और विरिडी, उसका प्रयोग भी वो कर सकता है उपचारित करने के लिए। इसके साथ साथ रासायनिक भी बाजार में कई दवाइयां हैं, आजकल मिक्सण भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो उनका प्रयोग करके भी वो बीज उपचार कर सकते हैं। आजकल बीज का किसान बाजार से बीज लेता है और बीज की जो आजकल गुणवत्ता युक्त बीज बहुत आ गया है, आप देख रहे हैं वैरायटी भी अलग अलग कलर के, आप कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ना, कैबेज, आपकी पर्पल कैबेज भी, बैगनी रंग की भी आ गई, हरी गोभी भी कई आ गई है और बीज की बहुत अच्छी अच्छी आजकल बाजार में उपलब्ध है किसानों के लिए। तो जो हाइब्रिड बीज होता है, कंपनियों का जो बीज होता है या सरकारी जो भी विश्वविद्यालयों से मिलता है, वो उपचारित करके मिलता है ना। अगर वो उपचारित नहीं है तो किसान क्या कर सकते हैं, उसको उपचारित भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, किसान को छोटी में अपनी बगिया बनानी है ना, घर का किचन गार्डन बनना है, तो बीज की मात्रा बहुत कम होती है उसमें। आप 5 ग्राम 2 ग्राम बीज को उपचारित करना बहुत मुश्किल सा होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि बीजामृत का जैसे प्रयोग कर सकते हैं, या जो बेड बना रहे नर्सरी बेड, उसमें क्या करें, आप गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को मिला के उसमें मिला दें, फिर उसके बाद बीज की रोपाई करें ना। या फिर इसके बाद आप भी ये भी कर सकते हैं कि पौध जो आपकी तैयार हो जाएगी, तो पौध तैयार करने के बाद आप 20 दिन बाद या 30 दिन बाद उसकी रोपाई करते हैं। तो रोपाई करते वक्त जो उसकी जड़ें हैं, उन जड़ों को क्या करें, फफूंदनाशक के घोल से या फिर जैविक फफूंदनाशक के घोल से डुबो के 20-25 मिनट डुबोना है। उसके बाद उसको क्या करना है, रोपाई के लिए खेत में लगाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो जड़ें हैं सब्जियों की, जो जड़ें हैं, चाहे आप टमाटर ले रहे हैं, मिर्ची ले रहे हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, अब सीजन आ ही गया है सब्जियों का, तो ऐसे में क्या होगा, जो पौध की जड़ें हैं वो उसमें क्या होगा, आपका ये जो दवाएं हैं, जो जैविक और ये रासायनिक दवाएं हैं, पौधे तक पूरे सिस्टम में चली जाती हैं। जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के कुछ समय बाद प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, क्योंकि वो नई जगह पे जाता है ना, खेत में जा रहा है, खुले खेत में जा रहा है छोटी सी नर्सरी से। तो वहां पर अगर मिट्टी में कोई मृदा जनित रोग है या रोगाणु है ना, या पौधे के सिस्टम में भी अगर अंदर है, तो वो क्या करेंगे, उनको बचाने का क्या करेंगे, पौधोपचार करेंगे या बीजोपचार करेंगे, तो आगामी जो पौधा है वो कुछ समय तक क्या रहेगा, इससे सुरक्षित रहता है। बट अगर आपको लगता है कि वातावरण रोग के अनुकूल है ना, या कोई ऐसी समस्या दिखती है, तब उसके बाद आपको पानी छिड़काव करना है। तो 20-25 दिन तक जो है आपका पौधा क्या रहता है, बीजोपचार से और इन सब चीजों से सुरक्षित रहता है। बट आगामी मौसम को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए हम क्या करते हैं, पानी छिड़काव। उसका तरीका यही है कि जब भी हम बीज लें, क्योंकि अगर आप घर का अपना बीज ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बीज को छटाई कर लीजिए, देख लीजिए, जिसमें अगर आपको धब्बे दिखते हैं ना, जैसे काले धब्बे दिख रहे हैं या सिकुड़न भी आपको दिखाई दे बीज में जो सामान्य ना हो, ऐसे बीजों को आप बीज के लिए इस्तेमाल ना करें। जो स्वस्थ हैं, जिनमें चमक हो, जिनके ऊपर का आवरण अच्छा हो, उन्हीं बीजों का क्या करें, आप चयन करें। फिर उसके बाद अगर आप जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी हो गया, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हो गया, तो उसके लिए आप 5 ग्राम मात्रा रहती है 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको उपचारित। या फिर आपने बीज लगा दिया, बीज लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी बेड है, नर्सरी बेड है, या आप पॉलिथीन में किसी में भी लगा रहे हैं, तो आप पानी तो देना पड़ता है हमें अपनी नर्सरी में। तब आप जैसे लौकी और कद्दू, ये जो सब्जियां लग रही हैं आपकी, अगर आप टमाटर की, तो आप जिसमें पानी दे रहे हैं हजारा से, जिस माध्यम से दे रहे हैं, तो उसमें आप लगभग 10 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, या 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डोज इसकी बना के आप क्या करें, वहाँ छिड़काव कर सकते हैं। या जो आपका चैनल है जिससे पानी जा रहा है खेत में, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई बड़े से मटके में घोल बना के उसको रख सकते हैं। या ड्रिप का अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो ड्रिप में भी जो टैंक होता है उसमें आप डाल के इसको प्रयोग कर सकते हैं। बट एक चीज का विशेष कर ध्यान देना चाहिए, जब भी आप जैविक यूज फफूंदनाशक का प्रयोग करें, तो ये देखना, ध्यान देना जरूरी है कि हमारे खेत में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके खेत में जीवाश अच्छा नहीं है, तो इनका आगे भी जो है वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम इनका प्रयोग करें, तो हमारे खेत में जो जीवाश है उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और सब्जियों में तो प्रायः किसान भाई इसका ध्यान देते हैं, और उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो एकीकृत प्रणाली का प्रयोग करें, एकीकृत रोग प्रबंधन या एकीकृत कीट प्रबंधन पर ध्यान दें। इसके लिए जैसे अगर आप किसान भाई सब्जियां लगाते हैं या चने की फसल लगाते हैं, तो इल्लियों का प्रकोप होता है, तो उसके लिए वो टीकी आकार की गोटी गाड़ देना। और किसान भाई ये ध्यान रखेंगे वो खुटी ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची हो, 1 फुट रहे, क्योंकि ज़्यादा ऊंची हो जाएगी तो वो भी पक्षियों के लिए सही नहीं रहता। तो हम जो जैविक प्रणाली या प्राकृतिक प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, उसके क्या नियम है, उसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, तभी उसका हम ज़्यादा प्रयोग कर सकेंगे। और समय समय पर बीज की बुआई के बाद समय समय पर अपने खेत की, अपने पौधों की निगरानी जरूर करें, क्योंकि समस्या रोग की हो या कीड़े की हो, एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे समय लेती है बढ़ने के लिए। तो अगर हम शुरू से ही इसकी रोकथाम करेंगे, तो कभी भी हमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और हम प्राकृतिक तरीके से सब्जियों को और फलों को और फसलों को उगा कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले ही सकते हैं अपने, और अपना भी बजट जो है उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनकी लागत है, उसको भी कम करके अधिक लाभ ले सकते हैं। और ये इंसान के लिए, मनुष्य के लिए ही लाभदायक नहीं है, हमारे जो अन्य जीव जंतु हैं या पक्षी हैं, उनके लिए भी विशेषकर लाभकारी होगा।
0: अब अपन ने सुनी जो लघु वार्ता, रबी फसलों में बीज उपचार एवं बीज प्रबंधन,
1: विशेषज्ञ हती डॉक्टर अरविंद कौर।
0: और अब आप और उनको बता देते हैं मंडी के भाव। मिल क्वालिटी के गेहूं को भाव है न्यूनतम 2408 रुपया, अधिकतम है 3020 रुपया। सोयाबीन को न्यूनतम भाव है 2655 और अधिकतम भाव है 4030 रुपया। कॉमन धान को भाव है 2040 रुपया से लेकर अधिकतम 2580 प्रति क्विंटल। अरहर मने तुअर को भाव है 6420 और 6530। सरसों को न्यूनतम भाव है 4720 और अधिकतम भाव है 5410। चना को भाव है 4061 और अधिकतम भाव है 5340। मसूर की दाल को न्यूनतम भाव है 5280 और अधिकतम भाव है 5600। प्याज को भाव है 2050 रुपया और अधिकतम भाव है 2350। लहसुन को न्यूनतम भाव है 1480 रुपया और अधिकतम भाव है 9440। मक्का को न्यूनतम भाव है 2170 और अधिकतम भाव है 2240। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने अपने भैया बहनों को दी वे उनके काम में आए और वे खेती किसानी के लाने इन सभी बातन को उपायन को अमल में लाए भी और ई को फायदा सोई उठाए। ई के संग आज को किसान वाणी कार्यक्रम हमें तय समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहा
3: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक बेटी जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाई, एक माँ जिसके लिए रोजमर्रा के जीवन में रसोई का धुआं एक अहम स्थान बन गया था, एक ग्रामीण महिला जिसकी मेहनत परिवार की ताकत तो थी लेकिन उसकी पहचान सिर्फ चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। महिलाओं की ये बेरंग तस्वीर साल 2001 साल 2002 के आसपास बहुत ज्यादा नजर आने लगी थी। उसी समय अपनी रचनात्मक सोच और दूरदर्शिता से तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने महिलाओं की इस बेरंग तस्वीर में रंग भरने की शुरुआत की। गुजरात से शुरू हुई कन्या केलावणी और शाला प्रवेश उत्सव जैसी योजनाएं आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी तक पहुंच गई। और यही नहीं रुकी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें या तीन तलाक से जुड़ा सुधार, सबकी कोशिश यही थी कि बेटियों को शिक्षा मिले और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब बेटियों और महिलाओं को बेहतर करने की सोची तो उसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तकरीबन 25 साल पहले गुजरात में लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और जो बच्चियां पढ़ने जाती भी थी स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां के IAS अधिकारियों के साथ गांव के सरपंच मुखिया को लेकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में गांव तक गए और परिवारों को बोला कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए और स्कूल में उनका स्वागत किया गया, उनको उपहार दिए गए, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक विशेष जगह पर आई हैं। और फिर आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 99% ड्रॉपआउट रेट कम हुए। गुजरात में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव। क्या थी योजना, किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
3: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इसके तहत राज्य के मंत्री, अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें। खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है। गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है। अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया। इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया। इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी ढांचे, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी

0: सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है। यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है।
1: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया। सुशीला जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को आप?
2: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया, ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का, तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं, ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था, जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट कहा जाता है, इंडियन रेनेसां, उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनके बाद जो राणा डे, फिर विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कदम उठाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी, गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए, उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस आ कि अगर हमारी बेटियां, हमारी जो माएँ हैं, अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहाँ पे जाएंगे, गांधी जी हैं तो सुरक्षित है। और महिलाओं का बहुत योगदान था, और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका के जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है। तो ये सारे उन्होंने कहा कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान बनी, भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था, हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, सबको समान रूप से मिला। और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उनको इक्वल पे इक्वल वर्क, जो हमें और जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता। अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष की जो पे स्केल और एक औरत, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया, तब 1969 में एक कमेटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार उन्होंने हेड करा, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे उनकी जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है, उसमें पुरुष भी माने जाते हैं और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग। तो ये जो ढांचा है जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल, जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे आपने बताया नारी के लिए शिक्षा, नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं, ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रखे डिसाइड कर सकती है। तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है। उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है, रेड फोर्ट से जब उन्होंने एक आज़ादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति में कैसे फ़र्क लाएं, ये तो हम ध्यान देते हैं पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो परवरिश है, उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है, माँ है, बाद में बीवी आएंगी, उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, ये जो सोच था ना ये की थी। क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा, तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है, वो सही है पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जो ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम हैं और जितनी भी योजना है ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते हैं ना, ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में।
1: जी, थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं आदि जी। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहाँ बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी। अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था, जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है, जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
3: देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव नज़र आता है ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीज़न के तौर पर, वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर, कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है। इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक महिला लेड डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव, जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है। आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं महिलाओं के प्रति, आप क्या सोच रख रहे हैं। गवर्नेंस का पूरा मॉडल जो है वो विमेन वेलफेयर से बदल कर विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और वो एक कॉन्टिन्यूम है, वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नज़र आने लगा है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गईं। तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है कि हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है, जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है। इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है। ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी मेरे ख्याल से 2003 में,
1: बिल्कुल,
3: और वो अब बढ़ बढ़कर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब समाज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है, ये बदलाव है।
1: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
0: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं। बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता, ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं। इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना। इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है। अब बात गुजरात की। गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है। जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे। इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया। 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया। इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है, उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसके शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है। और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
1: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़ें तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
2: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माँ को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
1: जी।
2: शुरू से था जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा, पर परसेंटेज कम है। क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है, एक तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी, 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से। तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं। और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है, 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार, मेरे मित्रों के परिवार, हम लोगों ने। हाँ, टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने, जैसे आप कह रहे हो, चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है, बट रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है, उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधाएं हैं। और देखिए, घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन, सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए। टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें? अगर चूल्हा में ही सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौके में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है और उस टाइम की जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है जो सोशल मीडिया में नजर आती है कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत से ये सब जो कर पाते हैं, ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, carbon emission in a way less, and at the same time itna time milta hai for them to live a good life. Because aadhunik samaj ka jo ek bahut khas baat hai, hamare paas jo hai suvidha hai jo jisse hum ek accha life guzar sakte hain, par us suvidha ko sabke liye dena ye more challenging hai. I think ye jo prayas raha hai is sarkar ka ki itne sare logon ko jitne maximum logon ko de sakte hain, ye bhi to ek bahut bada, I would say it's a very important achievement. It's not confined to small segments, the privileged one. It is for as large a segments. To isme aap not very well off, unko bhi jod dete hain. Ye in a way it's a very good achievement.
1: जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दीदी जी. एक और योजना जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जब भी हम बात स्टार्टअप की करते हैं, जब भी बात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की, पुरुषों का जिक्र होता है, लेकिन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को प्रेरित किया कि आप भी हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमा सकती हैं, और इनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की अब इस विकसित भारत की यात्रा में जरूरत नहीं है. लखपति दीदी को कैसे देखती हैं?
3: देखिए, लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स के नींव पर रखा गया है. फॉर एग्जांपल, आप अगर देखेंगे जो जन धन अकाउंट्स खोले गए पहले, हम उसको जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, जन धन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल एक्सेस. ये तीन चीज़ें जब महिलाओं के हाथ में दी गई, उसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं. सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए. हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है. और इन 60 करोड़ में से, अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूं, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पे हैं.
1: जी.
3: आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की. मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए. तो महिलाएं अपनी अपनी जगह कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा. सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ. तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गईं, तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है. ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे. उसके लिए क्या किया गया है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं. पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है. मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं, और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं. तो आप संगठित तरीके से SHGs के माध्यम से जुड़ चुके हैं. इन SHGs को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आप नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम ले लीजिए. वो प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है.
1: जी.
3: कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की यह स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी. आई एम श्योर 1,200 करोड़ इसका आउटले रखा गया. 15,000 SHGs को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे. ड्रोन किस लिए सप्लाई करेंगे? कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे SHGs की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा. हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा. तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से. तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का, और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में ऐड होता रहता है. जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया है. बहुत एम्बिशियस टारगेट है, पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है.
1: जी हाँ, अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
3: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की ज़िंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत ज़्यादा अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी ज़िंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नज़र आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य हैं, और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये 3 तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक अलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बहुत लोगों ने ऐसा माना कि 3 तलाक के कानून से करेक्ट किया गया, क्योंकि आपने फाइनली ये बोला कि आप इस तरीके का बिहेवियर मुस्लिम महिला तो क्या किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन स्पेसिफिक इशू है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हमारे देश पे चल रही है, अगर एक कॉमन पर्सनल लॉ पूरी कंट्री के लिए होगा तो ये जो कुरीतियां हैं किसी भी समाज में हो वो उनसे लड़ने की ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कहा था और ये उम्मीद की थी कि आने वाली सरकारें इनैक्ट करेंगी ऐसा एक लॉ, तो इसी उम्मीद से की थी कि हम आने वाली सरकारों पे छोड़ते हैं कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इम्पेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
1: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की 4 दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखती हैं आप?
2: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुरनल मुरल की एक किताब आई थी एशियन ड्रामा, उसमें मुरल साहब लिखते हैं, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ कंट्री वेयर इट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन इन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। मिड 60s बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वीमेन शुड बी फाउंड इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पीछे रह गया उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया, ये सिमोन द बोअर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग के जो विमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न्स है, इसीलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है। क्योंकि विमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं. उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है. मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स, उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित, हाईली वेल प्लेस्ड वीमेन अपील करते हैं, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वीमेन को भी, जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वीमेन जुड़ेंगे नहीं. जो मध्यम वर्ग की वीमेन के जो कंसर्न, स्त्री के जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न है, वो बहुत हटके होते हैं. कहने को दोनों महिला हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है. आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें. अगेन ये जो एम्फोसिस है ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याएं, उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं. ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे, और ये ऑर्डिनरी महिलाएं हैं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स. Right? I mean, they've come up from humble backgrounds but made it to the top because they've got the opportunities. This is what is the achievement of a good society, an equal society.
1: Aditi ji, to mahila netritva ki jo baat Narendra Modi ji kehte hain ki mahila.

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

गूंज उठी शहनाई, अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा था और संगीत निर्देशन था बसंत देसाई का। सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है तुम्हारे लिए फिल्म से। जयदेव के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, तो अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

अच्छी एड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा।

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के चार

0: स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक बार

0: मासिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
1: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
2: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
0: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज

0: ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
1: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asia

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में

0: सालाना बातचीत का एक प्रोग्राम है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के दबाव से निमटने और खुशी के साथ सीखने के अमल के बारे में तलबा असातज़ा और वालदैन से बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स तहरीक के तहत 2018 में इस मुल्कगीर मुहिम पहल का आगाज़ हुआ जिसने नौजवानों को इम्तिहानात बगैर दबाव के साथ एतमाद से देने में मदद की। इस पहल ने इम्तिहानात को बोझ की बजाय मौके के तौर पर पेश किया। परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत मुनक्कदा एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव से निमटने की खातिर खुद को मजबूत और बासलाहियत बनाएं।
1: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होगा।
0: इस प्रोग्राम ने करोड़ों भारतीय नौजवानों की सिर्फ कारकर्दगी से तवज्जो मजमूई तरक्की की जारी मुंतकिल की जिससे इम्तिहान का दबाव कम हुआ और उनकी जहनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक सारफीन की सहूलत के लिए कल इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि यह कदम इस माह की 28 तारीख से 30 तारीख तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों की जानिब से तीन रोजा मुजवजा मुल्कगीर बैंक हड़ताल के तनाजुर में उठाया गया है। इस हड़ताल से कबल 26 और 27 सितंबर को हफ्तावार छुट्टियां थीं। उधर सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने तीन रोजा बैंक हड़ताल के दौरान एटीएम से किए जाने वाले लेन देन पर माहाना मुफ्त हद के बाद आयद होने वाले चार्जेस को खत्म करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल उत्तराखंड में कुछ मकामात पर तेज से बहुत तेज बारिश और दूर दराज के मकामात पर इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर तेज से बहुत ज्यादा तेज बारिश की पेशगोई की है। भारत ने जापान में आइची नगोया एशियाई खेल 2026 में आज तमगों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनीखेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकतदारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंटवार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंटवार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट।

0: वार्ता
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स, lots of quantum technologies are being developed. Artificial intelligence pe aur ek mission hai jo MIT ka hai, Ministry of Electronics and Information Technology, jisme hamara bhi effort jari hai, jisme ek hai ki hamare desh ka foundational model banane ja rahe hain. Yani jisko large language model kehte hain, jo aap text convert kar sakte hain, image mein convert sakte hain, multimodal mein, waisa model development jo karna hai hamari languages ke liye, hamare knowledge ke liye, to jo hai indigenous वो डेवलप हो रहे हैं।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की

0: development by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai jo Ministry of Mines, Department of Science and Technology kafi sare haath milakar kaam kar rahe hain sir, kyunki isme problem aise hai na ki ek hota hai extraction from mines is one type of thing. Second is recycling, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए. इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ पोस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores. And this is used by second level fund managers to give a loan to a startup company or a deep tech company. Deep tech company ये होती है कि science के principle बहुत crucial करके वो technology develop करते हैं, scaling up करते हैं, technology readiness up करते हैं. Technology readiness level 4 से ऊपर जाने के लिए ये funding है, खाली industries के लिए. लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% हाँ, ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी. और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो. मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स. So it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा, government में अभी nuclear policy relax कर दी है, जिसमें private players भी आ सकते हैं. Nuclear energy, if you look at it, it's one of the cleanest energies. और इसमें अगर micro size reactors set कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा. दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है. बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है. हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज.
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ फेलियर्स. दूसरी चीज है कि हार्डवर्क के सिवा कुछ नहीं होता है. अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्डवर्क करना चाहिए.
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत. भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है. तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं. अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतरराष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं. तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है. ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं. अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं. अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस, सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था. कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो वो समय को रखता है उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये

0: हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे, अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं ज्यादातर की, जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे, तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
1: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
2: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान, लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
3: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
4: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्च

0: कल्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
0: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडायवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
2: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
3: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉडराइज पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक

0: शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
0: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी। और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उस समय सू की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में, तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई, और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक ना ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है। इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं, गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी। कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।

0: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
1: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
0: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
1: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार। प्रकृति।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नगोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नगोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म, सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, ज्योश्ना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए।

0: ओके। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवे स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3 मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 आवर्स 11 मिनट्स एंड 37 सेकंड्स। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 सेकंड्स। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds. While Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ

0: 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर, एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
2: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वैनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
0: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 2 क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to 3 games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a 3-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
2: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता प्रसन्ना कुमार सत्य प्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचुन बाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।

0: Indian squash enjoyed one of its biggest days at these Asian Games with two singles finalists and a mixed doubles bronze. The performance of the day came from 18-year-old Anahat Singh. Up against home favourite and world number 6, Satomi Watanabe, Anahat found herself two games down and then two match points down in the third. But the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning four consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा? बता रहे हैं शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के मानुष शाह के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With two gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकान अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरे रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, प्रवीण 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स का कार्यक्रम, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है खामोशी फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत निर्देशन है हेमंत कुमार का।
2: कुछ

श्रोतो, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में खामोशी फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दुनिया।

श्रोताओ, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कार्यक्रम का अगला नगमा लीजिए सुनिए, शंकर हुसैन की फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में, जानिसार अख्तर के बोल हैं और संगीत बनाया है खयाम ने।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे लिखा है योगेश ने, स्वर दिया है मुकेश ने, संगीत से सवारा है सलिल चौधरी ने, और फिल्म है रजनीगंधा। मैं नदियों की चंचलता सी, तुम सागर का गहरापन हो, मैं तो केवल भाषा भर हूँ, तुम कविता का अंतर्मन हो।

कार्यक्रम में अगला गीत आयोग आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अनजान ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बदलते रिश्ते इस फिल्म से इस गीत को लिया है। रूह की आवाज़ को सुन भी लिया करो, धड़कनों के साज को सुन भी लिया करो, कह ना सकूँगा उतना जितना गहरे में हो छाए, अनकही सौगात को सुन भी लिया करो।

श्रोताओ, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे गाया है किशोर कुमार ने। योगेश ने इस फिल्म गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। फिल्म है मिली। उनका ख्याल मेरे ख्याल से गुफ्तगू करता है, उनका ख्याल मेरे ख्याल से गुफ्तगू करता है, बात रूहानी सी है, कुछ मसला ये अजब सा है। ख्यालों में छाते हैं जब यादों के साए, सांसें कभी तेज कभी मध्यम से होती हैं, बैठ जाते हैं पहलू में आके वो आग जब अक्सर दिल मेरा जोर से धड़कता है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। मजरूह के लिखे हुए गीत को लता मंगेशकर की आवाज में दस्तक फिल्म में मदन मोहन का संगीत है। आया था चला भी गया, तू भी ख्याल सा हो गया है। आया था यूं चला भी गया, तू भी ख्याल सा हो गया है। बिछड़ बिछड़ कर मिलता है, मिलकर फिर बिछड़ता है। कितने जवाब दूं इस दिल को, मुश्किल सवाल सा हो गया है। ना उलझती हूँ ना सुलझती हूँ, खुद के जज्बातों पर हंसती हूँ। बातें करती हूँ तुमसे ख्यालों में, गुफ्तगू में बवाल सा हो गया है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं रेशमा और शेरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बाल कवि की शब्द रचना है और संगीत से सवारा है जयदेव ने। तेरे लफ्ज़ों में आके ठहरी, तेरे लफ्ज़ों में आके ठहरी, उस इबादत का क्या करूं, वो जो तेरी आँखों से छलकती, उस मोहब्बत का क्या कहूं। कतरा कतरा पिघल रहे हो तुम, जल रही हैं तुम्हारी सांसें, राजे दिल तुम ना कह सकोगे कभी, प्यार की उस इंतहा का क्या कहूँ।

0: श्रोतो अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी।